0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेहाना चक्रवर्ती का गायन। राग था शिवमत भैरव। सुबह के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रुक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:10 हो चुके हैं। आई श्रोताओं, सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:40 होने को है। अब सुनिए चिंतन, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे गीता में योग का बहुआयामी अर्थ।

0: नमस्कार। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु वार्ता। विषय है गीता में योग का बहुआयामी अर्थ। वार्ताकार हैं श्याम शंकर शुक्ल।
1: गीता का योग आसनों की कोई सूची नहीं है, यह कोई ध्यान साधना की तकनीक नहीं है, यह है जीवन को जोड़ने की एक अद्भुत दिव्य कला। योग का अर्थ केवल ध्यान में बैठ जाना नहीं, अपितु आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, कर्म को समर्पण से जोड़ना, ज्ञान को विवेक से जोड़ना और भक्ति को निर्लेप प्रेम से जोड़ देना। यह जोड़ केवल शरीर और मन का नहीं, यह है अपने भीतर बैठे मैं को गलाकर किसी बड़े सत्य से जोड़ देना। पहले 6 अध्याय गीता के कर्म योग के बारे में है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, मन को योग में स्थित कर और निष्काम भाव से कर्म कर। कर्म तब तक बंधन है जब तक वह फल की इच्छा से और आसक्ति से किया जाता है, पर जब वही कर्म समर्पण भाव से किया जाता है तब वही मुक्ति का और परम कल्याण का माध्यम बन जाता है। जब कर्म शुद्ध हो जाए तो मन स्थिर हो जाता है और हमारी दृष्टि अंतर की तरफ मुड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं यत्रोपरमते चित्तम पश्यन आत्मनि तुष्यति, जहां मन विषयों से हटकर आत्मा में टिक जाए वहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। इसके बाद की 6 अध्याय में गीता हमें भक्ति की ओर ले जाती है। कृष्ण कहते हैं मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे प्रेम में लीन हो जा, भक्ति कर, पूर्णतः मेरी शरण में आ जा। यह भक्ति केवल गीत या पूजा नहीं है, यह है अपनी सारी सिद्धियों को, यहां तक कि अपनी भक्ति को भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। अंत के 6 अध्याय में भगवान ज्ञान योग का परिचय देते हैं, जहां आत्मा प्रकृति और ब्रह्म के रहस्य का उद्घाटन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, जो ब्रह्म में स्थित हो गया है, जो शोक नहीं करता है, जिसकी आकांक्षाएं समाप्त हो गई हैं, वह सम है, शांत है, मुक्त है। गीता का योग कोई एक मार्ग नहीं, संपूर्ण जीवन की साधना है। जब कर्म तप बन जाए, ज्ञान सेवा में बदल जाए, भक्ति समर्पण में बह जाए और ध्यान प्रेम की गहराई में उतर जाए, तब प्रकट होता है गीता का बहुआयामी योग। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जब सब मार्ग, सब प्रयास, सब मैं गल जाए तो केवल समर्पण शेष रह जाता है, योग पूर्ण हो जाता है। इसलिए योग कोई अभ्यास नहीं, यह जीवन का सौंदर्य है, जहां कर्ता अकर्ता बन जाता है और आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। यही है गीता का योग, बहुआयामी, बहुगुणी और अनंत।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

6:45 होने को है। अब सुनिए कार्यक्रम रामचरित मानस। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अयोध्या कांड। आज आप सुनेंगे भाग 61। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं। रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। कुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: त्रिंशोत्तरैकशततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। निर्वाचनायोगः पुनः उक्तवान् यत् सर्वेषां राज्यानां तथा केन्द्रशासित प्रदेशानां कृते निर्गमितानां मतदातृसूचीनां विशेष गहन संशोधनस्य SIR इत्यस्य निर्णयः सर्वसम्मत्या स्वीकृतः आसीत्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् वार्ताहर विभागस्य महानिदेशकः आशीष गोयलः अवदत् यत् ह्यः आयोगस्य सभा अभवत् यत्र मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश कुमारः, निर्वाचनायुक्तः सुखबीर सिंह संधु, विवेक जोशी च उपस्थिताः आसन्। सः अवदत् यत् बिहारतः आरभ्य सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च कृते गतवर्षस्य जून मासस्य 24 दिनांके प्रसारितस्य SIR इत्यस्य आदेशः आयोगस्य सर्वसम्मत्या अनुमोदनेन प्रसारिता अभवदिति। निर्वाचनायोगः अवदत् यत् BLO इति बूथस्तरीय अधिकारिणः तेषां गृहे सुगच्छन्ति ये वर्तमानस्य विशेष गहन संशोधनस्य SIR इत्यस्य समये सूचनाः प्रदत्तवन्तः तेषां आवश्यक पत्राणि संग्रहीतुम्। तदनन्तरं BLO इत्येते ECI नेट इत्याख्ये पटले प्रलेखान् प्रेषयिष्यन्ति। भारतं सर्वान् पक्षान् संयमम् आचरितुं कष्टं न्यूनीकर्तुं नागरिकान् रक्षणं सुनिश्चेतुं वर्तमानयुद्धेषु ऊर्जायाः वाणिज्यस्य अविरामप्रवाहं च सुनिश्चेतुम् आहूतवान्। गतरात्रौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सामान्य सभां संबोधयन् विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् युद्धानां परिणामाः प्रत्यक्षतया युद्धे संलग्नराष्ट्राणां समीपेभ्यः बहुदूरं यावत् अनुभूताः भवन्ति। सः अवदत् यत् वैमनस्येन वैश्विकसुरक्षा निरन्तरं प्रभाविता भवति, प्रगतिः संकिता भवति तथा च तस्य समीपस्थ प्रदेशेभ्यः बहुदूरं यावत् विकासः मन्दः भवति। सः अवदत् यत् विशेषतः खाद्य ऊर्जा सुरक्षादि क्षेत्रेषु स्थितिं परिष्कारयितुं भारतं सर्वविध साहाय्यं कर्तुं तत्परः अस्ति। वित्तमन्त्रालयः अघोषयत् यत् ग्राहकेभ्यः सौलभ्यं प्रदातुं अद्य सर्वे सार्वजनिकक्षेत्रस्य बैंक संस्थाः, ग्रामीण बैंक संस्थाः च उद्घाटिताः भवन्ति। मन्त्रालयः अवदत् यत् यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस इत्यनेन अस्मिन् मासे 28 तः 30 दिनांक पर्यन्तं आहूताः प्रस्तावित त्रिदिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक प्रदर्शनस्य दृष्ट्या एतत् निर्णयः स्वीकृतः। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये तिसृणां क्रीडा श्रृंखलायाः प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रीडा अद्य तिरुवनंतपुरम नगरस्य ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडा अपराह्ने 2 आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार जारी रखने पर भी बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
3: Should be exposed and should be countered.
1: रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को भी दोहराया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को भी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। जापान में एशियाई खेलों में स्क्वाश स्पर्धा में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website, and the News on AIR mobile app. It will also

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। इसके अंतर्गत आपने सुना भजन कलाकार प्रवीण दुबे, संगत कलाकार सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, हारमोनियम पर साथ दे रहे थे नफीस खान और तबला पर साथ दे रहे थे पशुपति नाथ मिश्र। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:30 होने को है। अब सुनिए गीतों भरी गुड मॉर्निंग। सुबह के इस कार्यक्रम में, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। और चूंकि बेला ही इतना खूबसूरत है तो इस खूबसूरत बेले में आइए साथ होते हैं और साथ चलते हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम गीतों भरी।

यूं ही नहीं चल सकता कोई किसी के साथ। जब तक एक हम सफर अच्छा ना हो तब तक कैसे कोई साथ चल सकता है, और जब कोई हम सफर अच्छा रहता है तो ये दिली तमन्ना हो जाती है कि ये हमारे साथ रहे, और ये हमारी किस्मत की बात है कि हमें एक अच्छा और खूबसूरत सा हम सफर मिला है जो हमारे साथ हमारी राहों को और खूबसूरत बना दे। और इन्हीं चीज़ों में जब गीतों में इन बातों को लिया गया है तो गीत भी तो बहुत खूबसूरत होगा। जी हाँ, हम सफर खूबसूरत, साथ खूबसूरत, तो फिर गीत भी खूबसूरत। इन्हीं पर बेस्ड एक गीत सुनते हैं सोनू निगम और अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ में।

वाकई में किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे। और जब किस्मत से कोई मिल जाता है ना, तो ऐसे ही नहीं मिल जाता है। कहते हैं ना कि पहली बार जब किसी से मुलाकात होती है, कोई ऐसा जो आपको दिल को बहुत खास लगता है, तो एक सबसे पहले नजरें मिलती है, कुछ इशारा होता है, और इशारों में ही दिल की बात समझ लेते हैं। आपको पता है, किस्मत ऐसे ही नहीं, जब आप किसी ऐसे से जो आपके किस्मत में लिखा है, उससे नजरें मिलते ही आपको समझ में एक आ जाता है, एक ऐसा अपनापन सा लगता है, जिससे आपको ये लगने लग जाता है कि हाँ, ये हमारा ही है। और वो जो इशारा है ना, वहां कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, इशारों में ही दिल की बात कह दी जाती है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती और मेरे साथ हैं
1: सुषमा। और आज देखिए कितना अच्छी बात है
0: बिल्कुल
1: कि पूजा के साथ हमारे साथियों की गुफ्तगू हो रही है और सुबह सुबह का मौसम इतने खूबसूरत लफ्जों में जो पूजा है अपना शो कर रही है और मैंने जो सोचा कि क्यों ना मैं भी दोस्तों के साथ रूबरू हो ही जाऊं।
0: बिल्कुल। और सुषमा आज हम बात करें सर ये इशारों में दिल लेने वाले
1: अभी हाँ, आपने मैं सुन ही रही हूँ आपको।
0: इशारों में दिल लेने वालों में फिर क्या होता है ना कि जो हमारी दिली तमन्ना है खास करके लेडीज में आपने ये देखा होगा फीमेल को बहुत पसंद है उनकी तारीफ सुनना और जब दिल किसी को दे देते हैं तो वो एक कोशिश में रहते हैं कि हमें हमारी तारीफ मिलती जाए। क्यों?
1: बिल्कुल सही क्योंकि कहते हैं ना तारीफ सुनना लड़कियों की ऐसे भी फितरत में है महिलाओं की फितरत में और बार बार उनकी तारीफ की जाए तो वो और सजना संवरना और अपने आप को बहुत अच्छा फील करती है और करते रहना चाहिए
0: बिल्कुल। और तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है यानी कि आप भी तारीफ करते रहिए और इनफैक्ट हम आपको ये भी कह देते हैं कि सिर्फ लेडीज को ही तारीफ सुनना पसंद नहीं है आप मेल को भी तारीफ सुना सकते हैं उनको तारीफ उनकी कर सकते हैं तो तारीफ का सिलसिला जारी रहना चाहिए ता उम्र क्योंकि आप उससे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत सी हो जाती
1: और
0: है।
1: और पूजा इससे मैं भी एक बात कहना चाहूंगी श्रोताओं से जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना तो उसके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन एक अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी आती है और उसको भी क्रेज होता है कि नहीं हमें अगली बार और ज्यादा सुंदर दिखना है अच्छा दिखना है और अच्छा करना है
0: तो तारीफ सुनने के लिए देखते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है।
1: हाँ हम मेल चेक करेंगे अभी।
0: हाँ
1: देखिए गीत तो बहुत खूबसूरत है पूजा लेकिन साथ ही साथ हम मेल्स भी देखना चाह रहे हैं कि हमारे श्रोताओं को हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा लग रहा है और कितना नहीं और अपनी मेल आईडी बताना चाहेंगे श्रोताओं को iprradiodelhi@gmail.com श्रोताओं ये हमारी मेल आईडी है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत।

0: और हमारे पास मेल आया है कोपर गांव से, सुरेश मलोदे, वर्षा मलोदे, श्रद्धा मलोदे और मानसी मलोदे का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और कार्यक्रम ये देखो ना सुषमा, अब ये आखिरी पड़ाव पर आ गया है ना।
1: हाँ, और पता ही नहीं चलता कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और दोस्तों, हम तो उम्मीद करते हैं कि जो इतनी प्यार भरी मोटिवेटेड बातें जो पूजा ने आपसे की और हमने भी कुछ कुछ बातें आपसे की, तो वो उनको आप अपनी जिंदगी में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे सहमत जरूर होंगे आप।
0: हाँ, और आखिरी पड़ाव है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि मिलते रहिएगा, ऐसे ही बात होती रहेंगी और अपने बात हम तक जैसे मेल के जरिए आपने पहुँचाए वैसे पहुँचाते रहिएगा, क्योंकि मिलो ना तुम तो हम घबराएं। फिलहाल कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं। मुझे पूजा भारती और
1: सुषमा को दीजिए
0: अनुमति।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आठ बजने को है, अब सुनिए हिंदी में समाचार। समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की

0: सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और NewsOn AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे NewsOn AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी। मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
7: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,50,00,000 से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
8: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
9: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ओडिशा के कई हिस्सों

0: में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्ट बोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को 2 स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। खराब मौसम के बीच 4 धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. External Affairs Minister S. Jayashankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. Russia strongly backs India's claim for permanent seat in UN Security Council. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. All public sector banks and regional rural banks to remain open today for convenience of customers. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Uttarakhand. Chardham Yatra suspended in view of adverse weather conditions. And in men's cricket, first one-day international of 3-match series between India and West Indies to be played in Tiruvananthapuram this afternoon. And now the news in detail. इंडिया

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई व तिजारती रास्ते को खुला रखें। रूस ने अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक आज ग्राहकों की सहूलत के लिए खुले रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के हालात के पेश नजर चारधाम यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3-1 रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा।

0: अब खबरें तफसील से। भारत ने सभी फरीकी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वो जारी तनाजात के दरमियान तहम्मुल से काम लें, कशीदगी कम करने, शहरियों की हिफाजत और तिजारत व तवानाई की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाएं। कल रात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जंगों के असरात सिर्फ बराह रास्त शामिल मुल्कों तक ही महदूद नहीं रहते बल्कि उनकी सरहदों से बहुत दूर तक दीगर ममालिक के शहरियों को भी भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कशीदगी और तनाजात आलमी सलामती को गैर मुस्तहकम करते हैं, तरक्की की रफ्तार को सुस्त करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए खासतौर पर खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी के शोबों में सभी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने के अपने हक का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि सरहद पार से हुकूमत की पुश्तपनाही में की जाने वाली दहशतगर्दी आलमी निजाम के लिए बराह रास्त चैलेंज है। वजीर खारजा ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हुकूमतों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दहशतगर्दी की माली एयानत को बेनकाब करके उसका मौसर मुकाबला किया जाना चाहिए।
1: has been the scourge of terrorism. That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
0: रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत दिए जाने के भारत के मुतालबे की भरपूर हिमायत की है। कल रात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए जनाब लावरोफ ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमरीका की नुमाइंदगी को वसी करने के हक में है। उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राजील की मुस्तकिल रुकनियत की उम्मीदवारी की हिमायत करता है। उन्होंने आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों के लिए अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मजीद नशिस्तें मुख्तस करने की वकालत की और भारत और ब्राजील की भरपूर हिमायत का इजहार किया। जनाब लावरोफ ने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के तहत मगरबी ममालिक के लिए मजीद नशिस्तें मुख्तस नहीं की जानी चाहिए, खुसूसन जर्मनी और जापान के लिए, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो अब अस्करियत पसंदी और माजी की ताकत व हैसियत की बहाली की कोशिशों की राह पर गामजन है। अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC के कुल 15 अरकान हैं। इनमें 5 मुस्तकिल अरकान शामिल हैं जिन्हें वीटो का इख्तियार हासिल है। ये 5 ममालिक चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका हैं। इसके अलावा 10 गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं जिन्हें 2 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, TT न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक ग्राहकों की सहूलत के लिए आज खुले रहेंगे। यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से पूरे मुल्क में कल से शुरू होने वाली मुजव्वजा 3 रोजा बैंक हड़ताल के पेश नजर उठाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम बैंक शाखों, दफातर, ATM वाली शाखों और करेंसी चेस्ट को आज पूरे तौर पर कामकाज करने के लिए मंजूरी दी है। इस दौरान सरकारी सेक्टर के कई बैंकों ने 3 रोज तक जारी रहने वाली बैंक हड़ताल के दौरान महाना मुफ्त लेनदेन की हद से ज्यादा ATM लेनदेन करने पर चार्जेस को माफ करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में कई अहम तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो साबरमती लोको शेड में नए तामीर करदा WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इस मौके पर जनाब शाह ज्यादा हॉर्स पावर वाले WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह साबरमती रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वो स्टेशन की तामीर नौ से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ करेंगे। इस तकरीब के दौरान वजीर दाखिला मुल्क की रकीक कुदरती गैस LNG से चलने वाली पहली डेमो ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये भारतीय रेलवे के लिए माहौल दोस्त इकदाम के सिलसिले में एक अहम संगे मील है। जनाब शाह शैला में आचार्य पद्म सागर सूरी सौराजी महाराज की 92वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिद होने वाली एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में पिछले 24 घंटे से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मौसमियात के महकमे ने देहरादून, टिहरी और पौड़ी में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और इक्का दुक्का मकामात पर इंतहाई मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मुसलसल बारिश के तनाजुर में आज चारधाम यात्रा मुअत्तल रहेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रियासत के सभी अजला में आधी तूफान, गरज चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। गुज़श्ता 24 घंटों में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के बाला इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। मौसम की वार्निंग के पेश नजर पूरी रियासत में आफात से निपटने का निजाम हाई अलर्ट पर है। हुकाम हसास इलाकों, दरियाओं और नदी नालों के साथ साथ पानी जमा होने वाले मकामात की भी निगरानी कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने लोगों को मशवरा दिया है कि वह खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: उधर उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासर है। रियासत में अब तक 15 अफराद की मौत हो चुकी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासर तमाम जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो हाई अलर्ट पर रहें और मुतासर अफराद को फौरी राहत और मदद फराहम करें। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जुमेरात से शुरू हुई शदीद बारिश रियासत के कई खित्तों में मुसलसल जारी है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत कई जिलों में बारिश के चलते लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के 63 जिलों में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते जगह जगह पानी भर गया है। राहत कमिश्नर डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मामूल से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। शदीद बारिश की वजह से दर्जाए हरारत में भी काफी कमी आई है और फसलों, खासतौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को खासा नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और मशरकी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: ओडिशा में गुज़िश्ता कुछ दिन से शदीद बारिश के बाद दरियाओं में तुगयानी और नशेबी इलाकों में पानी भरने के साथ ही सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। जलाका दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि सुबर्णरेखा दरिया की सतह में तेजी से इजाफा शिमाली ओडिशा में तशवीश का बाइस है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: ओडिशा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके सबब सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। हीराकुंड बांध के 22 फाटक खोल दिए गए हैं। इनके जरिए इजाफी पानी छोड़ा जा रहा है। महानदी और उसके मुआविन दरियाओं के किनारे वाक़े नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। महकमे मौसमियात ने उड़ीसा के बाज़ इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और हुकाम से सैलाब की सूरत हाल पर गहराई से नज़र रखने की हिदायत दी है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: आज पूरी दुनिया में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे की सकाफत को जानने और इक्तसादी तरक्की को तकवियत फराहम करने में सियाहत के नुमाया रोल को उजागर करता है। इस साल का मौजू है सियाहत को असर नौ वजा करने के लिए डिजिटल एजेंडा और मसनू जहानत। ये मौजू सियाहत के मुस्तबिल का तयन करने में टेक्नोलॉजी के रोल को नुमाया करता है। आकाशवाणी खबरों के शोबे से बात करते हुए सियाहत के सेक्रेटरी भुवनेश कुमार ने कहा कि सियाहत का शोबा इकतसादी फरोग और रोजगार के मौके पैदा करने में नुमाया अहमियत का हामिल है। हमारे नामानिगार के मुताबिक स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद क्रूज सियाहत और सियाहत से वाबस्ता हुनरमंदी की तरक्की जैसे इकदामात से सियाहती मकामात को वसत हासिल हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: भारत के सियाहत के शोबे का इकतसादी तरक्की रोजगार और जरिए माश के तौर पर मुल्क की GDP में 5% का हिस्सा है। घरेलू सियाहती दौरे 2025 में 428 करोड़ से ज्यादा रहे, जबकि गैर मुल्की सियाहती दौरों की तादाद 2.5 करोड़ रही। मरकजी हुकूमत के जरिए तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज नई दिल्ली में सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत मुल्क के

0: के इको निज़ाम और मरबूत सियाती तरक्की की पायदार से मुतालिक अहम इकदाम पेश करेंगे। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसला खान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: तमिलनाडु में बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतें एमएसएमईज मुल्क के बड़े एमएसएमई इको निज़ाम में से एक हैं। रियासत में एक ऐसा वाहिद पोर्टल मौजूद है जिसके जरिए कारोबारी इदारे मुख्तलिफ महकमों से ज़रूरी मंजूरी का अमल एक ही जगह से मुकम्मल कर सकते हैं। रियासत में एमएसएमईज की तरक्की के लिए एक अलग वजारत महकमा भी मौजूद है जिसका मकसद छोटे और दरमियाने कारोबार को बाख्तियार बनाना है। एमएसएमई का सेक्टर मुल्क की मजमू घरेलू पैदावार GDP में तकरीबन 31% का ताउन करता है और ये ज़राअत के बाद रोज़गार फराहम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। कोयम्बटूर में 80,000 से ज़्यादा सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड MSMEs और उद्योग आधार यूनिट्स मौजूद हैं। तमिलनाडु में मजमूई तौर पर 7,59,847 रजिस्टर्ड बहुत छोटी सनअतें, 1,01,861 छोटी सनअतें हैं। जुआई रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान एक रोजा बैन अलाक्वामी 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभम गिल इस ODI सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान हैं जबकि शाई होप वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में आज भारत की मर्दों और खवातीन पर मुश्तमिल तीरंदाजी की टीम अपने अपने जुमरों के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
0: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबार ने भारत खलीजी कौंसिल तजारती इजलास से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामे इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इजलास में तजारत और तवानाई में बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर जोर, वज़रा की मीटिंग में सरमायाकारी सिक्योरिटी और अवामी राबतों को मजबूत करने पर तबादला ख्याल। रोजनामा प्रताप ने BJP के कौमी सदर नितिन नवीन के मगरबी बंगाल दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी बनाई है, नितिन नवीन दो रोजा दौरे पर आज कोलकाता पहुंचेंगे और आला सतही तंजीमी जायजा मीटिंग करेंगे। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफे पर ईरानी सदर के अक़वामे मुत्तहिदा इजलास में शिरकत की खबर को शह सुर्खी बनाया है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई और तिजारती रास्ते को खुला रखें। रूस ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक आज ग्राहकों की सहूलत के लिए खुले रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के हालात के पेश नज़र आज चार धाम यात्रा मुअत्तल कर दी गई है और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य की मील के वो पत्थर रहे हैं जहां से कविता दिशा बदलती है, राहें बदलती है। आज कविता का एक बड़ा वर्ग गजल की तरफ लगभग झुक गया है। बेहतरीन गजलों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है और एक जमीन भी तैयार की है। साहित्यिकी के इस अंक में लीजिए सुनिए हिंदी गजल नई जमीन विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं जाने माने लेखक और समालोचक डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ शायर और समीक्षक श्री दीक्षित दनकौरी, वरिष्ठ कवि और गजलकार श्री अनिल वर्मा मीत। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ कवि और गजलकार श्री राजेंद्र निगम राज।
2: आज दुष्यंत कुमार जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम सभी मालूम है

0: सितंबर माह में ही उनका जन्म हुआ था, इसी लिए सितंबर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सबसे पहले डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा जी से एक प्रश्न करना चाहूँगा कि जो ज़मीन की बात चलती है, कि उर्दू में गज़ल की ज़मीन, जैसे गालिब की ज़मीन या किसी शायर की ज़मीन हम बोलते हैं, तो बहर काफिया रदीफ का वर्णन किया जाता है, तो हिंदी में गज़ल की ज़मीन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: दरअसल एक ही शब्द के

0: शास्त्र की
1: जी
0: इस्तलाह बोलते हैं उसे फारसी में, हम हिंदी में उसको पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अगर हम पिंगल की पारिभाषिक शब्दावली में यानी अरूज की इस्तलाह के तौर पर जमीन का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसा कि आपने अभी फरमाया कि एक शायर की क्या हर रचनाकार की एक हर गजल की जमीन होती है, जाहिर है कि जमीन काफिया और अदीब से जमीन की पहचान होती है, और एक ही जमीन में बहुत से शायर शेर कहते हैं और मीर की जमीन में हजारों ने शेर कहे होंगे, दीक्षित धनकोरी की जमीन में बाद के कई लोगों ने शेर कहे होंगे, तो पारिभाषिक अर्थ में जमीन के माने ये हैं। लेकिन हम रचनात्मक अर्थ में जब जमीन का अर्थ लेते हैं तो उस जमीन से आशय जो है वो उसकी अंतर्वस्तु, उसकी वैचारिकता, उसकी सोच, और इसका अर्थ ये नहीं है कि अकेले अंतर्वस्तु या वैचारिकता, बल्कि साथ में उसकी जो अभिव्यक्ति है यानी जबान और बयान, ये भी उसमें शामिल होते हैं। तो हम जब जमीन कहते हैं तो हमारी मुराद यहाँ सोच की जमीन से है। जो विषय आपने रखा है वो विषय इस के संदर्भ में उस जमीन का अर्थ नहीं देता, अरूज वाली जमीन का, वो ये अर्थ देता है कि गजल जो है वो किस तरह से विकसित होते हुए, हम दुष्यंत कुमार को आरंभ बिंदु नहीं मान सकते क्योंकि दुष्यंत कुमार भी स्वयं को गजल का आरंभ बिंदु नहीं मानते थे, उन्हें भी विरासत में चीजें मिली थी, उन्होंने एक नया संस्कार उसे दिया। तो मेरा अपना जो पक्ष है वो पक्ष ये है कि नई जमीन की जो आप बात करते हैं, और मेरी ये बहुत दृढ़ मान्यता है कि नई जमीन पुरानी जमीन की वाबस्तगी में ही विकसित होती है।
1: जी
0: अगर आप ये सोचना चाहें कि आप हिंदी गजल में या गजल ही नहीं किसी भी काव्य रूप में कहते हैं कि भाई उन्होंने नई जमीन तोड़ दी, भाई नई जमीन पुरानी जमीन से विच्छिन्न होकर नहीं आप ईजाद कर सकते, जो अपनी परंपरा में जितना गहरे धसा होगा वो उतना ही नया लिखेगा और कहेगा।
1: जी बिल्कुल।
0: जबकि आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि भाई रवायत से हटो, रवायत से हटो, ये बहुत गलत सोच है। रवायत से हटने का, रवायत ही तो उससे प्राण वायु आप ले रहे हैं वहां से, दुष्यंत को, बाल स्वरूप राही को, बलबीर सिंह रंग को, उस दौर के जो और लोग हैं, या निराला की बेला की गजलों को 1946 की, या शमशेर बहादुर सिंह को, त्रिलोचन को, हम इनसे अपनी सोच का रिश्ता अगर तोड़ लेंगे तो नई जमीन की इजाद अब नहीं कर पाएंगे। हाँ, अंतिम बात कि मैं निराशावादी इस मामले में नहीं हूँ, नई जमीन मुझे नजर आ रही है, सवालों का सामना लोग कर रहे हैं, यही वो नई जमीन है। लेकिन ये जमीन जितनी ताकत दुष्यंत कुमार और अपने अन्य वरिष्ठ जो गजल कवियों से ग्रहण करेगी उतनी ही ज्यादा बलवती होगी और ताकतवर होगी।
1: बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं माननीय दीक्षित धनकोरे जी। शायर की दुनिया के मशहूर नाम, आपसे पूछना चाहूंगा कि दुष्यंत के आने के बाद गजलों की दुनिया में क्या बदलाव आया है?
2: देखिए, शर्मा जी ने जो बात शुरू की मैं उसको और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। 1975 में एक लेख कल्पना में छपा था, उसमें खुद दुष्यंत जी ने लिखा कि मैं 25 वर्षों से उर्दू गजल को देख रहा हूँ। देख रहा हूँ का मतलब क्या है? मैं उसको आत्मसात कर रहा हूँ या कहें सीख रहा हूँ, या देखने का मतलब ही होता है। तो हिंदी गजल हो, पंजाबी गजल हो, गुजराती गजल हो, मराठी, किसी भी भाषा में गजल आएगी तो उसको उर्दू गजल से होकर गुजरना पड़ेगा। पहली बात तो ये सिद्ध की दुष्यंत जी ने। और जब ये मुजफ्फर हनफी साहब एक बहुत बड़े समीक्षक हुए हैं उर्दू में, जो 60 और 73 के बीच भोपाल में रहते थे, वो उनका एक इंटरव्यू छपा था गुफ्त दूबदू पत्र नाम से
1: जी।
2: तो उसमें कहा था कि दुष्यंत हमारे पास आते थे, सीखते थे, तो उसमें फजल ताबिश, इशरत कादरी, ये यानी उनमें उठे बैठे हैं। तो दुष्यंत जी को जो लोग कहते हैं ना जी हिंदी गजल, ऐसा तो है हिंदी में वो लाए, लेकिन उनकी बैकग्राउंड निश्चित रूप से उर्दू की थी। उन्होंने ये बताया मुजफ्फर अनवी साहब ने कि जब वो गजल पढ़ते थे तो उनकी खामियां थी बहुत सारी, वो देख रहे होंगे अपने उर्दू और उसके हिसाब से, जैसा शर्मा जी ने कहा ना। लेकिन हमारे यहाँ इसमें हिंदी में मात्रिक छंद है, उर्दू का अलग से एक विधान है। तो उन्होंने बहुत पहले यानी 60 और 73 के बीच में ये कहा था कि दुष्यंत के यहाँ फनी लिहाज से कमियां हैं, लेकिन वो अपना हिंदी में एक विशेष स्थान बना चुके हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। फिर जो है कल्पना में इनकी 16 गजलें छपी। अच्छा, तो दुष्यंत जी के समय से पहले भी गजलें हो रही थी, उनके साथ साथ भी हो रही थी, उनके बाद तो अब एक पूरा कार्रवाई चल पड़ा है। तो लोग ये प्रश्न भी करते हैं और जिज्ञासा भी रहती है, एक साथ दुष्यंत क्यों, उससे पहले और भी थे, उनके साथ साथ और भी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनसे पहले जो गजलें लिखी ना, जैसे निराला जी ने लिखी मान लीजिए, तो वो एक टेस्ट बदलने के लिए था, निराला जी गजल, इन्होंने 16 गजलें लिखी थी, उसके बाद साय में धूप आई, गजल पे केंद्रित होकर अच्छी तरह से, उनसे पहले या बाद के तुलना करना तो नहीं, लेकिन दुष्यंत ने जो एक

0: जमीन तैयार करी, नए अंदाज से शेर कहने शुरू करे। उस समय सत्ता के खिलाफ, आम आदमी की पीड़ा, ये बहुत ज्यादा उर्दू शायरी में नहीं आई है, हैं जदीद शायरी में आए, फिर बाबा दे जदीद में आए, लेकिन वो जो लाए तो उसमें, और ऐसा भी नहीं है कि साहब उन्होंने सिर्फ यही कहा हो, सत्ता के विरोध करा हो, शायरी करी हो, लेकिन उनके यहाँ जो मैंने देखा, उनको पढ़ा समझा, उनके यहाँ गजल में गजलियत भी है। जो बात वो कह भी रहे ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इसे कहते हैं हिंदी गजल। इसके प्रतीक हमारे हिंदी के, इसका कथ्य हमारा हिंदी का, और एक पीड़ा, उसको उर्दू गजल का परंपरा और नई सोच और नया लहजा, ये सारा मिलाकर ऐसा उनका काम हो गया कि पूरी गजल के समाज में, साहित्य समाज में वो एक प्रतीक बन गए। और आज की डेट में ठीक है, बहुत लोग हैं सीनियर, उनको उनके समकक्ष भी हैं, लेकिन दुष्यंत के बाद या दुष्यंत या प्रकाश स्तंभ, ये सर्वमान्य हो गया, कोई इसको माने या ना माने, दुष्यंत के बाद दुष्यंत को ही हिंदी गजल में कोट करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि दुष्यंत के बाद जो गजलें हुई हैं वो हल्की रह गई, ऐसा कुछ नहीं है। दुष्यंत की गजल के वो जमीन जो तैयार की थी वो बहुत फल फूल गई है
1: जी,
0: बहुत आगे चली गई है। मैं कहता हूँ दुष्यंत से भी आगे, जमीन के उस पेड़ पर फल लगने लगे हैं, वो फल उनसे भी आगे चले गए हैं। ये अच्छा होता है, कोई आदमी हमें पौधा रोपे और वो फले फूले तो वो अच्छा लगता है, उस विधा के लिए भी और साहित्य के लिए भी। बल्कि बच्चन जी ने तो कह दिया था हिंदी भाषा में गजल लिखना संभव ही नहीं है, बच्चन जी ने कहा था ये। रामदास मिश्र ने कहा था गजल हिंदी की प्रवृत्ति नहीं है। अब शर्मा जी तो कह रहे हैं ना जी, ये हिंदी में मान्यता नहीं दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं शुरू से, लेकिन आज उन सब वर्जनाओं को तोड़ते हुए हिंदी गजल पूरे अपने आप होता आपके साथ
1: बिल्कुल
0: समाज में है और बड़ी लोकप्रिय हो रही है, और मैं बड़ा आशान्वित हूँ।
1: धन्यवाद। तो आपने जो बताया बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अनिल वर्मा मीत जी मौजूद है हमारे साथ। तो मैं मीत जी से ही पूछना चाहूंगा कि आज दुष्यंत जी के जाने के लगभग 51 वर्ष बाद गजल तब और गजल आज, आप क्या अंतर देखते हैं, क्या बदलाव आया है?
2: हिंदी गजल ने पारंपरिक प्रेम और सौंदर्य की विधियों से बाहर निकलकर खुद को सामाजिक बदलाव की बाहर के साथ साथ यात्रा करते समय नए और नवीन आयामों को हिंदी गजल के साथ जोड़ा। आदमी के सुख दुख, उसकी पीड़ा, आर्थिक विषमताएं, वर्ग संघर्ष, व्यवस्था की विवेचना, मैं यहाँ व्यवस्था की आलोचना नहीं कह रहा, व्यवस्था की विवेचना और सांस्कृतिक सौहार्द, मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को भी शिद्दत के साथ अपने में समाहित किया। यहाँ कुछ शेर उनके उद्धृत करना चाहूंगा जो मेरी बात को पुष्ट करते हैं कि अपने अपने काम में है व्यस्त सब, घर में एक बूढ़े की सुनता कौन है। हरे राम समीप जी इस संवेदना को पकड़ते हैं और बड़े सीधे शब्दों में हमें उनकी पीड़ा से रूबरू करा देते हैं। अब मैं प्रेम करण जी का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अब तो मायूस ही लौटा है खिलौने वाला, एक बच्चा न मिला गांव में रोने वाला। और एक मैं अपना शेर आपकी इजाजत से
1: जी जी
2: नजर करना चाहूंगा शर्मा जी की जी। सब्ज कैसे देख लें आंखें मेरी, सब्ज कैसे देख लें आंखें मेरी, जर्द पैदा हो रहा पत्ता नया। तो ये जो विषमताएं हैं, जो हम चाहते हैं और जो हो रहा है उसमें जो अंतर है, उसी की विषमता को ढकने के लिए हिंदी गजल अपने तेवर बदलती है। और मैं कहूँगा कि ये अपना मिजाज बदलती है, कहन बदलती है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत खूब, धन्यवाद आपका भी। और अब फिर मुखातिब होते हैं डॉक्टर शर्मा से। दरअसल ये दुष्यंत की गजलों में जो बहर काफिया रदीफ का इस्तेमाल किया गया है, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नजरिया इस बारे में?
3: मैं जोड़ता हूँ दीक्षित धनगोड़ी साहब की बात से ही, और मीत जी को भी हमने सुना। नजारा लफ्ज का आपने इस्तेमाल देखा होगा कि जो उर्दू अरूज का जो ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो दोनों तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, नजारा भी करते हैं, नजारा भी करते हैं, यानी छंद की जो मांग है, बहर की जो तवक्को है, उस हिसाब से ये आजादी ली जाती है। मैं वही आता हूँ लौटकर, जब धर्म युग में ये गजल दुष्यंत की छपकर आई, कहाँ तो तय था चराग हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। ये गजल जब उनकी छपकर आई तो उस वक्त में वहाँ किसी स्थानीय कॉलेज में हिंदी का व्याख्याता था, और ईमानदारी की बात यह है कि मेरा बहुत संकीर्ण सोच था गजल को लेकर और भाषा

0: को लेकर, क्योंकि मेरी जो संगत है या संगति है या उठना बैठना है वो उर्दू के मित्रों के बीच में रहता था शुरू से,
1: जी
0: और वो इतनी सख्तगिरी अपनाते थे कि जरा जेर जबर का जरा सा अंतर हुआ तो आप खारिज, शीन काफ में जरा से उच्चारण में अगर गलती हो गई तो आप खारिज।
1: जी
0: हालांकि इसके कोई लाभ भी होते हैं कि आपका उच्चारण दोष दूर होता है इससे और आप शब्दकोश के प्रति सजग रहते हैं, पर इसकी हानियां ये होती हैं कि लोग इससे दूर छिटकने लगते हैं। तो बड़े एक कठोर अनुशासन में मेरा उस समय मानसिक विकास हो रहा था। दुष्यंत कुमार की गजल छप कर आई तो मैंने अपनी वही जो समझ थी, जो एक संकीर्ण सोच था बहुत ज्यादा कि भाई शहर क्यों, यहाँ तो जो गिर रहा है ये क्यों, अब इस एक गजल के अंदर ही 5 गलतियां हैं उस हिसाब से आप देखेंगे तो मैंने ये उसमें रेखांकित करके, और फिर एक जगह उनका आया कि मशाल, एक जगह ये आया कि होमो हवन, फिर एक जगह है आमद रफ्त। आमद रफ्त प्रयोग गलत है, आमदो रफ्त होगा, आना और जाना, वो यानी और के लिए, तो
1: ओ
0: और
1: जी
0: तो
1: जी
0: दुष्यंत
1: जी
0: ने खत्म कर दिया। एक जगह रख रहे हैं आप होमो हवन तो लिख रहे हैं आप, होम और हवन, और होम जो है वो संस्कृत का शब्द है, हवन भी संस्कृत का शब्द है। हमारे यहाँ हिंदी व्याकरण के अनुसार भी गलत है, हिंदी व्याकरण के अनुसार आप संस्कृत के दो शब्दों के बीच में आप समास चिन्ह लगाकर लगा सकते हैं, या आप पिता पुत्र में लगाए बिना समास चिन्ह, तो वो दो का अर्थ देगा, पिता और पुत्र। तो होम हो हवन यानी आप फारसी के हिसाब से आपने समास बना दिया संस्कृत का, और जो फारसी का समास था उसमें से वो आपने निकाल दिया। तो ऐसी कुछ बातें सख्ती के साथ मैंने लिखकर उनको जो है पत्र वहां लिखा दुष्यंत। एक जगह सफील शब्द का इस्तेमाल भी किया उन्होंने दीवार के लिए, दीवार के लिए तो फसील शब्द होता है
1: जो
0: फारसी में,
1: बस
0: उन्होंने सफील शब्द का, एक जगह मशाल शब्द का प्रयोग है। तो हालांकि मैं गलत था आधा, ऐसा पत्र लिखते हुए मैंने अर्ज किया ना कि मैंने बहुत सुधार किया स्वयं में
1: जी
0: दुष्यंत कुमार जी के साहचर्य में, तो कुछ बातें तो मेरी सही थी लेकिन कुछ बातें बहुत सख्ती थी बहुत, जैसे मशाल है। अब मशाल अगर दुष्यंत कुमार का गलत है तो फिर निराला का भी गलत होगा। राम की शक्ति पूजा की पंक्ति पढूं मैं आपको, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, ये राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है, तो वे निराला भी गलत हुए यहाँ पर। तो दरअसल दुष्यंत कुमार सही इसलिए थे कि हिंदी जन समुदाय उर्दू शब्दों का जिस रूप में उच्चारण करता है हमें उस रूप में स्वीकार करना चाहिए। मैं खुद उर्दू में लिखता हूं बाकायदा, नियमित रूप से लिखता हूं मैं, और मैं मशअल कहूंगा उर्दू वालों के बीच में, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मैं खुद घर में मशाल कहता हूं और उर्दू वाले भी घर में मशाल ही कहते हैं। मश अब साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, प्रसिद्ध वो गीत है।
1: जी
0: तो अब दुष्यंत कुमार सही इसलिए थे कि उर्दू शब्दों का जो प्रयोग सर्वमान्य हो चुका है उसको हमें कविता में भी स्वीकार कर लेना चाहिए,
1: बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण
0: ये
1: बात है आदरणीय। बिल्कुल
0: उनका पक्ष था दुष्यंत कुमार का। अब रही इसकी बात कि वो लोगों ने खामियां निकाली, दरअसल बात यह है कि ये मुजफ्फर हनफी वगैरह अनेक ऐसे लोग हैं जो दुष्यंत कुमार से, ईमानदारी की बात यह है कि ईर्ष्या बरतते थे, क्योंकि दुष्यंत कुमार के पास जो है सोशल कंटेंट बहुत पावरफुल था। जो नई जमीन की आप बात कर रहे हैं वो दुष्यंत, आखिरकार साये में धूप की गजल ने किसने लिखी है, एक कंठ विश्वाई के लेखक ने लिखी है, जो 20वीं शताब्दी में अंधा युग के बाद एकमात्र ऐसा काव्य नाटक है इतना श्रेष्ठ, एक कंठ विश्वाई, जो शंकर पर लिखा है उन्होंने कि जब उमा ने वहां दक्ष के यज्ञ में समर्पण कर देती हैं और भस्म हो जाती हैं, तो उनके शव को लेकर जो भगवान शिव कंधे पर उसको ढोकर यहाँ वहां तीनों लोकों में चक्कर काट रहे हैं, तो इस पर वो एक कंठ विश्वाई लिखा है उन्होंने। तो एक कंठ विश्वाई के लेखक ने ये गजल लिखी है, जलते हुए वन का वसंत के लेखक ने ये गजल लिखी है। 1952 में जब दुष्यंत कुमार की सूर्य का स्वागत इतनी प्रसिद्ध जो है उनकी कविता और उनकी जो किताब है जब छपकर आई, तो तमाम नई कविता के कवि जिसमें धर्मवीर भारती तक शामिल हैं दंग रह गए सारे के सारे, ही क्या लिख रहा है, प्रातः सुबह सुबह हुई है, सूर्योदय हुआ है। तो जो कवि कल्पना करता है कि ये दीवार पर चढ़कर ये किरणें मेरे घर में आना चाहती हैं, लेकिन बारिश का समय था, दीवार पर काई जमी हुई है, तो वो कह रहा है कि सूर्य तुम कैसे आओगे, तुम तो फिसल जाओगे चढ़ते हुए, तो मेरे बच्चे ने फिर भी अपनी कलम से दीवार पर से काई को खुरच दिया है ताकि तुम मेरे घर में प्रवेश कर सको।
1: वाह
0: तो दुष्यंत कुमार की गजलें आकाश से नहीं उतर आई, इतनी सशक्त अंतर वस्तु अपने समय के गंभीर सवालों को एक दो पंक्तियों के अंदर व्यक्त कर देना, ऐसा नहीं है।

0: अचानक नाजिल हो गई, अचानक उसने 1974 में गजलें कहना शुरू कर दी। कोई चमत्कार तो है नहीं, कोई चीज अवतरित तो ही नहीं थी। ये दुष्यंत कुमार वो कवि है जो 1952 में ही अपनी श्रेष्ठता साबित करा चुका था तमाम नई कविता के कवियों के बीच में। समापन करते हैं इस बात का यहाँ कि उर्दू और हिंदी के मध्य वैर या वैमनस्य की कोई बात नहीं है। जो जीवित भाषाएं हैं वे एक दूसरे से रस ग्रहण करेगी ही।
1: बिल्कुल।
0: जिस दिन हम प्रभावित होना बंद कर देंगे या प्रभावित करना बंद कर देंगे तो चेतना के स्तर पर उस दिन हमारी मृत्यु है। लचीली जो डाल है, जो लचीलापन जिसमें होगा वही आगे तक जीवित रहेगी।
1: डॉक्टर शर्मा, आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों को बताई हैं। और अब शर्मा, एक बात और कहूंगा, मैं एक बात और आपसे कहूंगा अंतिम में कि आप दुष्यंत जी से काफी इससे जुड़े रहे हैं, एक कोई संस्मरण छोटा सा।
0: अब देखिए साहब, सितंबर का महीना था और बारिश हो रही थी जी। और रविन्द्र भवन भोपाल में प्रसिद्ध लेखक शरद जोशी का नाटक हो रहा था, अंधों के हाथी। मैं उस समय मैं अपनी PhD का थीसिस जमा करने विश्वविद्यालय गया था, भोपाल विश्वविद्यालय। तो जमा करने के बाद लौटकर किसी ने बताया हमको कि वहाँ एक नाटक हो रहा है शरद जोशी का, चलो वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पहुँच गए हम। तो वहाँ पर जब नाटक के समाप्त होने के बाद वहाँ किसी ने बताया कि दुष्यंत कुमार हैं। तो अब क्या है, वही मन में जो रहता है कि कुछ नहीं तो नमस्कार तो कर ही लेंगे। वहाँ पर उनसे भेंट हुई, मुलाकात हुई। ये मुलाकात रही पहली। क्षमा करें, आप आत्मप्रशंसा नहीं, मेरी गजलें भी नियमित रूप से कमलेश्वर जी सारी काम में पूरे पूरे पृष्ठों पर छापते थे
1: जी। वाह,
0: 50 मेरी गजलें उन्होंने छापी सारी काम में उसी दौर के अंदर। तो मैंने बताया कि सर मैं भी लिखता हूँ और कमलेश्वर जी ने मेरी गजलें भी यहाँ पर छापी हैं, तो किसी दिन फुर्सत से आओ। तो जनाब जो है वो जो मुलाकात थी उनकी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे लगा कि कोई आलिम फाजिल आदमी जो है ना, बहुत बुजुर्ग वो, और उसने मुझे धमका कर इस तरह से जो खत लिखा है ये तुम हो। बिल्कुल, उन्होंने जो है दोनों हाथों में भरकर मुझे वाकई छाती से लगाया और उन्होंने कहा कि अब तुम गजल पर लिखो। आप क्षमा करें, हिंदी गजल पर पहला जो लेख है ये इतिहास की बात है, दुष्यंत कुमार की प्रेरणा से, यद्यपि वो जीवित नहीं रहे, वो लेख मैंने ही लिखा है, वो रिकॉर्ड में है बात, और ऐसा लेख में लिखता नहीं। वो दुष्यंत कुमार के तर्कों से ये बात आई यहाँ पर
1: जी।
0: तो उर्दू फारसी शब्दों के बाहुल्य के बाद भी
2: यही बात है,
0: जो गजल है वो हिंदी गजल हो सकती, होनी चाहिए। और अंत में उनके दो शेर आप सुन लीजिए दुष्यंत कुमार के, एक पत्र में उन्होंने मुझे लिखे हाशिए में एक छूटी हुई जगह पर, बिल्कुल, आज हालात समंदर की तरह लगते हैं, आज हालात
2: समंदर की तरह लगते हैं,
0: सारे मंजर पसे मंजर की तरह लगते हैं।
2: क्या कहे,
0: आज हालात समंदर की तरह लगते हैं, सारे मंजर पसे मंजर की तरह लगते हैं, किसके कदमों के निशानात हैं इन राहों में, किसके कदमों के निशानात हैं इन राहों में, जो मेरे पाँव में ठोकर की तरह लगते हैं।
1: इसीलिए दुष्यंत को दुष्यंत कहा जाता है। तो आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डॉक्टर जनकप्रसाद शर्मा जी, दीक्षित दनकौरी जी और अनिल वर्मा मीत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हिंदी गजल नई जमीन, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ लेखक और समीक्षक डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ शायर श्री दीक्षित दनकौरी, वरिष्ठ शायर और कवि श्री अनिल वर्मा मीत। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ कवि और गजलकार श्री राजेंद्र निगम राज। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां, प्रस्तुत कर रहे हैं श्री कालीशंकर सौम्य।
4: विगत रविवार 20 सितंबर 2026 को युवा उत्कर्ष साहित्य मंच न्यास के तत्वावधान में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विशेष काव्य समागम का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के सदर क्षेत्र में आयोजित इस साहित्यिक कार्यक्रम में कविता के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को स्वर दिया गया। काव्य समागम में श्री रामकिशोर उपाध्याय आयोजन अध्यक्ष रहे। कार्यक्रम में IRTS के श्री शैलेंद्र कपूर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ट्रू मीडिया समूह के मुख्य संपादक श्री ओम प्रकाश प्रजापति विशिष्ट अतिथि तथा समाज सेवी श्री अभिमीत मिश्र विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी की साहित्यिक समृद्धि, मानवीय संवेदनाओं और समाज

से जुड़े विभिन्न विषयों को अभिव्यक्ति दी। 20 सितंबर 2026 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली कविता मंडल की ओर से कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस साहित्य कार्यक्रम में हिंदी कविता के माध्यम से साहित्य प्रेमियों ने शब्दों और भावनाओं की समृद्ध दुनिया का आनंद लिया। दिल्ली कविता मंडल के इस आयोजन का उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि को बढ़ावा देना तथा रचनाकारों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना रहा। गोष्ठी में कविता के साथ गजल और शायरी की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को विविधतापूर्ण बनाया। कार्यक्रम में श्री प्रेम बिहारी मिश्र अध्यक्ष तथा श्री नीरज चौहान संयोजक की भूमिका में रहे। आयोजन ने हिंदी दिवस को केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित न रखते हुए उसे साहित्यिक अभिव्यक्ति और रचनात्मक संवाद से जोड़ने का कार्य किया। 21 सितंबर 2026 सोमवार को दशलक्षण पर्व के पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली में राणा प्रताप बाग स्थित श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में सर्व श्री पूर्वी उदल, डॉक्टर अमृता अमृत, बाल कवयित्री सानवी जैन, रेशु रोशन तथा नेहा जैन आमंत्रित रचनाकारों में शामिल रहे। कार्यक्रम के संयोजक श्री अभिषेक जैन रहे। आयोजन के लिए सर्व श्री रविंद्र प्रसाद जैन, अजय जैन, मुकेश जैन और अशोक जैन संरक्षक के रूप में जुड़े। इसके अलावा अध्यक्ष श्री पवन जैन, उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र जैन एवं श्री राजीव जैन, महामंत्री श्री सुनील जैन एवं समस्त कार्यकारिणी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। 21 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान मुनीर का नई दिल्ली में हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता संस्था के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार पात्रों ने की। कार्यक्रम में सर्व श्री डॉक्टर प्रवीण आर्य, सरिता जैन, ओम प्रकाश कल्याणे तथा डॉक्टर गणेश श्रीवास्तव ऋषि ने काव्य पाठ किया। कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक सरोकारों और जीवन के विविध अनुभवों को शब्द दिए। हास्य व्यंग संवेदना और विचार प्रधान कविताओं की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। 21 सितंबर 2026 को ही श्री दिगंबर जैन मंदिर मॉडल टाउन की ओर से दशलक्षण पर्व के अवसर पर राजधानी दिल्ली में भव्य विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश प्रदेश के जाने माने कवियों तथा बाल कवयित्री ने भी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। कवि सम्मेलन का मंच संचालन श्री सत्येंद्र सत्यार्थी ने किया। आमंत्रित कविगणों में सर्व श्री अजीत अनुपम, अंजना जैन, नम्रता जैन तथा बाल कवयित्री सानवी जैन शामिल रहे। 22 सितंबर 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के मुख्यालय में हिंदी पखवाड़े के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा वरिष्ठ कवि के रूप में शामिल रहे। साथ ही सर्व श्री ताकेश धर द्विवेदी, पंकज शर्मा, आलोक यादव, पवन आगरी और सरिता जैन ने अपनी अपनी काव्य प्रस्तुतियां दी। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा की विशिष्ट हास्य व्यंग शैली तथा अन्य आमंत्रित कवियों की विविध काव्य धाराओं ने कार्यक्रम को साहित्यिक और मनोरंजक दोनों आयामों में ऊंचाई प्रदान की। मंच पर कविता, हास्य और सामाजिक संवेदनाओं का संगम श्रोताओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। 23 सितंबर 2026 को हिंदी पखवाड़े के अवसर पर दिल्ली सचिवालय के मुख्य सभागार में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इस साहित्यिक समारोह में आमंत्रित कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से काव्य की विविध छटाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सर्व श्री डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, मधुमोहिनी उपाध्याय, बलजीत कौर तन्हा तथा स्वदेश यादव ने काव्य पाठ किया। उनकी रचनाओं में सामाजिक सरोकार, मानवीय संवेदनाएं, संस्कृति और समकालीन जीवन के विभिन्न रंग दिखाई दिए। 23 सितंबर 2026 को दिल्ली पुलिस अकादमी की ओर से हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत व्यंग के रंग शीर्षक से हिंदी कार्यशाला एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आदर्श सभागार पुलिस मुख्यालय दिल्ली में आयोजित हुआ। हास्य कवि सम्मेलन में एसीपी राजेंद्र कलकल वरिष्ठ कवि की भूमिका में विशेष रूप से शामिल रहे। साथ ही सर्व श्री दीपक सैनी, मास्टर महेंद्र, रजनी अवनी तथा राजवीर मलिक सहित आमंत्रित प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। 23 सितंबर 2026 को राज्यसभा सचिवालय कर्मचारी मनोरंजन क्लब एवं हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से हिंदी है हम शीर्षक से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संसद पुस्तकालय स्थित जीएमसी बालयोगी सभागार में आयोजित इस साहित्यिक समारोह में हास्य गीत और ओज से जुड़ी काव्य प्रस्तुतियों ने वातावरण को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम में आमंत्रित कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी भाषा की समृद्ध परंपरा और समकालीन संवेदना को स्वर दिया। आमंत्रित कवियों में सर्व श्री रसिक गुप्ता, संदीप शजर, ओम प्रकाश कल्याणे तथा विनोद पाल सहित अन्य कविगण शामिल रहे। कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों में जीवन, समाज और मानवीय संवेदना से जुड़े विविध विषयों को अभिव्यक्ति दी। 24 सितंबर 2026 को

0: दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में हिंदी भाषा और साहित्य को समर्पित कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में सर्वश्री दीपक गुप्ता, आशीष नासवा, बबिता पांडे, विनय विनम्र तथा रीत राधिका ने काव्य पाठ किया। अलग अलग भावभूमि और शैलियों की रचनाओं ने विद्यार्थियों एवं साहित्य प्रेमियों को कविता की दुनिया से जोड़ा। कार्यक्रम में कविताओं को भावनाओं, विचारों और कल्पनाशीलता की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम के रूप में सामने रखा गया। कवियों की प्रस्तुतियों में समकालीन जीवन, सामाजिक संवेदना, मानवीय रिश्तों और साहित्यिक अनुभूतियों के विविध स्वर सुनाई दिए। युवा विद्यार्थियों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम ने साहित्य के प्रति रुचि और रचनात्मक संवाद को भी प्रोत्साहित किया। उड़ान कविता की शीर्षक ने कार्यक्रम की मूल भावना को सार्थक किया। 25 सितंबर 2026 को दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्यकार सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। इस समारोह में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले रचनाकारों को सम्मानित किया गया। समारोह में श्री चंद्रभानु आर्य को सम्मेलन साहित्य रत्न सम्मान प्रदान किया गया। वहीं सर्वश्री डॉक्टर अंजू दुबे जैमिनी, कमलेश पांडे पुष्प, धर्मशील अग्रवाल, अशोक कश्यप, नीलम मदान और पुष्पा सिन्हा को सम्मेलन साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त श्री बाबा कानपुरी को सम्मेलन साहित्य भूषण सम्मान, सुश्री कविता विकास को सम्मेलन साहित्य श्री सम्मान तथा डॉक्टर मनोज गिरी और सुश्री नीति जैन को भी साहित्यिक सम्मान प्रदान किए गए। करोल बाग स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल में संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विद्यार्थियों में इसके प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से संस्कृतोत्सव प्रदर्शनी 5.0 का आयोजन 25 सितंबर को किया गया। इस वर्ष प्रदर्शनी की थीम संस्कृति संस्कृताश्रिता रही और कार्यक्रम का संदेश जयतु संस्कृतम जयतु भारतम रखा गया। प्रदर्शनी में ज्ञानम, संस्कृतम, सर्जनम और भारतीयत्वम जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई। कार्यक्रम के आरंभ में बोलते हुए प्राचार्य श्री दीपक दुआ ने कहा, संस्कृत ही हमारी संस्कृति का आधार है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पूर्व उच्चायुक्त श्री अखिलेश मिश्रा ने कहा कि संस्कृत ही विश्व की तमाम भाषाओं की जननी है। इसी अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति डॉक्टर मुरली मनोहर पाठक ने कहा, संस्कृत और भारतीय संस्कृति हमें फिर से सोने की चिड़िया बना सकती है। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति की महत्ता की एक जीवंत प्रदर्शनी भी स्कूली छात्र छात्राओं ने ही नृत्य, नाटक और काव्य पाठ की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर विद्यालय की उप प्राचार्य श्रीमती विनीता धवन एवं सर्वश्री नीता निझारा, डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, डॉक्टर युवराज भट्टराई सहित अनेक साहित्य और संस्कृत कर्मी मौजूद रहे।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे श्री कालीशंकर सौम्य। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: और श्रोताओं, अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम, हमारे अतिथि का। कुछ पलों में आप सुनेंगे ये कार्यक्रम।
3: सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि। हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जानी मानी फोटोग्राफर सर्वेश जी से। इनसे बातचीत कर रहे हैं काजल सूरी। फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी देखने का हुनर सिखाती है। ये एक पल है, शटर दबाने के बाद वो पल कभी लौट कर नहीं आता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त काजल। आज हमारे साथ है फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाली जानी मानी फोटोग्राफर सर्वेश जी। आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार।
3: तो पहला सवाल तो ये है कि आजकल फोटोग्राफी कहते हैं बहुत आसान हो गई है क्योंकि मोबाइल में कैमरा होते हैं और हर कोई बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स लेने में सक्षम हो गया है। लेकिन जब फोटोग्राफी को हम करियर बनाने की जब हम बात करें तो बहुत कुछ जानना जरूरी हो जाता है। करियर के संदर्भ में फोटोग्राफी को आपके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे कि ये कला है या ये कोई विज्ञान है, क्या है?
4: ये टेक्निक बहुत ईजी हो गई है, लेकिन अभी क्या होगा, फोटो एक आर्ट भी है और एक इसको कहा जाए प्रोफेशन भी है। इसमें भी अलग अलग कई कई तरह के प्रोफेशन है, जैसे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, कोई पोर्टफोलियो बनाता है, कोई ट्रेवल फोटोग्राफी करता है, कोई डांस के स्पेशल होता है। टेक्निक अच्छी होने के साथ साथ हम बहुत सारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है।
3: बिल्कुल,
4: आज के दौर में हर कोई फोटोग्राफर है, हर किसी के मोबाइल में एक अच्छा कैमरा है
3: जी।
4: लेकिन फोटोग्राफी करने के लिए कहते हैं ना, एक शब्द हजार शब्दों के बराबर होता है।
3: बहुत खूबसूरत।
4: एक तो आजकल सेल्फी से अगर हटे तो फोटो

0: फोटोग्राफी की तरफ सोचा जाए,
1: जी
0: क्योंकि फोटोग्राफी वो है कि आपका एक वो मोमेंट कैच करना है। जैसे मैं कारगिल वॉर गई, उस कारगिल वॉर में वो लॉन्चर जो था, रॉकेट लॉन्चर से जो मिसाइल गिर जा रहा था, वो बहुत परफेक्ट फ्रेम परफेक्ट था, परफेक्ट फोटो थी। उसे भारत सरकार ने, आईएमबी मिनिस्ट्री ने अवार्ड भी दिया। टेक्निक जो है ये आपको मोमेंट कैच करने के लिए कैरियर के रूप में बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पेशेंस है, क्योंकि ये बैठने की जॉब नहीं है, फील्ड वर्क है, तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, तरह तरह के आपको अनुभव होते हैं। जैसे मैं ट्रेवल फोटोग्राफर हूँ, इस कैमरे ने मुझे तो पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया, कई कंट्री घुमा दी। तो आपका शौक अगर फोटोग्राफी आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे तो बढ़िया कुछ नहीं है। तो
1: बिल्कुल
0: फोटोग्राफी आपको एक पहचान भी दिलाती है, आपको बहुत सारी चीजें, लेकिन इसके लिए हमें अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, तभी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। फोटो तो बहुत करते हैं, लेकिन आपकी फोटो बहुत कुछ कहती है,
1: बहुत कुछ कह जाती
0: एक
1: है।
0: फोटो कई कहानियां बना देती है अलग अलग ढंग से।
1: बिल्कुल
0: इसीलिए ये टेक्निक्स अच्छी होगी, लेकिन हम अपने दिमाग को थोड़ा सा खुल के रखेंगे तो हम ज्यादा कर पाएंगे, और
1: ज्यादा कर
0: ज्यादा, और
1: पाएंगे।
0: कैरियर इसमें पैसा भी अच्छा है। लेकिन वही वाली बात कि आपको मोमेंट कैच, आपको हमेशा आंखें खुली रखनी पड़ेंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पल है, जिस तरह से मैंने
0: जी
1: कहा कि जो शटर दबाने के बाद वो पल कभी लौट कर नहीं
0: हाँ,
1: आता।
0: अब
1: जी
0: जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ट्रैकिंग बहुत करती हूँ, तो मैं एक बार केदारनाथ से ऊपर एक जगह है बासुकी ताल, तो गाइड को लेकर जा रही थी और बर्फ से जा रहे थे। अच्छा, गाइड बाई चांस वो फिसल गया,
1: ओ
0: तो मैं ऐसी जगह थी कि मैं, मतलब मेरे को सारे भगवान याद आ गए, रोने लगी। मैंने कहा ये क्या हो गया, निकल आई उस पत्थर से, पत्थर एक अड़ गया था तो बेचारा आया, गाइड तो जान में जान आई। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव भी हैं कि आपको फोटोग्राफी में आपको हिम्मत देते हैं, आपको आप कॉन्फिडेंस बहुत देते हैं। तो आप निकलिए तो सही, आपको बहुत एक से एक मोमेंट मिलेंगे। परेशानियां आएंगी बहुत सारी, लेकिन आपको उस परेशानियों से बचने के लिए आपको दिमाग भी आपका शार्प होगा।
1: शार्प होगा क्योंकि इमेजिनेशन।
0: जी, इमेजिनेशन भी है, और आपको एकदम हमेशा खुला रखोगे तो पता नहीं कब क्या कैच, क्या करना पड़ जाए, एकदम तुरंत आपको शूट करना है।
1: फोकस्ड रहना है
0: और
1: एकदम
0: अब
1: से।
0: तो तकनीक इतनी बढ़िया आ गई है, इसको तो और भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। सब खेलिए ना, नहीं
1: वाह
0: करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेल्फी जाएंगे, सेल्फी करेंगे। हमें दूसरों का कल्चर देखना
1: वाह
0: है। जिस समय जब हम थे ब्लैक एंड व्हाइट के थे, ब्लैक एंड व्हाइट में हम इसको धो रहे हैं, फिर उसको ड्रम स्कैनिंग, और पता नहीं कितना टाइम लगता था एक फोटो भेजने में, और आज टेक्निक से हम बहुत आगे बढ़ गए।
1: आपने जिस तरह से कहा कि फोटोग्राफी बहुत तरह की होती है, वेडिंग फोटोग्राफी, ट्रेवल फोटोग्राफी, कई किस्म की, कुछ कोई ऐसा है कि सब में एक तरह से किस तरह की टेक्निक्स होती हैं, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी ले रहे हो या ट्रेवल में जा रहे हो या कुछ और, जो आप बताना, जो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कितने तरह की होती है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में?
0: देखिए, वेडिंग की या पोर्टफोलियो की है,
1: जी
0: आपको एक फोटो में वो क्लिक करना है जो, कई कहते हैं ना, हमारी फोटो अच्छी नहीं आती,
1: बिल्कुल
0: आपको वही उसके एक्सप्रेशंस आपको ये करने हैं उनको बिना बताए, फिर देखिए वो कितनी अच्छी आती है। कई लोग कहते हैं अरे मैं ऐसी हूँ, मुझे भी नहीं
1: अरे
0: पता था।
1: वाह
0: तो ये आपको टेक्निक आपके अंदर से आएगी, कहते हैं ना शौक होता है, आपको शौक होना चाहिए
1: हाँ
0: आपको इसमें। तो ये टेक्निक, तो इसीलिए आपको अपने स्वाद अनुसार, जैसे कि नमक डालते हैं ना,
1: मिलेगा।
0: ऐसे ही आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या
1: बिल्कुल
0: आपका स्पोर्ट्स में है।
1: बिल्कुल
0: जैसे मेरा ट्रैकिंग है, मैं ट्रैकिंग बहुत करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मैं दुनिया भर के उनका कल्चर दिखाती हूँ,
1: अरे
0: उनका, जैसे
1: वाह
0: आदिवासियों के बीच में चली जाती हूँ तो उसके बीच में उनका कल्चर दिखाना, बहुत सारा एक से, जैसे मैंने घोटुल कवर किया था, उनका कल्चर क्या है, हमसे वो बहुत एडवांस है। तो
1: जी
0: आदिवासियों का जीवन फोटो के द्वारा आप दिखा सकते हैं, हर कोई तो आदिवासियों के बीच में जा नहीं सकता, लेकिन आपको फोटो के द्वारा दिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: समुद्र भी हर कोई नहीं जा सकता, समुद्र में कैसे जहाज, बड़े बड़े जहाज होते हैं, ये कुछ है, तो आप अपने फोटो के द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे मैंने तो कई सारी एग्जीबिशन की हैं, तो फोटो के द्वारा आप बहुत कुछ चीजें दिखा सकते हैं, बहुत जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट आपका होना चाहिए।
1: बहुत ज़रूरी है,
0: जी
1: बहुत ज़रूरी है। कि वो कहते हैं ना कि लम्हा लम्हा ज़िंदगी है, और इन्हीं लम्हों को हम फोटोग्राफ्स के ज़रिए कैद कर लेते हैं और ज़िंदगी के हर पल को फोटोग्राफ्स जो है वो संजो लेते हैं। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने के नाते आप जो फोटोग्राफी है उसकी उपयोगिता के बारे में क्या कहते
0: प्रोफेशन देखिए, आप अपना चैनल बना सकते हो। आजकल मैं आज के संदर्भ में कह रही हूँ, न्यूज़पेपर अगर आपकी थोड़ी अलग हटके हुई, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, प्रिंट मीडिया में दे सकते हो। फिर दूसरी बात, अगर प्रिंट मीडिया में विजुअल लोग चाहते हैं, आजकल तो वीडियो भी इजी हो गई है, जिससे कैमरा ये किया फोटो की, उससे वीडियो भी बना सकते हैं। तो आप तो एक पर दो काज कर सकते हो, वीडियो की वीडियो और कैमरा कैमरा, किसी किसी यूट्यूबर को दे सकते हो, किसी को भी। और सबसे बड़ी बात कि आप जहां भी हैं आप अपना काम करते रहिए, दिमाग खोल के रखिए, कब कहाँ क्या मिल जाए
1: क्या मिल
0: कुछ
1: जाए
0: कुछ नहीं पता।
1: कुछ नहीं पता है।
0: और फिर वो कहाँ से

0: कहते ना कई सारी चीजें वायरल हो जाती हैं जी, वो वायरल हो गया, वो वायरल हो गया, ये आज की टेक्निक है।
1: बिल्कुल
0: पहले तो हमारी फोटो छपती थी तो अलग बात थी, लेकिन आज तो और इजी हो गया है
1: बिल्कुल
0: तो। और लेकिन आपको
1: जी,
0: इसके लिए वही वाली बात के दिमाग खोल के रखना
1: खोल के
0: पड़ेगा।
1: रखना पड़ेगा। बिल्कुल,
0: हाँ
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। जो हम महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, वो शुरुआत कहाँ से करें, किन स्किल्स पे वो काम करें कि उनकी योग्यता निखरे?
0: शुरुआत, मैंने कहा इसमें एक तो पेशेंस की बहुत जरूरत है। शुरुआती दौर पे आपको अपना एक कैमरा लेना पड़ेगा, मोबाइल, आजकल तो मोबाइल जर्नलिज्म या मोबाइल फोटोग्राफी भी हो गई है,
1: बिल्कुल
0: आप अच्छे से अच्छे खींच सकते हो। कई लोग बड़ा ये चाहते हैं कि हमें ये दो, शुरू में थोड़ा सा कठिनाई हो गई है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है।
1: जी
0: कॉम्पिटिशन बढ़ने से आपका जरूर थोड़ी सी दिक्कतें आ गई हैं फाइनेंशियल, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारा अच्छा, एक एक एक स्थापित अगर हो गए तो आपको अच्छा पैसा भी मिलता है। लेकिन हाँ ये है कि पहले से, क्योंकि हर कोई कंपटीशन है, आप कंपटीशन में जाने के लिए आप तैयार हैं। आपको
1: बिल्कुल
0: 24 आवर्स कहीं आग लगी या कुछ लगा है तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाते हैं फिर उसके बाद आपको, मतलब आपको खुद शौक हो जाएगा।
1: बिल्कुल तो क्या योग्यता होनी चाहिए इसमें करियर बनाने के लिए फोटोग्राफी के फील्ड में?
0: आप जितना अनुभव लेते जाएंगे उतना ही, आप कहते हैं ना
1: देंगे।
0: आटा गूंदने की कभी ट्रेनिंग नहीं होती है, तो आटा बिल्कुल परफेक्ट अपने आप आ जाता है। तो
1: जी
0: ऐसे ही इसी में है, बस ये है कि आपको लगे रहना है, लगे रहना, लगन के साथ करोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे।
1: जी कर
0: बस ये
1: रही
0: है,
1: हूँ।
0: आपको अपना डर हटाना पड़ेगा। शुरुआत करिए ना, शुरू में
1: डर के आगे
0: थोड़ी,
1: जीत है।
0: हाँ डर के आगे जीत है, और शुरुआत में जरूर थोड़ी बहुत तकलीफें आएंगी, उसको साइडलाइन कीजिए और आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं
1: जी,
0: रोकेगा।
1: जब फोटोग्राफ्स ले रहे होते हैं कैमरा से, तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो पिक्सल और मेगा पिक्सल, इस तरह की बड़ी टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं, तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें, सरल शब्दों में जानना चाहें, तो क्या कहेंगे पिक्सल मेगा
0: पिक्सल क्या
1: पिक्सल?
0: होता है, इसके कैमरे की क्वालिटी होती है, जितना अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपकी फोटो आएगी। पिक्सल इसमें डॉट डॉट होते हैं, कई हजार लाखों होते हैं, तब जाके एक फोटो बनती है। तो जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ही कैमरे में होता है, उतना ज्यादा आपको अच्छी फोटो होगी, क्लैरिटी होगी फोटो में। तो ये है, और वही मैंने कहा ना कि अब तो इतना टेक्निक की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए बड़े कैमरे की भी जरूरत नहीं है, बस आपको मोबाइल एक जरूर अच्छा लेना है।
1: अच्छा फोटोग्राफ लेने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, अच्छा कैमरा या टेक्निक या आपकी इमेज?
0: कहते हैं ना हमें दोनों आंखें जरूर चाहिए, इमेजिनेशन हमारे दिमाग में है, इसका अगर एक साथ वो बना दिया जाए तो फोटो कहाँ से कहाँ आ जाती है।
1: जी
0: और आपकी जागरूकता, फोटोग्राफी के लिए भी जागरूकता, आपका कैमरा और आपकी इमेजिनेशन, तीनों का ये हो जाए, कहते हैं ना कि कोई कुछ नहीं और आप कहाँ से कहाँ हो जाएंगे। लेकिन आपको ये तीनों चीजें एक साथ दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे तो खैर 32 साल हो गए तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपको अपने आप ही ये निकलेगा। नहीं, खाना भूल जाएंगे कई बार, ये लगेगा कि नहीं, अरे वो करना, अच्छा अच्छा अच्छा ये देखा। एक ही चीज जो फोटोग्राफर है वो अलग नजर से देखता है, जो आम आदमी है वो अलग नजर से देखता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपके अंदर वो एक इमेजिनेशन होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि हुनर सिखाया नहीं जाता, हासिल किया जाता है, आपके अंदर के विजन को आपको खुद ही पैदा करना है, तो इसके लिए पैशन का होना बहुत जरूरी है ना, तो
0: बिल्कुल
1: क्या कहेंगे आप इस बारे में?
0: देखिए, पैशन
1: जनून हो
0: नहीं,
1: तो कुछ भी हो सकता
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल, पैशन नहीं है तो फिर आप, मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र में पैशन के बिना कुछ नहीं होगा, फिर टेक्निक और फिर अपना दिमाग ये सब करना पड़ेगा।
1: जी
0: ये लीक से थोड़ा अलग हटके हैं, इसीलिए
1: जी
0: आ रही है इस क्षेत्र में महिलाएं। और दूसरा, जैसे फैशन फोटोग्राफी भी करते हैं तो उसमें काफी जा रही है, क्योंकि रात के 12 बजे तक फैशन फोटोग्राफी या कुछ है, वो भी एक अलग तरह का है, उसकी भी एक अलग, उसका भी अपना एक अलग बाजार है। तो जैसे कारगिल वॉर में
1: बिल्कुल
0: गए तो कारगिल वॉर, मैं क्योंकि एडवेंचरस हूं तो मैं थोड़ा सा इस तरफ जाऊंगी, भूकंप आया वहां चली गई, सूखा गया वहां चली गई, कोई राइट हुए तो वहां चली गई, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे
1: बहुत
0: हाँ,
1: चैलेंजिंग
0: तो मैं क्योंकि ट्रैकर हूँ, रनर हूँ, दौड़ती हूँ, तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा मैं लीक से अलग हटके हूँ, तो इसके लिए लगन तो आपके अंदर होगी तभी आप कुछ कर
1: पैशन
0: पाएंगे।
1: हो, जुनून हो, तभी
0: हाँ
1: कुछ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो जैसा से आपने बात की कि एक बहुत अच्छा करियर तो है ही, तो कौन सा फोटोग्राफी में अगर किसी ने करियर के रूप में फोटोग्राफी को अपनाना हो, तो कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं फोटोग्राफी में ही करियर को लेकर? जैसे आपने कहा ट्रेवल फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, तो कौन सा ऐसी जगह, क्षेत्र है जहाँ फोटोग्राफी में करियर को लेकर ज्यादा संभावनाएं हैं?
0: नहीं, ये मैंने पहले भी कहा कि आपको अपना अपने स्वाद के अनुसार नमक डालना है, तो आपको अपना आपको क्या चाहिए, क्या ट्रैवल फोटोग्राफर बनना है या ट्रैकर फोटोग्राफर बनना है या फिर आपको वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफर

0: में
1: बिल्कुल
0: बहुत सारे बहुत सारा अच्छा पैसा भी है, और क्योंकि उसको शूट करने का भी एक अलग ही है, प्री वेडिंग और ये सब होता है। तो आपको अपना क्या शौक है, क्या करना चाहती हैं,
1: जी
0: सबसे पहले आप
1: जी
0: खुद ये तय करेंगी।
1: जी
0: आपको तय करना है कि आपको क्या करना है,
1: क्या
0: क्या
1: करना
0: बनना
1: है जी,
0: है, और
1: बिल्कुल
0: क्योंकि स्पोर्ट्स में जाना है या पोर्टफोलियो करना है या एडवेंचर करना है, तो ये
1: जैसा से
0: आपके।
1: आपने कहा आप ट्रेवल फोटोग्राफर हैं, ट्रैकिंग करती हैं, एडवेंचर फोटोग्राफी भी आपने की है, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है, तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा?
0: देखो, एडवेंचर फोटोग्राफी तो सबसे ज्यादा टफ है। एडवेंचर फोटोग्राफी में थोड़ा सा, थोड़ा नहीं है, काफी टफ है। आप फिल्म मेकिंग में भी आप जा सकते हो, फिल्म का कैमरा पर्सन बन सकती हो, और
1: डीओपी हो
0: इसीलिए
1: जाते
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ तो ये आपके अपने ऊपर है कि आपको आपके अंदर कितनी हिम्मत है,
1: और
0: तो एडवेंचर में थोड़ा सा
1: आत्मविश्वास का होना
0: हाँ
1: बहुत जरूरी, कि इसमें यही है जिस तरह से आप कहती रही हैं कि डर के आगे जीत है, आपको डरना नहीं है, काम करना है और आत्मविश्वास के साथ काम करना है। तो कुछ खास बात आप कहना चाहेंगे, कुछ खास टिप्स फोटोग्राफी से जुड़े हुए आप देना चाहेंगे?
0: मैं तो एक बात कहूंगी कि फोटोग्राफी में आने पे ज्यादा मजा आता है, देश का घूमने का भ्रमण भी हो जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको पैसे भी मिलते हैं, और फिर आपको, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप समाज का एक एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप सोचना होगा कि मैं ये करना चाहती हूँ। वही वाली बात, डर के आगे जीत
1: डर के
0: है।
1: आगे जीत है। सुरेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आई हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। आज इस कार्यक्रम में आज की अतिथि थी जानी मानी फोटोग्राफर सर्वेश। इनसे बातचीत कर रही थी काजल सूरी। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: और श्रोताओं, आप सब हुए हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का।

अते उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका सैलानियों के आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। इनिया खूबसूरत थावां नूं देख भारत नूं होर खोजण वेखण दा दिल करता है। भारत तो बाहर वल तां ध्यान ही नहीं जाता। भारत के उत्तर पूर्व वाले पासे जांदियां ही सब तो पहला ध्यान खिंचदियां हन सत भैणां दे राज, सेवन सिस्टर। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालिया, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा अते नाल ही इन्हां दा भरा सिक्किम। इन्हां राज्यां विच बहुत सारियां समानतावां ते विभिन्नतावां हन। हर कबीले के अपने नियम, अपने रंग अते अपने अंदाज हन। चाह दे बगानां नाल भरपूर प्रकृति, खूबसूरत हरियावल नाल भरे पहाड़ अते मैदान, झरने ते अचानक मीहां दा आ जाना, दार्जिलिंग दा सनराइज, सूरज उदय, कंचनजंगा ते चढ़दे सूरज दी रोशनी नाल पर्वत दा रंग बदलना, कैलिंगपोंग, पछमी बंगाल दा हिल स्टेशन, पहाड़ी रेल। पहाड़ी रेल तां होर भी कई हिल स्टेशन ते मिल जांदी है। इन्हां पहाड़ां दे साडे राखी करदे फौजियां ते कैंप, उन्हां नूं सलाम, जिहड़े साडी सुरक्षा लई उत्थे सारी उम्र ला दिंदे हन। शहीदां दे स्मारक, तिब्बत बॉर्डर, बौद्ध मठ दीआं खूबसूरतियां, उन्हां दीआं हैरान करन वालीआं कथावां, उन्हां दे तप, सब नूं सिजदा करन नूं दिल करदा। पछमी भारत वाले पासे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र है। राजस्थान अते गुजरात रजवाड़ियां दे प्रदेश हन। वड्डे वड्डे महल, रियासतां, इस पासे रेगिस्तान मिलते हैं। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू, दुनिया का सब तो वड्डा नमकदार रेगिस्तान कच्छ, गुजरात देखदिया ही बनता है। इन्हां सारिया जगावां दा पहरावा, खाण पीण, रहन सहर पहले सारे प्रांतों तो बिल्कुल वखरा है। ये वखरता मौसम करके अते इन्हां दी आर्थिक स्थितियां करके है। इस दे नाल ही महाराष्ट्र, ये तां दिल्ली वांग ही भीड़ भड़के वाला, भांत भांत दे रंग तमाशियां नाल भरिया शहर है। भारत विच सैलानियां दे प्रमुख पसंद किए जाने वाले स्थानां विचों गोवा विशेष स्थान रखता है। इत्थे सानू पुर्तगाली रहन सहन वेखण नूं मिलता है। गोवा दे पुरातन चर्च, समुद्री किनारे सैलानियां नूं बहुत मोहंदे हन। दक्षण विच सानू भारत दा होर नवां रूप देखण नूं मिलता है। हैदराबाद विच पुराना हिंदुस्तान, पुरातन इमारतां दा इतिहास, मोतियां दे व्यापारियां दा शहर हैदराबादी बिरयानी, इस दे विशेष आकर्षण हन। पांडिचेरी बहुत सुंदर, शांत, समुंदर दे किनारे वसिया खूबसूरती भरपूर फ्रांसीसी शहर। चेन्नई, बेंगलोर विच लोग दिल्ली वांग नौकरियां करन वी जांदे हन। घूमण फिरन दे नाल नाल रोज़गार दीआं संभावनावां दक्षणी भारत दे अजिहे शहरां विच बहुत वध रहीआं हन। अजिहे शहरां विच आधुनिकरण हर पक्ष तों पूरी तरह वेख्या जा सकदा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, मैंगलोर, कोची, ऊटी अते होर कई छोटे छोटे खेतर कुदरती अते मनुख द्वारा बनियां हैरान करन वालीआं दार्शनिक जगावां नूं समोए बैठे हन। असीं इत्थे अबचल नगर बिदर दा जिक्र करना नहीं भुल सकते। तख्त श्री हजूर साहब अते गुरद्वारा नानक चीरा, जिवें असीं गुरुआं दी गोदी च आ बैठे होईए, दिल दिमाग बिल्कुल शांत, सारी दुनिया तों मुक्त हो जांदा है। केरल विच मुन्नार दक्षण दे हिल स्टेशन विच प्रमुख मन्निया जांदा है। उत्थों दीआं उचाइयां, पहाड़ी रस्ते, इक वार तां तुसीं भुल ही जाओगे कि इह भारत दा दक्षणी हिस्सा है। हर तरह दे मसाले मुन्नार दी भूमि ते पाए जांदे हन, इह इत्थों दी विशेषता है। केरल विच बोट हाउस श्रीनगर दी डल लेक दी याद दिवाउंदे हन। केरल विच छोटे छोटे टापुआं ते लोकां दे घरां अते उहनां दी मेहमान नवाजी, इह सारे अनुभव सानू सिर्फ भारत विच ही मिल सकदे हन। त्रिवेंद्रम दे नाल लगदे होर समुद्री किनारे दे अनेकां शहर, नारियल दे रुख अते होर नियामतां, इह भारत दे इसे हिस्से विच मिलदियां हन। कन्याकुमारी भारत दा आखरी किनारा शहर है। इन्हां जगावां दा रहन सहन, रस्मों रिवाज, त्यौहार, आर्थिकता, प्रकृति उत्तरी भारत नालों बिल्कुल वक्री है। इत्थे सब कुछ समुंदर ते आधारित है। इन्हां दे व्यापार, घर, जीवन ढंग सारे इह समुंदर अनुसार बने हन। हुण असीं पूरब भी भारत की गल करते हाँ। इस पासे सानू उड़ीसा, बंगाल, पटना, बिहार आदि स्थानों की सैर करना मिलता है। पटना च सचखंड श्री पटना साहिब ते बिहार विच बौध गया। बिहार दीआं फसलां, विशेष तौर पर मक्की, बंगाल का हथकरघा, दुर्गा पूजा, बंगाली कल्चर, रसगुल्ले वाली मिठास मिलती है। कलकत्ता का पुराना भारत, अंग्रेज़ां दे निशान अज भी कायम हैं। उड़ीसा विच भुवनेश्वर, रमेश्वरम,
जगन्नाथपुरी इतिहासक अते धार्मिक स्थान।

0: कोणार्क हस्तकला का पिचौड़ नमूने हैं। उड़ीसा विच ही एशिया की सब तो वड्डी खारे पानी की झील चिलका झील है। इत्थे लुप्त होंदी इरावदी डालफिन अते सर्दियां विच दूर दूर तो आने वाले लखां प्रवासी पंछी वेखे जा सकते हैं। झील विचों विच कालीजाई मंदिर अते नलबाना पंछी सेंचुरी है। किश्ती ते जाइए तो इन्हां जगावां दे नाल असी सी माउथ टापू की सैर करते हाँ, जिस दे एक पासे चिलका झील का मटियाला पानी है ते दूजे पासे बंगाल की खाड़ी का नीला पानी। इको समय झील अते समुंदर नूं वेखना भागां दी गल लगती है। इस तरह असी इत्थे तकरीबन सारे भारत की संक्षिप्त रूप विच सैर कीती है। इस विच कोई दो राय नहीं कि भारत सैर सपाटे लिए बेअंत विलखणता संभाले बैठा है। असी भावें भारत के किसी भी शहर प्रांत या दिशा तो किसी भी शहर प्रांत या दिशा वल जाइए, साडा स्वागत अपनियां दी तरह कीता जांदा है। सोहनी मेहमान निवासी भारत की खासियत है, चारां दिशावां विच जाण ते सानूं मिलदी है।
1: भारत विच सैर सपाटा हुणे तुसीं डॉक्टर विनय नीत कौर दी इह वार्ता सुन रहे सी। श्रोतियो, अज वर्ल्ड डेफ डे यानी विश्व बोला दिवस भी है, आओ इस बारे थोड़ी जी गल करते हाँ। अंकड़ियां दे मुताबक पूरे विश्व विच 70 करोड़ लोकी बोले ने जिन्हां नूं कन्ना तो सुनाई नहीं देंदा। इन्हां चों 43 करोड़ अजिहे ने जिन्हां नूं बिल्कुल ही कुछ नहीं सुनदा। इन्हां 70 करोड़ लोकां चों 80% लोकी विकासशील जां फिर आर्थिक पक्षों कमजोर देशां च रहिंदे ने। भारत दे हालात ये हन कि दुनिया दे 5 बोले मनुखां चों एक मनुख भारत विच रहिंदा है। इस दिवस नूं मनाउण दा मकसद यह है कि यह सिक्ख्या सेहत रोजगार ते समाजक बराबरी च बोले लोकां नूं भी पूरे हक मिलण यानी बराबरी दा दर्जा दिता जावे। इन्हां लोकां नूं समाज दी मुख धारा च शामिल कीता जावे। इसे लई अज दे दिन खास तौर ते इस तरह दे सैमीनार आयोजित हुंदे ने जिस विच सुनण विच असमर्थ लोकां दे हकां दी वकालत करन ते चर्चा हुंदी है। संकेतक भाषा नूं वधावा देण ते जोर दिता जांदा है ते बोले लोकां दे सामने आउण वालियां दिक्कतां ते उहनां नाल नजिठण दे तरीके सुझाए जांदे ने। पर हां, जिन्हां लोकां नूं कन्नों सुणीदा नहीं उहनां च बहुत काबिलियत हुंदी है भावें किसे भी खेतर च होवे। अमरीका च सितंबर महीने दा आखरी हफ्ता बोलियां वल्लों कीते शलाघायोग कम्मां नूं उजागर करन लई मनाया जांदा है, जिस विच बोले कलाकार अपनी गाउण वजाउण कविता पढ़न आदि दी कला स्टेज ते प्रस्तुत करदे ने। उन्हां वल्लों बनाईयां गईयां हस्तकला दीयां चीज़ां दी नुमाइश लाई जांदी है। बोलियां वल्लों खेडां दा आयोजन हुंदा है। सुनण च असमर्थ लोकी होर सभ्याचारक गतिविधियां च हिस्सा लैंदे ने। इस तरह इन्हां दा उत्सव पूरा हफ्ता चलदा है। सानूं वी इन्हां दी हौसला अफजाई करनी चाहीदी है अते इन्हां दे हक्कां ते समाजक बराबरी लई हुंगारा भरना चाहीदा है। ते हुण एक आवाज प्रोग्राम च असीं तुहानूं सुनवा रहे हां आसा सिंह मस्ताना दे गाए गीत। तुसीं जानदे हो आसा सिंह मस्ताना बड़े पुराने कलाकार ने ते अपने समय च इन्हां दे गीत बहुत मशहूर होए जिहड़े अज वी लोकां दी जुबान ते ने। लो पहला इन्हां दी आवाज विच सुनो मेले दा एक गीत। अज सारे छड्ड जंजाल कुड़े मेले नूं चल मेरे नाल कुड़े।

हरचरण सिंह परवाना का लिखिया गीत पेश कर रहे सन आसा सिंह मस्ताना। प्रोग्राम के अखीर च सुनते हाँ आसा सिंह मस्ताना की आवाज विच एक गीत बल्ले नी पंजाब दी शेर बचिए। गीतकार ने नंद लाल नूरपुरी।

नंद लाल नूरपुरी दे लिखे ते आसा सिंह मस्ताना दे गाए इस गीत दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक खत्म हुंदा है। छेती ही अगले प्रोग्राम च मुलाकात होएगी। उदों तक लई हरजीत कौर नूं इजाजत दिओ।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 10 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन दोपहर में बलरामपुरम में श्री उथराडोम तिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री शाह साबरमती लोको शेड में नवनिर्मित WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह उच्च क्षमता वाले WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी रवाना करेंगे। इसके बाद श्री शाह साबरमती रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे देश की पहली तरल प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाली डेमू रेलगाड़ी को भी रवाना करेंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। रिजर्व बैंक ने आज सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM से संबद्ध शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी भंडार को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मौजूदा संघर्ष के बीच सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल डॉ. जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्ष के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने को कहा। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताते हुए आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोफ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए श्री लैवरोफ ने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। उन्होंने रूस, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के अंतर्गत पश्चिमी देशों के लिए अतिरिक्त स्थायी सीट नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह विषय पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर बल देती है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही वर्षा से आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। उड़ीसा के कई हिस्सों में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जापान एशियाई खेलों की स्क्वाश स्पर्धा में आज अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विनी शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से एक जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी भारत को आज पदक मिल सकते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister S. Jaishankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. He said, hostilities continue to destabilize global security, threatening progress and slowing development far beyond their immediate regions. Dr. Jaishankar said, India is prepared to do everything possible to help improve the situation, particularly in the areas of food and energy security.
3: We remain deeply concerned over continuing hostilities, the targeting of commercial shipping and seafarers. Transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
2: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has strongly backed India's claim for a permanent seat in the United Nations Security Council. In his address at UN General Assembly in New York last night, Mr. Lavrov said Russia is in favor of broadening the representation of Asia, Africa and Latin America, and Moscow supports India's and Brazil's candidatures for a permanent seat. He advocated for more seat allocation to the Global South and voiced strong support for India and Brazil. All public sector banks and regional rural banks will remain open today for the convenience

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर से सावधान।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत सुबह के 10:10 हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक नहीं हुए हैं, क्योंकि आज हो चुके हैं 10:21। जी हाँ, आज थोड़ा सा प्रोग्राम आगे खिसक गया है। हर बार की तरह 10:10 पर नहीं शुरू हुआ, क्योंकि आपने सुना एक आज महत्वपूर्ण संदेश। और दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के बाद अब बारी है इंटरटेनमेंट की। तो इंटरटेनमेंट ये तो फुल टू होगा ही, म्यूजिक, मस्ती और धमाल, क्योंकि आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम है, आपकी पसंद। तो अगर आपके काम में थोड़ी सी सुस्ती आ गई है, जो आप कर रहे थे, थोड़ा अलसा रहे हैं, थोड़ी टेंशन ले रहे हैं, तो ये टेंशन मत लीजिए, सुस्ती को दूर भगाइए, क्योंकि अब आ गई है आपकी डॉक्टर आरजे सुषमा। जी हाँ, अभी लेकर आई हूँ एक अचूक नुस्खा। क्या यही सोच रहे ना, नुस्खा भी म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक से बढ़कर और कौन सा ऐसा डोज हो सकता है जो एकदम से हमारी सुस्ती को भगाए, टेंशन को खत्म करे और मन को एकदम जवां जवां सा बना दे। और आज हम आम गाने नहीं सुनवाएंगे आपको, बल्कि आपको सीधे लिए चलेंगे टाइम मशीन में बैठकर वापस 90s के दौर में, उस दौर में जहां गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे, बल्कि महसूस किए जाते थे, जिए जाते थे। तो अपने जो आपका टीवी सेट है या आपका कंप्यूटर सेट, जहां पर भी आप सुन रहे हैं, आपका रेडियो सेट है, उसका वॉल्यूम थोड़ा तेज करिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक धुनें आपके पास अब आने वाली हैं और आपको थिरकाने वाली।

0: हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत गीत,
1: आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कौन से फिल्म का है ये।
0: जी हाँ, बॉम्बे फिल्म का चित्रा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत।

जी हाँ, आपको कुछ नहीं कहना है, बस आप महसूस कीजिए 90s के दौर के गाने, यानी 1990 के दशक के जो गाने हैं ना, वो सचमुच में हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आते हैं, चाहे जेन जी हो, जेन अल्फा हो, या फिर आजकल के बेबी बूमर्स, हर कोई उन गीतों को पसंद करता है और उन पर मतलब बहुत ही, कहते हैं ना, उन गीतों को सुनकर चेहरे पर सहज ही एक शांत भाव नजर आता है, चेहरे पर मुस्कान आती है और दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तो मैं तो ये महसूस करती हूँ, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इन 90 के दशक के गानों को लेकर, बता सकते हैं। हमारी मेल आईडी है ipradiodaily@gmail.com।

तो चलिए, आपकी डॉक्टर आरजे सुषमा आ चुकी है इस म्यूजिक मस्ती का एक पहला पर्चा खोलने के लिए। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं आज जिन्हें म्यूजिक थेरेपी के सख्त जरूरत है, और रविवार के दिन का तो हम खास इंतजार करते हैं क्योंकि इसी बहाने हम करते हैं म्यूजिक मस्ती के साथ साथ अपनी दिमागी कसरत भी, और साथ ही साथ मन को करते हैं बहुत ही तरोताजा, मूड फ्रेश कर लेते हैं। तो भी अब आपको याद दिला रही हूँ 90 के दशक की वो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज जिसे हर कोई खरीदना चाहता था, खासतौर पर यूथ, जो यूथ होता था उस जमाने का, यंग होते थे उनके पास वॉकमैन जरूर मिलता था, और वॉकमैन जिसके पास होता वो स्टाइल भी बहुत मारते थे अपने दोस्तों के बीच में, लो भी मेरे पास तो वॉकमैन है, वॉकमैन लगाकर गाने सुनना, अपने कॉलेज जाना या गली मोहल्ले में घूमते रहना, खड़े होकर बातें करना, घूमने जा रहे हैं तो वॉकमैन लगा के गाने सुनना। तो भाई वही वॉकमैन, आपको याद है जब हम उसमें कैसेट डालते थे ना और वो फंस जाती थी तो हम पेंसिल लेके उसे धीरे धीरे घुमाते थे ताकि हमारी कैसेट खराब ना हो जाए और बैटरी भी बच जाए, और बैटरी को बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा आगे रिवाइंड करने के चक्कर में बड़ी बड़ी नई नई टेक्निक्स, रिवाइंड करना हो, फॉरवर्ड करना हो या फास्ट फॉरवर्ड करना हो, ये सब टेक्निक्स हम हाथों से ही कर लेते थे। और जब अटक जाती थी अगर रील वो कैसेट के, तो भी पूरी कैसेट खराब, और उसे जलाना पड़ जाता था, फूंकना पड़ जाता था। तो बड़ी संभलते संभलते हम कितनी मुश्किल से गीत सुनते थे, और आज कितना आसान हो गया है। YouTube खोलिए या फिर और भी दूसरे ऐसे बहुत सारी साइट्स, म्यूजिक साइट्स हैं जहां पर आसानी से गीत हम सुन सकते हैं। तो बस आज की सुस्ती भगाने के लिए ये पुरानी बैटरी जो है ना हमारी, जो पुरानी हो चुकी है, इसे चार्ज कर लीजिए क्योंकि 90s का एक और धमाकेदार गीत आ रहा है। पहचानिए तो सही जरा कौन सा है ये, और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, आपके पैर जरूर थिरकना शुरू हो जाएंगे, होंठ अपने आप गुनगुनाना शुरू कर देंगे और दिल मचलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा।

और दोस्तों आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और आपका फेवरेट शो चल रहा है आपकी पसंद।

गुलाम फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में। तो देखिए इतने खूबसूरत गीत 90s के जो दिल को तो धक धक करा ही देते हैं, मतलब अच्छा सा फील करा ही देते हैं और पुरानी यादों को भी ताज़ा करा देते हैं। अगर आपके भी 90s के दशक के गीतों के साथ कुछ अच्छी यादें हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और देखिए इतना खूबसूरत गीत और आपकी सुस्ती, जैसे हमने कहा ना कि सुस्ती छा गई होगी या बस हल्का हल्का सा, मतलब आपको थोड़ा सा ऐसे ही चिंता में होंगे या उदासी फील हो रही होगी आपको, तो वो तो आपकी दूर भाग चुकी, ये गारंटी है, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इतने खूबसूरत गीत हैं और इनको सुनकर अगर आपकी चेतना नहीं जागी तो भाई कुछ नहीं हो सकता फिर। हाँ ये अलग बात है कि आपने नाइट शिफ्ट की है और उसके बाद आप बहुत थक गए हैं, बहुत काम किया है, तो फिर हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने पूरी नींद ली है और आप सुबह से ऐसे ही सुस्ती में पड़े हैं तो फिर तो भाई हम आपको नहीं छोड़ने वाले। तो भाई अब बताएं, आप अपनी पेटी सीट बेल्ट जो है ना वो अपनी बांध लें, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी का नेक्स्ट डोज अब आने वाला है। तो अच्छा एक बात बताओ साथियों, आप सच सच बताइएगा 90 के दशक का कोई ऐसा गीत जो आपको याद है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 90 के दशक से भी पहले के हैं तो उन्हें वो गीत भी बहुत पसंद आते हैं। तो अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि 90 के दशक के जो गीत वो क्या कमाल के थे ना, आपकी यादों में वो होंगे सहजे हुए, क्योंकि जब स्कूल के फेयरवेल होते थे तो 90 के दशक के ही गीत एक तरह से एंथम के रूप में बजाए जाते थे। एनुअल फंक्शन कॉलेज का हो, स्कूल का हो, 90 के दशक के गीतों पर उधर माधुरी, गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस जिनके गीतों पर सभी लोग थिरकते थे। धीरे धीरे वक्त बदला, जमाना बदला, ख्वाहिशें, और कहते ना कि हर 10 साल के बाद एक जनरेशन बदलती है, तो वो जनरेशन भी बदली और लेकिन जो 90 के दशक गीत हैं उनकी खुमारी नहीं बदली, वो सब पर आज भी उतनी ही छाई हुई है जो पहले थी। और अब हम पिटारा खोल रहे हैं मेल्स का, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने हमें अपनी संदेश भेजे हैं। देखते हैं हमारे इस मेल के पिटारे में किस किस के कितने संदेश हम तक पहुंचे हैं। तो साथियों हम लेना चाहेंगे सबसे पहला संदेश जो हमारे पास आया है, ये है जी जी जी जी जी जी, कोशिश है कि कोई भी साथी ना छूटे। मैं देख रही हूँ कि रमेश चौहान जी हैं, इन्होंने जोधपुर राजस्थान से मोहिनी और कल्पित गर्बी और हिमाक्ष के साथ अपना संदेश भेजा है। संतोष भाकरे जी हैं, इन्होंने सुनैना सुकन्या सविता भाकरे के साथ दगलूर नांदेड़ जिला से महाराष्ट्र से संदेश भेजा है। और अनिल मोहन जी हैं, इन्होंने उषा टिल्लू और मधु नायक के साथ संदेश भेजा है। इसके साथ ही हमारे अगले जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं नासिर अली जी, इन्होंने भी संदेश भेजा है हमें उत्तराखंड धनौरी तेलीवाड़ा से। नौशाद सलमानी, आलिया आयान और अपने अन्य साथियों की तरफ से हमारे एक और साथी हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र छावड़ा, इन्होंने इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा के साथ अपना संदेश हम तक पहुंचाया है।

और साथियों व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हमारे साथी हैं भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांदु भूषण संस्कृति और पारुष, इन्होंने भी संदेश भेजा है। साथ ही साथ अगला संदेश मैं देख पा रही हूँ राजकुमार दुड्डी, प्रमोद कुमार दुड्डी का है और इन्होंने लिखा है कि 90 के दशक के गीत बहुत बढ़िया थे, दिल को छू लेने वाले थे। गाँव फरांसी जिला हिसार हरियाणा से इन्होंने अपना संदेश हम तक पहुँचाया है और भी साथी हैं जिनके संदेश हमारे पास धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जैसे सुदर्शन मुखी जी हैं, इन्होंने शांतिनगर सोनीपत से अपना संदेश अनीता और सिमरन मुखी के साथ हम तक पहुंचाया है। नीटू मल्होत्रा जी हैं, इन्होंने खैल बाजार पानीपत से लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल और नानक चंद मल्होत्रा जी के साथ और साथ ही शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और भाविका के साथ अपना संदेश हम तक पहुंचाया है और अगला गीत भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तो और भी संदेश शामिल करेंगे लेकिन पहले सुनेंगे ये बहुत ही खूबसूरत गीत और जब तक म्यूजिक है तब तक एक दो संदेश और हम शामिल कर रहे हैं। मुकेश कश्यप है, इन्होंने अपना संदेश भेजा है हमें। सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी और लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह के साथ ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से।

जी हाँ, 90 के दशक की तो बात ही अलग थी, उसका अंदाज ही अलग था। और उम्मीद करते हैं कि इन गीतों को सुनकर आपकी भी यादें पूरी ताज़ा हो चुकी होंगी, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि जो नए लोग हैं, युवा हैं, जो यूथ है, उन्हें भी ये गीत पसंद आते हैं। और हमारे जो 90 के दशक के साथी हैं, जो उस दौर में पले बड़े हैं भाई, उनके अंदर तो कहते हैं ना, मौसीकी कूट कूट कर भरी गई थी। वो जो अंदाज बयां करने का, मौसीकी, शायरी और अपनी मोहब्बत, ये सब चीज़ें तो वो इन गानों के जरिए ही एक्सप्रेस कर देते थे। और अब ले लेते हैं हम संदेश, क्योंकि देखिए पिटारा हमने खोल ही दिया है। आज हम म्यूजिक की थेरेपी तो चला ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथियों के जो संदेश हमारे पास आए हैं, उन्हें भी शामिल करना जरूरी है, वरना थेरेपी का कोई फायदा नहीं होगा, सारे नाराज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि आज समय है कम, 10:55 तक ही आज हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप सभी सुनेंगे सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मन की बात, तो उसे जरूर सुने। और हमारा प्रोग्राम आज सुबह 10:55 तक, तो समय कम है, अंदाजा आपको है ही, तो नाराजगी मत रखिएगा अगर आपकी मेल शामिल ना हो पाई, कोशिश पूरी आपके संदेशों को शामिल करूं। सबसे पहले मेल मैं ले रही हूं, अहमद फूलवाले जी हैं, इन्होंने संदेश भेजा है छोटी बलिया मुंबई करजल से, इमरान अहमद आसमा और अपने समस्त परिवार की तरफ से। इन्हें भी आशंका है कि शायद हम इनकी मेल को नजरअंदाज ना कर दें, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहता है। अगला संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा और कपिल ईशान छीपा

पूजा परिहार के साथ इन्होंने भेजा है। ये लिखते हैं कि 90 के दशक के गीत बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, संगीत बहुत मधुर होता है और दिल को असीम शांति और सुकून मिलता है। पुराने दौर में आप हमें ले गए, कैसेट को सुनना बहुत ही बढ़िया लगता था। जी हाँ, कैसेट सुनना तो सच में जिन्होंने सुना है उन्हें सच में आज भी उनकी यादें जरूर ताज़ा हुई होंगी। और अगले हमारे साथी हैं।

कमलेश कठेरिया, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, बाबू और समस्त कठेरिया परिवार की तरफ से इन्होंने ये संदेश भेजा है। तो साथियों आपको बता दूं, बहुत सारे साथी अभी भी मेरे मुझे कुछ और ही समझ रहे हैं, कोई और ही अपना साथी। मैं हूं सुषमा और आपके साथ बनी हुई हूं सुबह से लेकर 12 बजे तक आपके साथ रहूंगी। और ये लिखते हैं अपने संदेश में कि 90 के दशक के गीत जो आप सुनवा रही हैं बहुत ही लाजवाब गीत हैं, अच्छा लग रहा है और इन्हें प्रोग्राम भी पसंद आ रहा है, तो ये भी अपने संदेश को अब शामिल करने का ही इंतज़ार कर रहे थे। मोहम्मद सईद अबासी जी हैं, इन्होंने भी ऊपर कोट मोहल्ला चुकंठी से बुलंदशहर से संदेश भेजा है। परवीन अबासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और अबासी परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से। साथ ही सुमेरा परवीन हैं, इन्होंने भी अबासी परिवार के सदस्यों की तरफ से अपना संदेश भेजा है। इन्होंने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है, एक ही संदेश को दो अलग नामों से भेज। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नौखेलाल वर्मा ने संदेश भेजा भाटापारा छत्तीसगढ़ दतरेंगी से। साथ ही साथ दिग्दर्शन गौर हैं, इनका संदेश आया है हमारे पास मेरठ शोभापुर से। कविता गौर के साथ इन्होंने अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। इसके साथ ही है रविंद्र दास मोहन जी, किशनगंज बिहार से। आशा देवी के साथ इन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया है। और भी साथी हैं जिनके संदेश हम जरूर शामिल करेंगे, जैसे कि वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और मस्कीन दादाजी हैं यानी तुलसी मस्कीन जी, इन्होंने संदेश भेजा बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। बीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट और पंचकुला चंडीगढ़ से भी इन्होंने कुछ साथियों के नाम लिखे हैं, जैसे राहुल खुराना, रचित और केशु खुराना की तरफ से। खुराना साहब, आप तो 90 के दशक में खूब सारे अच्छे अच्छे गीत सुनते होंगे, आपकी मुझे उम्मीद थी कि आपकी तरफ से कुछ अच्छी लाइन्स आएंगी, लेकिन अभी तक हमारे पास कुछ आया नहीं आपकी तरफ से, बस नाम मेल हम आपकी शामिल कर चुके हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने भी हमें संदेश भेजा जमशेदपुर से, स्टेशन रोड से। एंजल और सोनू और तमन्ना भाटिया के साथ, और इन्होंने भी ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, और मुझे इतना पता है कि आप सभी साथी जो हैं वो 90 के दशक के गीतों के तो बहुत ही कायल रहे हैं और खूब सुना है आपने उस दौर के उन गीतों को। मस्किन जी का, हाँ जी, हमें एक संदेश आया, तो अभी भी इन्होंने कुछ नहीं, बस ये अपने संदेश के शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। मसरूर हसन है, इन्होंने ये संदेश भेजा है सहारनपुर से अपने साथियों के साथ। पंकज बिंदल है, इनका भी संदेश हम तक पहुँचा केशव प्रयाग और प्रियांशी विवेक के साथ। साथी राजू अग्रवाल का के साथ चौधरी वास से, इन्होंने हरियाणा से ये संदेश भेजा है। साथ ही साथ और संदेश मैं देख रही हूँ किसका है, भाई कोई साथी छूटे ना तो लीजिए, कोई साथी फिलहाल नहीं छूटा, सभी साथियों के मेल्स हम शामिल कर चुके हैं, फिर भी कोई साथी छूटा होगा तो कोशिश करेंगे उनके नाम भी हम शामिल कर लें। फिलहाल ये गीत आप सुने, बहुत ही खूबसूरत, समय भी कम है, घड़ी इशारा कर रही है कि समय ज़्यादा नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि आप इस गीत को भी ज़रूर एंजॉय करें।

इस गीत को तो आप जरूर इंजॉय करें, लेकिन चलते चलते कुछ साथियों ने हमें हमारे प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बहुत सारे मेल्स भेज दिए थे, उन्हें भी जरूर शामिल करना चाहूंगी। बसंत अली का है, मोहम्मद कमर का संदेश हम तक पहुंचा था, उद्धव राव दौरान का मैसेज हमारे पास आया है, मास्टर अशोक कुमार का, फागुराम यादव का संदेश भी हमें मिला, हरजिंदर सिंह शिंदे जी का मैसेज आया है, अनिल जैन का संदेश पहुंचा हमारे पास आकर, और पीएस नाहवकर जी का भी संदेश, अशोक दले जी का संदेश पहुंचा है, फरीद अंसारी जी की मेल मैं देख रही हूँ, दीपेश वर्मा, दिलावर खान और साथ ही साथ सीताराम कांगड़ा जी का, सरफुद्दीन अंसारी, देशायोग यशमीत, सुधाकर जाधव और बिट्टू भाट

या सुधाकर जाधव जी के साथ ही इनके अन्य सदस्यों की तरफ से भी संदेश आया, योगेंद्र नायक और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ रजक मोहम्मद जी का भी संदेश हम तक पहुँचा है। साथियों आपने शायद प्रोग्राम नहीं सुना, आपने पहले ही खाना पूर्ति कर दी संदेश भेजकर, और उम्मीद करती हूँ कि अगले बार जब भी मुलाकात होगी तो आप ऐसा नहीं करेंगे, प्रोग्राम के साथ जुड़िए, अपनी यादें साझा करिए जो प्रोग्राम का विषय है, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है हमें भी प्रोग्राम करने में और आपको भी सुनने में। तो इसी के साथ अपनी दोस्त सुषमा को दीजिए अब इजाजत, नमस्कार, जल्दी ही मुलाकात होगी और आप यूं ही बने रहें हमारे स्टेशन के साथ।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
6: कोई बोले राम राम।
5: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
11: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था, और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है se.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की यह तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है। और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े

अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही है। झारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही है। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी है।
पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े, और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं, यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है, और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं, और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है, और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा
और जूस बना रही है।

0: ओडीओपी के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, विदेश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है, ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती है। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए, वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमस्य सेप्टेम्बर मासे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मेलनस्य अवसरः प्राप्यते। अहं देशस्य सर्वेषां जनानां स्वागतं करोमि। मन की बात इत्यस्मिन् अहं देशवासिभ्यः सकारात्मक प्रयासाय मंचं प्रददामि। देशस्य उपलब्धीनां चर्चां करोमि। भारतस्य तादृशैव एका महत्वपूर्णा ऐतिहासिकी उपलब्धिः एकदिवसानन्तरं 10 वर्षाणि प्राप्स्यन्ति। सा उपलब्धिः अस्ति सर्जिकल स्ट्राइक इति। 10 वर्षेभ्यः पूर्वं 16-20-शततमवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीयसेनया पाकिस्तानदेशे स्थितेषु आतंकवादिनां आश्रयस्थलेषु सर्जिकल स्ट्राइक इति कृतमासीत्। LOC इति नियन्त्रणरेखामतिक्रम्य अस्माकं वीरभटैः यथा आतंकवादस्य विरुद्धं सैन्यकार्याचरणं कृतं तद्दृष्ट्वा जगदिदं आश्चर्यचकितमासीत्। सर्जिकल स्ट्राइक इत्यनेन दृढतया सम्पूर्णस्य विश्वस्य समक्षं भारतस्य आतंकवाद विरोधिन्याः नीतेः एकं नूतनमुदाहरणं प्रस्तुतमासीत्। आतंकवादिनाम् आक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं यां पीडाम् असहत सर्जिकल स्ट्राइक इति तस्याः पीडायाः

ये आकाशवाणी है, आइए सुनते हैं ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: हर रविवार 12:10 पर हम हाजिर हो जाते हैं अपनी प्यारी ग्रामीण सखियों और बहनों के लिए और लेकर आते हैं उन्हीं पर आधारित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ रेनू तौर, यानी कि डबल रेनू है आज हम
1: और मैं हूँ रेनू सैनी
0: जी। तो हम दोनों मिलकर अपने प्यारे श्रोताओं को करते हैं राम राम, राम। तो भाई रेनू, आज देखो त्योहारों के जो चीजें चल ही रही हैं, लेकिन साथ साथ कल से शुरू हुआ है पितृ पक्ष। हाँ, और ये हमारे धर्म में सबसे कहते हैं ना, पूर्वजों के प्रति सम्मान होता है, कृतज्ञता होती है, श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। तो एक बेहद ही पवित्र और बहुत ही अच्छा कहते हैं ना, उनके लिए भाव व्यक्त करने का समय है।
1: और देखो रेनू, की हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत महान है, उसमें जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कैसे पता चलेगा अपने पूर्वजों के बारे में। तो ये जो पितृ पक्ष है, कृतज्ञता हमें व्यक्त करने के लिए आते हैं जो हर वर्ष आते हैं, साथ ही जो हमारे छोटे नन्हे बच्चे हैं उनको की कैसे उनके अंदर संस्कार के जो बीज है वो रोपित होते हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वज आज जो हमारे बीच नहीं है वो अपने कर्मों से बहुत कुछ ऐसा करके जाते हैं जो सुविधाएं पहले नहीं थी मगर अब हमारे पास है, आने वाली पीढ़ी के पास है, तो उन्हें कैसे कैसे मिले।
0: और ये कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी तभी चलता है जब उनके संस्कार, उनके जो संस्कारों के बीज हैं वो हम पर आए, फिर हमने उनको आगे अपने बच्चों में डाला। तो इसी तरह से ये कहते हैं ना, यादें हैं जो उनकी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमेशा हमें समर्पित हम करेंगे, और आगे हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी इसी तरह से उनको ये श्रद्धांजलि और उनको भी ये समर्पित करें, तर्पण दे, दान दें, ताकि कहते हैं 15 से 16 दिन जो है ना, ये लोग हमारे दिवंगत परिजनों की जो मृत्यु है उन पर हम उनको पिंडदान करते हैं। तो कहा जाता है जो इस समय हम जो उनके लिए करेंगे या जो उन्हें पसंद था उन्हें हम खिलाएंगे, उनके लिए दान करेंगे, तो वो उन तक मिलता है।
1: बिल्कुल उन तक मिलता है। और इसके पीछे पीछे मनोवैज्ञानिक यही अवधारणा है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो भी इन संस्कारों को सीखें और कुछ ऐसा करें कि जीवन में देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए जो कल्याणकारी हो। तो यही यादें जो होती हैं हमारे बच्चों को नई बातें सिखाती हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो हाँ, इस तरह से यादें रह जाती हैं और ये यादें बहुत खूबसूरत होती हैं, है ना। अच्छा, हम आज जैसे बात कर रहे हैं तो आज कुछ खास दिन भी हैं, जैसे कि विश्व पर्यटन दिवस, और
1: बिल्कुल, और जैसे सितंबर के चौथे रविवार को बेटी दिवस भी मनाया जाता है।
0: अच्छा
1: भाई देखो, आजकल बेटियां हैं तो सब कुछ है,
0: बिना
1: बेटियों के ना घर हमारा जो होता है वो जगमगाता है और ना ही देश जगमगाता है, ये हम देख ही रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: विश्व नदी दिवस भी है आज।
0: जी, और हम आज बात करेंगे एक ऐसे महान राजनीतिक नेता की जो कि जिनकी आज जयंती है, हर साल 27 सितंबर को मनाई जाती है। उनका जन्म 27 सितंबर 1873 को गुजरात के नाडियाल में हुआ था और उन्हें पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई जो हैं वो उनके बड़े भाई थे, और इनके बहुत सारी ऐतिहासिक बातें हैं। वह पहले भारतीय स्पीकर अध्यक्ष रहे और इसी तरह से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर काफी समय पर गुजारा है।
1: इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की। और देखो, इनके साथ साथ ही आज एक और बहुत ही महान व्यक्तित्व है जिनकी आज जयंती है। मैं बात कर रही हूँ हमारी बहनों के लिए, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की। और मन की बात में आज हमारे माननीय मोदी जी ने इनके कार्यों की सराहना भी की है। तो देखो, ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वही हमारे देश को आगे लेकर जाते हैं और कुछ ऐसी बातें छोड़ कर जाते हैं जो कि हमारे देश का जो तिरंगा है वो पूरी
0: शान से लहराता है
1: और हमें प्रेरणा भी देता है।
0: बिल्कुल, और इससे प्रेरित होकर हमारे जो आज के यंग जनरेशन है, कि जो नव युवक हैं, वो भी प्रेरित होते हैं।

0: और हमारी ग्रामीण बहनों के लिए ये इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे तिरंगे को और ऊंचा उठाने के लिए, हमारे विश्व के जो पूरा विश्व है उस पे हमारे देश को की एक नई पहचान बनाने के लिए सेवा संकल्प अभियान के तहत हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए राष्ट्र निर्माण, सेवा भाव और विकसित भारत के संकल्प पर भी जोर दिया है।
1: बिल्कुल
0: और हम देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे जो हमारा देश है वो पूरी तरह से विकसित भी हो रहा है। और 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच यह जो यात्रा चल रही है सेवा संकल्प अभियान की, और देखो रेणु, इसमें युवा पौधारोपण, स्वच्छता अभियान पर भी जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि हम जान सकते हैं कि अगर हमारे देश में पौधारोपण होगा, स्वच्छता अभियान होगा, तो हमारा देश जगमगाएगा और हर ओर हरियाली से खिलखिलाएगा।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से कहते हैं ना कि हमारी जो महिलाएं हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर जगह आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह से आप बात करें, योग हो, ध्यान हो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी हम इस कार्यक्रम में जैसे बातचीत भी लेकर आते हैं और बहुत सारी खास बातें लेकर आते हैं जो हमारी बहनों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ज्यादा खास होती हैं। तो आज जो खास बात है वो हम लेकर आए हैं, जो कि योग और ध्यान से महिलाओं का समग्र स्वास्थ्य किस तरह से होता है। डॉक्टर एनएस यादव जो हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सक हैं, जिन्होंने ये जानकारी दी और इनसे जानकारी ले रही हैं।

0: कमलेश मुद्गल।
1: तो चलो भाई हम अपनी बहनों को सुनवाते हैं योग करके, ताकि वो भी अपने
0: आप को स्वस्थ भी बनाए और सुंदर भी बनाए।
1: बिल्कुल,
2: हर बहन चहकती रहे और उसके चेहरे पर यूं ही मुस्कान बनती रहे, क्योंकि पूरी गृहस्थी जो है वो हमारी बहनों के आसपास उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। कहूँ तो रीढ़ की हड्डी हैं हमारी बहनें, क्योंकि घर उनके बिना चल ही नहीं सकता। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए समय समय पर हम नित नई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो है योग और ध्यान से महिलाओं का समग्र स्वास्थ्य। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सत्यनारायण यादव को, जो योग विशेषज्ञ एवं प्राकृतिक चिकित्सक है। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: जब भी हमारी बहनों से हम योग की बात करते हैं, बहनें कहेंगी हमारे पास तो समय ही नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि सुबह बच्चों का काम करना है, उसके बाद में फिर खेती बाड़ी का भी काम करना है, भाई हमारे पास तो योग का समय नहीं है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि योग के लिए चाहे 20 मिनट निकालो चाहे आधा घंटा निकालो, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ समय आपको अपने उस शरीर के लिए देना है जिसे कि आप पूरे दिन दौड़ भाग करती हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि योग क्या है?
3: योग आजकल बच्चा बच्चा भी जानता है, भारत सरकार ने योग दिवस के रूप में बहुत प्रचार कर दिया है। तो योग तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तैरना, खेलना, टहलना सब जरूरी है, उस तरह से ऋषि मुनियों की एक ऐसी विद्या है जो अनेक प्रकार के आसन हैं, मुद्राएं हैं, कैसे रिलैक्स किया जाए, कैसे अपने मन को शांत रखा जाए, कैसे अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखा जाए, तो बीमारियों से बचने का और बीमारी से स्वस्थ रहने का एक मार्ग है योग।
2: जब हम बात करते हैं योग की तो दिमाग में यही आता है कि भाई ये इतने कठिन आसन है हम तो नहीं कर पाएंगे, इसमें इतना समय लगेगा हम तो नहीं कर पाएंगे। तो जब हम योग की बात करें तो ऐसे वे कौन कौन से सिंपल आसन है जिन्हें कि हमारी बहन करके स्वस्थ रह सकती है?
3: आजकल तो गांव-गांव में, शहर के हर जगह योग सिखाने वाले लोग हैं, तो अपने निकटतम जगह पर पूछें, उसमें कुछ आसनों का मैं नाम बताता हूँ महिलाओं के लिए। जैसे गोमुखासन है, ताड़ासन है, कोणासन है, सूर्य नमस्कार है, श्वास की क्रियाओं में अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, अगर इतना करते हैं तो वो हमेशा पर्याप्त है। दूसरा जो आज का संदर्भ है ध्यान का,
2: जी
3: ध्यान भी जरूर करना चाहिए महिलाओं को।
2: देखिए, योग का क्या एक समय निश्चित है, या जब योग करें तो योग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान हमारी बहनें रखें?
3: मैं योग के बारे में थोड़ा सा और बता दूं अपनी बहनों को कि योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम ध्यान ही नहीं है। योग का मतलब गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि युक्त आहार व्याहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगे नहि दुखा। योग का मतलब होता है समय से भोजन करना, ऋतु के अनुसार किस ऋतु में कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो गांव के लोगों के लिए ईश्वर ने इतने कृपा किया है कि उनको सब्जियां हर सीजन में अलग अलग होती हैं, सीजन के अनुसार ही सब्जियां खाएं और फल खाएं, अनाज खाएं, तो जो उनके खेतों में जिस समय जो हो रहा है वो खाएं और समय से खाएं। और गांव के लोग तो अनुशासित होते ही हैं, सूर्यास्त से पहले जो भोजन कर लिया, लेकिन सूर्यास्त के बाद जितना जल्दी हो सके भोजन कर लें और ऋतु के अनुसार करें, सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, तो वो भी एक योग है। दूसरा आचरण भी अपना अनुशासन करें, जैसे हम दूसरे के बारे में ना सोचें, दूसरे की आलोचना ना करें, वो भी एक योग है। और अपने काम को पूरा मन से पूजा समझ के, एक कर्तव्य समझ के, चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे महिला हो, अगर अपने काम को पूरा ध्यान से करे, एकाग्रता से करे, वो भी एक योग है।
2: यानी योग जो है वो पूरे हमारे जितने भी दिनचर्या है उस सब में समाया हुआ है, चाहे हम सुबह उठते हैं वहाँ से लेकर और रात को सोते हैं वहाँ तक। जब बार बार महिलाओं की बात करते हैं, अगर हमारी बहनें तनावग्रस्त होती हैं या परेशान हो जाती हैं, तो दूसरी बहन उनको सलाह देती है कि ऐसा कर, थोड़ा ध्यान कर लिया कर, तो तनाव से ना मुक्ति मिल जाएगी। जब तनाव आता है तभी हम ध्यान की तरफ क्यों जाते हैं? तो ये ध्यान क्या है?
3: ध्यान कहने के लिए तो बहुत सरल है, बहुत कठिन भी नहीं है
2: जी,
3: इसको बस समझ लिया जाए। ध्यान से जैसे दादी जी भी कहती हैं अपने पोते को जब जाता है, चाहे बेटे को भी कहते हैं माता पिता, ध्यान से जाना, ध्यान से टिफिन खा लेना। तो ध्यान का मतलब कि वर्तमान में रहना, जो भी हम काम करें अगर हम वर्तमान में, अगर सांस भी लेते हैं, माता पिता हम कई बार सिखाते हैं कि हाथ कैसे धोना है बचपन से ही, बाल कैसे रखना है, क्या करना है, सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता है कि सांस कैसे लेनी है
2: जी।
3: हम अपने सांस को बैठ के कभी देखते हैं, बड़े से बड़े भी, पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन जब हम बैठ के आंख बंद करके जब हम अपनी सांस को देखने लगे, हस्तक्षेप ना करें, कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है, कितनी देर आने में लग रहा है, कितनी देर निकलने में लग रहा है, अगर हम एक एक सांस को केवल 5 मिनट अगर इतना कर लेते हैं ना, इससे सरल और इससे अच्छा और इससे

0: लाभकारी कोई ध्यान नहीं है। देखेंगे ध्यान के बहुत सारे प्रकार हैं, जितना हम अभ्यास करेंगे उतने प्रकार के ध्यान के मार्ग अपने आप प्रशस्त होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला ध्यान है कि आंख बंद करके बैठ जाए और करने का समय क्या है, खाली पेट, नाश्ते से पहले, दोपहर के भोजन से पहले, रात के भोजन से एक घंटा पहले, जब भी आपके पास समय है। तीनों में से तीनों समय कर सकते हैं, पांच पांच मिनट, एक भी समय तो जरूर करना चाहिए। तो बैठ करके सबसे पहले अपने आंख बंद करके अपने शरीर को देखिए कि मैं कैसे बैठी हूँ, एकदम शांत मन से। उस समय सब चिंता छोड़ दीजिए, मेरा काम क्या हुआ, क्या होना है, ना पीछे जाइए ना आगे का सोचिए।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, हर समय जब भी हम आंख बंद करते हैं तो विचारों का जो उधेड़बुन है वो तो चलती ही रहती है, तो उस उधेड़बुन को सबसे पहले तो हमारी बहनों को कंट्रोल करना है, या एक आम इंसान के रूप में भी जब हम बात करें तो उसको तो हमें पहले कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी क्या कुछ पहले हमें सोचना पड़ेगा या उसका कुछ अभ्यास करना पड़ेगा?
0: कि इस फील्ड में मुझे 45 साल से ज्यादा हो गया कराते हुए, दुनिया में सब पर विजय प्राप्त की जा सकती है, मन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती
1: जी। और जब हम मन पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं तब
0: तो भाई मन, लोग कहते हैं कि मन भी तो नहीं एकाग्र होता है। शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी साणु तुम आपनोती तत्व वायु निरोधेत। कैसे मन को एकाग्र किया जाए, न कोई दुनिया में सर्जरी है न कोई दवाई है, कि अगर श्वास को आप देखना शुरू कर दीजिए रोज रोज तो आपका मन भटकना ही बंद हो जाएगा
1: जी।
0: और करके देखिए तो जैसे जैसे मन पर विजय प्राप्त होने लगे, पहले अगर एक मिनट में 100 जगह जाता है तो 50 बार जाएगा, फिर 25 बार जाएगा, फिर 10 बार करते करते शून्य हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा बच्चे की तरह।
1: यानी जैसे जैसे हमारी बहनें अभ्यास करेंगी तो अभ्यास के बाद जो है वो अपने सांसों को आते जाते बिल्कुल ध्यान से देख पाएंगे कैसे सांस जा रही है कैसे आ रही है, और जो उधेड़बुन उनके पहले दिमाग में रहती थी अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी
0: और सारी बीमारियों का जड़, आज जितना भी तनाव है, किसी डायबिटीज है, किसी को सिर दर्द है, महिलाओं की अनेक समस्याएं हैं, सारी समस्याएं हैं तनाव के कारण। और तनाव को दूर करने का दुनिया में अगर कोई रास्ता है तो ये ध्यान है
1: जी,
0: प्राणायाम है। तो इस श्वास को ही अगर देखना शुरू करें, उसके बाद ये लेट के भी करें, बैठ के नहीं बैठा जाता, कई लोगों से कमर में दर्द है या कोई थका हुआ है या बीमार है, ताकत नहीं बैठने की, तो वो लेट जाएं और लेट करके शरीर को ढीला छोड़ के आंख बंद करें, बंद करके भी अपने शरीर को देखें, फिर श्वास को देखें
1: जी।
0: और ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद उनको लगेगा कि वाकई मन शांत हुआ, और उसे केवल मन नहीं शांत होगा, सिर दर्द कब दूर हो गया, अनिद्रा की बीमारी, गुस्से, चिड़चिड़ापन, नकारात्मकता, और भी बीमारियां, पाचन की बीमारियां, सब धीरे धीरे केवल इससे दूर हो जाएगा
1: जी।
0: तो ये अभ्यास करें। और उसके बाद ध्यान के साथ साथ कहते हैं तीन तरह का ध्यान होना है, शरीर का ध्यान, पहले शरीर को शिथिल करिए बैठ के चल लेट के, फिर उसके बाद मन को करिए श्वास के द्वारा, इसके बाद कोई विचार नहीं आना चाहिए। जैसे हम सोने के लिए जाते हैं तो चप्पल को बिस्तर पर नहीं अलाउ करते, उसी तरह से बोलिए ध्यान करते समय कि मेरा समय है, विचारों को प्रणाम कीजिए नम्रता से
1: जी।
0: तो उस तरह से थॉट को, विचारों को ध्यान के समय बोलिए कि थोड़ी देर के बाद मैं मिलूंगी, सारे काम बाकी हैं, उपला भी पातना है, पशुओं को चारा भी देना है, खेती में भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, कुछ भी हो सकता है, बोलिए कि लेकिन ये मेरा 5 मिनट है ना, ये मेरा समय है, चाहे 15 मिनट, रोज एक टाइम अपना निकालिए, ना पति के लिए, ना बच्चे के लिए, ना परिवार के लिए, ना दुनिया के लिए, 5 से 15 मिनट अपना समय निकालिए 24 घंटे में से, और उसमें केवल प्राणायाम करिए, ध्यान करिए और रिलैक्स करके विचारों पर ध्यान कीजिए कि विचार नहीं आना चाहिए। तो उसका क्या लाभ होगा कि धीरे धीरे इतना नियंत्रण हो जाएगा कि जब चाहेंगे तभी गुस्सा आएगा, तो फिर गुस्सा ही नहीं आएगा तो समझिए कि अनेक बीमारियां दूर, तनाव ही, कहते नो एक्सपेक्टेशन नो फ्रस्ट्रेशन, तो इससे क्या होगा, संतुष्टि का अभाव होगा ध्यान करने से। कैसे लाभ होगा स्वास्थ्य पर, कि केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा है नैतिक स्वास्थ्य, कि हम अपनी नजर में हम ऊंचा उठना चाहते हैं लेकिन अगर नैतिक पतन हमारा हो चुका है तो हम अपनी नजर में भी नहीं उत्थान कर पाते हैं, लेकिन ध्यान करने से, प्राणायाम करने से आत्म दृष्टि में हम ऊंचा उठते हैं। तो नैतिक उत्थान, शारीरिक, मानसिक, उसके बाद आध्यात्मिक उत्थान। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अध्यात्म का मतलब होता है अपनी धी कहते हैं विद्या को, आत्मबुद्धि को हम शोधित कर सकते हैं, अपनी कमियों को हम देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, वो ध्यान से सबसे बड़ी बात आती है
1: जी। और योग और ध्यान में जब हम बात करें तो ऐसा भी कर सकते हैं हमारे कि एक दिन योग कर लें एक दिन ध्यान, या ध्यान ज्यादा इफेक्टिव है योग के बजाय?
0: वो एक दूसरे का भाग है, जैसे भोजन है, सब्जी का अलग भूमिका है, रोटी की अलग भूमिका है, फल की अलग है, तो अगर हम आसन करके और ध्यान करें तो ज्यादा लाभ होगा। जैसे गांव के लोग की भाषा में दही को जब मथते हैं, दूध को जब खूब मथते हैं, तब घी
1: मट्ठा निकलता
0: है, बिना मथे जो है बाहर नहीं आएगा। तो योगाभ्यास करने से क्या होता है, जब शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है तो शरीर के जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, गंदगियां हैं, वो

0: इकट्ठी हो जाती हैं, तब उनको फेफड़ा को निकाल के बाहर करने में, किडनी को निकाल के यूरिन से बाहर निकालने में आसानी हो जाती है। अगर नहीं हम करते हैं, सीधा ध्यान करते हैं तो भी निकलेगा, लेकिन अगर आसन के बाद करें तो ज्यादा लाभ होगा।
1: तो मैं तो यही सलाह दूंगी अपने बहनों को कि अपने स्वास्थ्य का भी उनको बहुत ही ध्यान रखना है, योग और ध्यान से अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारी बहनों को इतनी अच्छी और उत्तम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी हमारी बहनों ने बातचीत सुनी योग और प्राकृतिक ध्यान से कैसे आप महिलाएं अपना समग्र स्वास्थ्य बना सकती हैं, और उन्हें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सत्यनारायण यादव और बातचीत कर रही थी हमारी बहन कमलेश मुदगल। तो चलो अब हम अपनी बहनों को एक अच्छा गीत सुनवाते हैं कि भाई
3: हाँ, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि भाई योग से क्या क्या फायदे हो जाते हैं।
2: फायदे भी होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर खूबसूरती होती है तो अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो मन में अच्छा भी लगता है।

0: तो हम आज जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं, जैसे कि कार्यक्रम आप जानते ही हैं गृहलक्ष्मी, और हम बहुत सारी बातें लेकर आते हैं, बहुत सारे खास मुद्दों पे बातें भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, खास बातें भी बताते हैं। और उसके साथ हम बताएंगे कि हमारी किसान भाइयों के लिए, किसान बहनों के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि हमारा ऑयल सीड्स किसान मित्र, इसके जरिए एक वर्चुअल कृषि विस्तार से होगी एक ये विकसित योजना कह लो, उसका उद्देश्य क्या है, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान और किसान समुदाय के बीच की जो दूरी होती है ना, उनको कम करना, एक स्मार्ट खेती की जुड़ी हुई उपयोगी जानकारी सलाह उन्हें मोबाइल के जरिए तुरंत उपलब्ध हो जाए। और इसका उद्देश्य ही यही है कि उन किसानों की जो उनकी जो सरल भाषा है उसमें समय पर और उपयोगी कृषि संबंधी जो जानकारियां हैं वो बेहतर और तरीके से, और वैज्ञानिक खेती को कैसे बढ़ावा मिले उनको अच्छे से मिल पाए।
1: बिल्कुल। और देखो इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जैसे अभी हमने बताया कि जो ये जो ग्रामीण बहनें हैं हमारी हर तरह से खेती के लिए भी अच्छी तरह से जानकारी ले सकती हैं, उसी तरह से जो हमारी भारतीय ग्रामीण बहनें हैं उनका खेलों में भी दबदबा इतना रहा है कि नकारा नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल।
1: अब जहां तक देखो खेल की मिट्टी में, जब गांव की मिट्टी में हमारी बहनें खेलती हैं ना, तो एक अलग ही हुनर और रंग निखर कर आता है, और उसके बाद फिर जिस तरह से वो हमारे देश का नाम रोशन करती हैं उसका तो कहना ही क्या।
0: और अभी जैसे चल रहा है ये जापान के आईची नागोया में चल रही है एशियन गेम्स, है ना, उसमें भी हमारी जो भारतीय महिलाएं उनकी खास भूमिका रही है, और उन्होंने ऐसे इतिहास रच दिया है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसको एक कहते हैं ना कि उस पर प्रेरित हो रही है।
1: बिल्कुल। देखो रेनो, जो एशियाड है, अभी हमारी जो महिला क्रिकेट टीम ने एशियन खेलों में पहला स्वर्ण पदक दिला, एक बहुत बड़ी बात होती है। और हमारी बेटियों के लिए भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उस बात के लिए भी देखो बेटी बचाओगे तभी
0: तो बेटी नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ माता पिता ही नाम रोशन नहीं करते हैं, देखो पूरे देश का नाम रोशन होता है। तो जैसे हमारी क्रिकेट में हो, कबड्डी में हो, या शूटिंग में हो, या कहीं हमारे किसी भी एथलीट की बात की जाए, तो बहुत सी महिलाएं जिन्होंने अपना योगदान दिया।
1: बिल्कुल। देखो जैसे मीराबाई चानू, हरमनप्रीत कौर, वर्निका एलंगोवन, और भारतीय एथलीट में सुचिका तरियाल, और इसी तरह से राइजा ढिल्लो, माहेश्वरी चौहान, परिणाश थालीवाल, सीमा कुमारी, इन सभी जो बेटियां हैं हमारी, हमारे अपने परिवार का नाम रोशन किया, समाज का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया है, और इसके साथ साथ विश्व में भारत की खेलों के जो दृष्टिकोण से एक नई पहचान बनाई है।
0: इसलिए कहते हैं हर जगह जो हमारे जो मैदान है वो फतेह करके आती है।
1: बिल्कुल।

0: हाँ, तो भाई हमारे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें जानकारी तो मिल ही रही है, और हर
1: बिल्कुल
0: बार उनको ये भी पता है, हमारे श्रोता बहुत ही समझदार हैं, उन्हें भी पता है कि हम महीने के जो आखिरी रविवार होता है उसमें होती है मन की बात, जिसमें
1: बिल्कुल
0: हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सी बातों को संकेत बताते हैं, और जिसमें कि आज उन्होंने कुछ मुख्य बिंदुओं पर जो हमारा ध्यान आकर्षित किया वो
1: बिल्कुल
0: है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भी उन्होंने बात करते हुए भारतीय सैनिकों की बहादुरी की सराहना की।
1: बिल्कुल। और देखो, इसके साथ ही रेनू, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज हमसे साझा की है, जनगणना की। हम
0: बिल्कुल
1: सभी जानते हैं, तो उन्होंने बताई है कि सब लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्त रहते हुए भी डिजिटल तरीके से भी पोर्टल पर अपनी जानकारी साझा की जा सकती है। और इसके लिए जो इस तरफ आगे बढ़ते हैं वो उनके बारे में बताते भी हैं, जैसे हरदेव राणा जी के बारे में उन्होंने बताया कि
0: जी
1: भाई जो सभी लोग हैं, क्योंकि एक तरह से ये हमारा कर्तव्य बनता है,
0: बिल्कुल
1: और अगर हम जनगणना पोर्टल पर समय से अपनी जानकारी साझा कर देंगे तो हम सभी के लिए भी ये अच्छी बात होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी हमारे हितकर की ही बातें हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद पर जो निर्णायक संदेश दिया, उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ साथ खिलवाड़ करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से उन्होंने नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के बारे में भी बताया कि जो हमारे युवा हैं, जब वो नशे को छोड़ देंगे तो उसके बाद जो हमारा देश है वो अपने आप ही विकसित होगा और आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जब इंसान नशा करता है तो उस समय उसे कुछ नहीं सोचता, वहीं नशा मुक्त होने पर हर इंसान अपने तरीके से रचनात्मक बातों को जान सकता है, सोच सकता है।
0: बिल्कुल, और इसी बात पर हम कहते हैं ना कि नागरिकों की सराहना की, जहां जहां स्वच्छता को लेकर और
1: बिल्कुल
0: पर्यावरण को लेकर एक विकास हुआ है, जहां चेतना उजागर हुई है कह लो, तो मतलब स्वच्छता तो हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर
1: बिल्कुल
0: स्वच्छ रहेंगे, आसपास हम पेड़ पौधे लगाएंगे, तो हमारा जीवन स्वस्थ भी रहेगा।
1: बिल्कुल। और रेनू, इसके साथ साथ उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर भी बल दिया, जो कि जो हमारी बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं वो इस
0: वो
1: बात
0: इस
1: को
0: बात को
1: अच्छी तरह
0: ध्यान
1: से
0: से
1: समझेंगी,
0: सुने।
1: क्योंकि जो हमारे माननीय मोदी जी हैं वो बहनों की सराहना भी करते हैं,
0: बिल्कुल
1: जब वो छोटे छोटे मतलब कामों से अपने उद्योग को बढ़ावा देती हैं और कुछ ना कुछ राशि अपने घर के लिए लेकर आती हैं, तो देखो परिवार में भी एक तरह से वो मिलता है सहयोग, और इसके साथ साथ जो हमारा देश है वो भी वोकल फॉर लोकल के माध्यम से आगे
0: आगे
1: बढ़ता
0: बढ़ता
1: है।
0: है। और इसी तरह से कुपोषण मुक्त भारत की जो पहल है वो
1: बिल्कुल
0: होनी चाहिए, तो इस पर भी जोर दिया है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से उन्होंने जो हमारे देश में उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे अभी अभी हम गणपति उत्सव मना कर चुके हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि ये जो सारे उत्सव हैं और देश को बढ़ाने के लिए जो जो कार्य किए जा रहे हैं वो एक तरह से सब में एकजुटता और अनुशासन भी
0: अनुशासन
1: लेकर
0: लेकर
1: आते
0: आते
1: हैं।
0: हैं, बिल्कुल। तो इसी तरह से मन

0: और वीरांगना क्रम में हम अपनी बहनों के लिए कोई ना कोई ऐसी वीरांगना अवश्य लेकर आते हैं जो कि प्रेरणा देती है और साथ साथ ही कुछ ना कुछ हमें भी करने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो रेणु, आज हम अपनी बहनों के लिए ऐसी ही एक प्रेरणा जो वीरांगना है वो लेकर आए हैं। और ये जो वीरांगना है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय नहीं थी। मगर भारतीय ना होकर भी पूरी तरह से भारतीयता के रंग में ढल गई।
1: बिल्कुल,
0: ये एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही गहरा संदेश है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है रेणु, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं कि जो विदेशी लोग होते हैं वो भी जब यहाँ आ जाते हैं तो उसके रंग में ऐसे ढल जाते हैं कि पूरी तरह से वो भारतीयता को ही अपना लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हमारी बहनें समझ ही गई होंगी।
1: तो आज किसको लेकर आए?
0: बिल्कुल, आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर एनी बेसेंट को। ये एक ब्रिटिश नागरिक थी और जो इनका दिल था वो पूरी तरह से भारतीय था। एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और महिला अधिकारों की समर्थक और उसके साथ साथ हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही प्रमुख नेता रही।
1: बिल्कुल। और इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में इंग्लैंड में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि वहां हुआ जन्म, लेकिन फिर भी जो भावनाएं हैं हमारे भारत से, हमारे भारत की मिट्टी से जुड़ी। और 20 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे धार्मिक राजनीतिक मतभेदों के कारण उनका अलगाव भी हो गया। और ब्रिटेन में सामाजिक कार्य भी उन्होंने बहुत किया। अलगाव के बाद भी ब्रिटेन में विचार की स्वतंत्रता थी, महिला अधिकार था, जन्म नियंत्रण था, तो उस पर भी उन्होंने एक प्रखर वक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया।
0: और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। तो जो हमारी बहनें हैं इनसे शिक्षा ले सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो शिक्षा है और जो अपने समाज के लिए कार्य करना है वो हर महिला के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि महिला की प्रगति के लिए भी ये बहुत जरूरी है।
1: और कहां ये जब इन्होंने भारत आई तो कहते ना होम रूल लीग आंदोलन, उनमें उन्होंने उनकी शुरुआत की। और कांग्रेस की अध्यक्षता, कहते हैं कि उनके राष्ट्रवादी कार्यों के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नजरबंद भी नहीं किया गया और उनकी

0: लोकप्रियता देखते हुए उन्हें कलकत्ता के अधिवेशन में भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया गया।
1: तो देखो, हम अपनी बहनों को यही कहेंगे कि जो ऐसी महान प्रेरणा व्यक्तित्व रही, वो उनको हम शत शत नमन करते हैं, साथ ही प्रेरणा लेते हैं कि हमें भी उनके जो दिखाए पदचिन्ह थे उन पर चलना चाहिए।

0: तो समय की घड़ी कह रही है कि हमें जाना होगा, लेकिन हम बता दें कि हमारे जो श्रोता हैं वो शाम को कृषि से संबंधित प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे तो सुनेंगे। 5:10 पर लोक रंजनी रहेगा, 6:30 सुन सकेंगे ग्राम संसार, और 7:05 पर होगा कृषि जगत। और इसी के कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप बहुमूल्य सुझाव हमें इस पते पर दे सकते हैं। पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001। और हमें ईमेल के जरिए भी आप हमें जुड़ सकते हैं, feedback@fnh.gmail.com।
1: देखो मन तो नहीं चाह रहा, लेकिन घड़ी की सो इशारा कर रही है कि अब हम अपनी बहनों को बोलें कि आज का हमारा यह गृहलक्ष्मी कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम के हमारे प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल। और इसी के साथ बहनों, राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा सामने है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
2: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नए काम के लिए एक साथ आते हैं।
2: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi said that India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control LOC to take action against terrorism. Prime Minister Modi said the surgical strike was India's decisive response to the long-standing pain the nation had endured due to terrorist attacks. He stated that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
3: On the ongoing census, Mr. Modi said the first phase of this exercise is nearly complete across all states and UTs. Data from over 32 crore families has already been recorded. Mr. Modi emphasized that the census is a national responsibility for all. He added that the facility to self-register census details is very convenient and people can register information about themselves and their families directly from their mobile phones. Along with Hindi, this facility is available in 16 languages. The Prime Minister said the entire process takes about 15 to 20 minutes. Prime Minister Modi noted that India began the year celebrating national pride through the Somnath Swabhiman Parv. He highlighted that despite Mahmud of Ghazni first demolishing the coastal Somnath temple a millennium ago in 1026 AD, it still stands grandly symbolizing India's immortality. Mr. Modi linked this to the Modera Sun Temple in Gujarat, which Ghazni also attacked and destroyed in 1026 AD, just a year after King Bhimdev I built it in 1025 AD. However, King Bhimdev I confronted Ghazni's forces and swiftly rebuilt the Modera temple. Mr. Modi opined that it is because of this very resilience that the Somnath temple too was repeatedly rebuilt after multiple destructions, including later devastation by Alauddin Khilji. Emphasizing that Indians view the sun as a source of light, energy, science and continuity rather than just an architectural deity, the PM shared that Modera has evolved into the country's first Surya Gram solar village running entirely on solar energy as a model of sustainability. Inviting people to witness this heritage, the Prime Minister also highlighted the Modera Dance Festival, which showcases India's classical dances every January following Makar Sankranti. The Prime Minister also mentioned Mahatma Gandhi's birth anniversary, which will be celebrated on the 2nd of October. He said cleanliness is one of the many guiding principles for life given by Bapu. Mr. Modi cited several examples of initiatives to maintain cleanliness by young people across the country. Concluding his address, Mr. Modi urged listeners to keep sharing inspiring stories. He added that learning about these efforts through Mann Ki Baat inspires people in other parts of the country as well. Defence Minister Rajnath Singh said that India is building capabilities, keeping in mind the nature of warfare over the next 10, 20 and 25 years as it moves towards creating self-reliant and future-oriented defence ecosystem. He made these remarks while speaking at an event today organised by Media House in New Delhi. Mr. Singh emphasised that the country should not merely focus on importing technology but should strive to define and develop defence technologies. In Nepal, 10 people are missing after an avalanche struck the base camp of Himlung Himal in western part of the country near the Tibet border, said an expedition organizers today. Weather system over the Bay of Bengal has brought heavy snow to the mountains and persistent rain to Nepal's hills and plains, prompting tourism authorities to urge trackers and climbers to suspend activities. In men's cricket, first one international of the three-match series between India and West Indies will be played today at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram at 2 p.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:10:17 हुए हैं। आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपके अपने पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एक ही फिल्म से कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कहानी सिर्फ पर्दे पे नहीं चलती बल्कि हमारे मन में भी अपना एक संसार बना लेती हैं। कभी कोई कहानी प्रेम की मिठास लेकर आती है, कभी रिश्तों की कसौटी बन जाती है और कभी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्चा साथ आखिर किसे कहते हैं। आज की हमारी फिल्म भी कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आई है। आज की हमारी फिल्म है साल 1966 में बनी फिल्म सगाई। इस फिल्म के निर्देशक थे एसडी नारंग, कहानी लिखी थी जेड हुसैन ने और फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे विश्वजीत, राजश्री और प्रेम चोपड़ा। फिल्म का संगीत दिया था उस दौर के लोकप्रिय संगीतकार रवि ने, जबकि गीत लिखे थे मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने। तो आइए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है शील से। शील का किरदार निभाया है खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री राजश्री ने। शील एक संस्कारी परिवार की लड़की है। उसके पिता राय साहब रघु प्रसाद अपनी बेटी की शादी कैलाश से तय कर देते हैं। कैलाश का किरदार निभाया है प्रेम चोपड़ा ने। दोस्तों, जिंदगी में कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता। शील की मुलाकात होती है राजेश से। राजेश की भूमिका में है विश्वजीत। तो आगे क्या होता है आपको बताएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। उससे पहले सुन लेते हैं फिल्म सगाई का एक खूबसूरत सा गीत जिसे गाया है आशा भोसले ने।

इस प्यारे से गीत के बाद फिल्म सगाई की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे शील और राजेश एक दूसरे के करीब आते हैं। उनके बीच प्रेम का रिश्ता बन जाता है। शील कैलाश से शादी नहीं करना चाहती, वो राजेश से शादी करना चाहती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां परिवार की इच्छा और दिल की इच्छा आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। और फिर आता है शील का जन्मदिन, और इसी मौके पर शील और राजेश अपनी सगाई का जश्न मनाते हैं। आगे क्या हुआ ये जानेंगे इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: पापे ना शर्मा
1: इस खूबसूरत गीत के बाद अब वापस लौटते हैं फिल्म सगाई की कहानी की ओर। राजेश और शील की सगाई को कैलाश स्वीकार नहीं कर पाता। उसके मन में राजेश के प्रति दुश्मनी पैदा हो जाती है और फिर एक दिन राजेश की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट एक साजिश थी राजेश के खिलाफ। इस एक्सीडेंट में राजेश कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त हो जाता है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ एक युवा प्रेमी जिसकी जिंदगी अचानक बदल गई, दूसरी तरफ एक लड़की जिसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने प्रेमी का साथ देगी? शील के पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन शील ने राजेश का साथ नहीं छोड़ा। शील ने राजेश के साथ विवाह कर लिया। यहां फिल्म का शीर्षक सगाई जैसे एक नए अर्थ में बदल जाता है। सगाई सिर्फ दो लोगों के बीच किया गया वादा नहीं रह जाती, वो जीवन भर साथ निभाने के संकल्प में बदल जाती है। फिल्म की कहानी जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ!
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के एक ही फिल्म से प्रोग्राम में, और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ। और आज आप सुन रहे हैं फिल्म सगाई की कहानी के साथ साथ उसके नगमे भी। तो आइए सुनते हैं एक और भावनात्मक गीत फिल्म सगाई से।

दोस्तों, इस भावनात्मक गीत के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शादी के बाद शील अपने लकवा ग्रस्त पति की सेवा में लग जाती है और अपने पति को फिर से जीवन के प्रति विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। यहाँ फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रह जाती, एक ऐसी स्त्री की कहानी बन जाती है जो कठिन परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानती। कहानी का भावनात्मक केंद्र यही है कि जब जीवन आसान नहीं रहता, तब रिश्तों की असली परीक्षा होती है। राजेश के लिए शील का साथ सिर्फ प्रेम नहीं है, वो अब उसके जीवन का सहारा बन जाती है। तो ये थी फिल्म सगाई की कहानी संक्षेप में। तो अभी हमारे दोस्तों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा अपने संदेशों का, तो अभी हम अपने दोस्तों के संदेश शामिल कर लेते हैं। तो पहला संदेश हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम दिशानी और निमित अहुजा ने हमें ये संदेश भेजा है। इन्होंने लिखा है, एक ही फिल्म सगाई की कहानी और गीत सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है, आपकी प्रस्तुति भी लाजवाब, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगला मेल हमें मिला है धर्मेंद्र छिप्पा जी का, और इनके साथ हैं, अगला मेल है हमें झग्गर राम साहू, ये हमें मेल भेजा है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। और अगला संदेश है संजय धिंगिया जी का, एक ही फिल्म से कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है, शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। ये संदेश हमें मिला है बागपत उत्तर प्रदेश से। तो अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं फारूक अली जी का, इनको भी हमारा प्रोग्राम एक ही फिल्म से आज पसंद आ रहा है, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। अगला मेल हमें मिला है पीएस नावकर जी का, ये संदेश इन्होंने भेजा है नरवेल महाराष्ट्र से, और इनके साथ हैं नावकर परिवार के सभी सदस्य, इनको भी आज का प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। एक और मेल हम शामिल कर लेते हैं सुदर्शन मुखी जी का, ये मेल हमें, इनके साथ है अनीता सिमरन, ये मेल हमें मिला है शांति नगर सोनीपत से, इनको भी आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, एक ही फिल्म से कार्यक्रम का ये आनंद उठा रहे हैं और फिल्म के गीत भी इन्हें पसंद आ रहे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगला मेल है हीरा मनी वर्मा जी का, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में इन्होंने लिखा है आज फिल्म सगाई, फिल्म से जुड़ी रोचक जानकारी के साथ फिल्म के बेहतरीन गीत सुनने को मिल रहे हैं, यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई। तो आपका भी हीरामणि जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये मेल हमें मिला है दंत रेगी भट्टापारा से। और एक और मेल मैं शामिल करना चाहूंगी रोजी डी कास्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से, इन्होंने ये मेल हमें भेजा है और ये हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा प्रोग्राम बहुत ही आनंद के साथ सुन रहे हैं, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और एक और मेल शामिल करूंगी मैं कमलकांत गुप्ता जी ने, ये मेल भेजा है पीपरिया से, और इनके साथ है दीपा गुप्ता और छिप्पा गुप्ता। तो इसी तरह से हमें अपने संदेशों के जरिए अपना प्रेम जाहिर करते रहिए और प्रोग्राम कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया भी हमें भेजते रहिए। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। जो नए श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ईमेल पता मैं बताना चाहूँगी ipradiodelhi@gmail.com। तो दोस्तों, फिल्म सगाई में कई अनुभवी कलाकार भी दिखाई देते हैं। राज मेहरा शील के पिता की भूमिका में है, दुर्गा खोटे शील की माँ के रूप में, असित सेन टुनटुन इफ्तिकार अस्पताल की डॉक्टर की भूमिका में, और हेलन डांसर के रूप में दिखाई देती हैं। इन कलाकारों ने फिल्म की कहानी को अलग अलग रंग दिए। दोस्तों, फिल्म की एक खास बात है शील का विष कन्या के रूप में किया गया नृत्य। ये दृश्य फिल्म की कहानी में आने वाले तूफान से पहले का एक अलग रंग प्रस्तुत करता है। राजश्री का नृत्य और उस समय की सिनेमाई प्रस्तुति हमें उस दौर की फिल्मों की शैली की याद दिलाती है। दोस्तों, फिल्म सगाई की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि रिश्ते सिर्फ खुशियों के साथ रहने से नहीं बनते,
रिश्ते तो मुश्किल समय में साथ निभाने से मजबूत होते हैं। रिश्तों की असली पहचान खुशियों में नहीं होती, मुश्किल घड़ी में जो साथ थामे वही तो सच्ची सगाई होती है। तो आइए सुनते हैं फिल्म सगाई का एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, फिल्म सगाई की कहानी में एक और बात आपको मैं अवगत कराना चाहूंगी कि टुनटुन ने मिस अनारकली की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में। यानी फिल्म में गंभीर प्रेम कहानी के साथ हल्के फुल्के हास्य का भी रंग मौजूद था। तो इसी के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक और फिल्म की कहानी के साथ। और इसी के साथ नमस्कार, और चलते चलते सुनते जाइए इसी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे कीते। कहा भारतीय फौज वलों पाकिस्तान च दहशतगर्दी टिकाणियां ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया दे सामने भारत दी दहशतगर्द विरोधी नीति दी एक नवी मिसाल पेश कीती है। प्रधानमंत्री वलों नौजवानां नूं नशा मुक्त युवा मुहिम दा हिस्सा बनन दी अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत भविख विच जंग दी प्रकृति दी नूं ध्यान च रखते हुए अपनियां समर्थावां दा विकास कर रहा है। अज विश्व सैर सपाटा दिवस मनाया जा रहा है ते भारत ते वैस्ट इंडीज दरमियान 3 1-रोजा क्रिकेट मैचां दी लड़ी अज तो शुरू। पहला मैच अज दोपहर बाद 2 तिरुवनंतपुरम च खेडिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय फौज वलों पाकिस्तान च दहशतगर्दी टिकाणियां ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया दे सामने भारत दी दहशतगर्दी विरोधी नीति दी एक नवी मिसाल पेश कीती है। आज आकाशवाणी ते अपने मन की बात प्रोग्राम च उन्होंने कहा कि देश कल 28 सितंबर नूं इस स्ट्राइक की 10वीं वरेगंढ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देख के हैरान है कि किवें बहादुर भारतीय जवानां ने दहशतगर्दी खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने लई कंट्रोल रेखा पार कीती। उन्होंने कहा कि देश लंबे समय तो दहशतगर्दी हमलों तो पीड़ित सी अते सर्जिकल स्ट्राइक इसका फैसला कुन जवाब सी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दहाके दौरान बालाकोट हवाई हमले तो लैके ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने वार वार इस संदेश दिता है कि दहशतगर्दी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिता जाएगा।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 11 सितंबर नूं अमरीका च वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ते हुई दहशतगर्दी हमले दी 25वीं बरसी है। मर्दमशुमारी बारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका पहला गेड़ करीब सारे राज्यां च पूरा हो गया ते 32 करोड़ तों वध परिवारां दा डेटा दर्ज कीता गया। उन्होंने कहा कि इस समय लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ते उत्तराखंड दे दूर दराडे ते बर्फ नाल ढके खेतरां च काम चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना हर किसी की राष्ट्रीय जिम्मेवारी है ते लोग अपने मोबाइल फोन की वरतों करके अपनी ते अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते ने।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: हुण तक 2,60,00,000 तों वध लोकां ने अपने मोबाइल फोनां दी वरतों करके अपने वेरवे रजिस्टर कीते ने। प्रधानमंत्री ने आउंदी 2 अक्तूबर नूं महात्मा गांधी दी जयंती दा हवाला दिंदिआं कहा कि सफाई गांधी जी दे जीवन दे मार्गदर्शक सिद्धांतां चों इक सी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही महात्मा गांधी नूं सच्ची श्रद्धांजलि होएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा मुहिम दे तहत देश भर दे लखां नौजवानां ने हाल ही च नशां तों दूर रहण दा अहद लिया अते इस प्रचार दी जिम्मेवारी वी लई है। श्री मोदी ने कहा कि इह मुहिम 100 हफ्तिआं तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने नौजवानों नूं अपनी रचनात्मकता की वरतों करके इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने खुशी जाहिर की कि माई इंडिया प्लेटफॉर्म से राष्ट्रीय गीत, स्लोगन, लेखन ते नुक्कड़ नाटकों समेत कई मुकाबले आयोजित किए गए ने। प्रधानमंत्री ने भारत के निरंतर मजबूत प्रदर्शन नूं यकीनी बनाने लई पिंडां ते कस्बियां तों खिडारियों नूं लभण की जरूरत ते भी जोर दिता। श्री मोदी ने पंजाब के रजिंदर सिंह का जिक्र किया जो साल 1980 के ओलंपिक च सोने का तमगा जितने वाली हाकी टीम का हिस्सा रहे। 1982 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो मुनशियात से दूर रहें और मुल्क से मुनशियात के खात्मे के पैगाम की तशहीर करें। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो मर्दमशुमारी के अमल में शामिल हों और खुद ही तफसीलात का इंदराज कराने की सहूलत का इस्तेमाल करें। लोगों की सहूलत के लिए सरकारी मिल्कियत के सभी बैंक और इलाकाई देही बैंक आज खुले हुए हैं। एशियाई खेलों में बॉक्सर अंकुश पंघाल मर्दों के 80 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इस तरह भारत को एक तमगा मिलना तय है। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के साथ पहले एक रोजा मैच में भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारतीय फौज की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कल 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहादुर भारतीय फौजियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिस अंदाज से कंट्रोल लाइन को पार किया था, दुनिया भी इसे देखकर हैरान रह गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दाना हमलों की वजह से मुल्क ने तवील अरसे से जिस दुख और तकलीफ का सामना किया है, सर्जिकल स्ट्राइक इसी तनाजुर में भारत की फैसलाकुन जवाबी कार्रवाई थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों को भी इस साल 25 साल हो गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इन हमलों में हलाक होने वालों में अमरीकियों के बाद सबसे बड़ी तादाद भारतीय अफराद की थी। जनाब मोदी ने 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अमरीका के अपने दौरे में इन बेकसूर लोगों को खराज अकीदत पेश करने का तस्करा भी किया। मौजूदा मर्दमशुमारी के अमल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सभी रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में इस अमल का पहला मरहला करीब करीब मुकम्मल हो गया है। 32 करोड़ से ज़्यादा कुंभों का डेटा पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि मर्दमशुमारी की तफसीलात खुद ही रजिस्टर करने की सहूलत बहुत ही सहल है और लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही खुद के बारे में और अपने अरकान ख़ानदान के बारे में जानकारी का इंदराज कर सकते हैं।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: जानकारी दाखिल करने के बाद लोगों को एक खसूसी आईडी मौसूल होगी जिसे वो मर्दमशुमारी करने वाले इन्यूमरेटर के आने पर शेयर कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज विश्व हिंदू परिषद के साबिक इंटरनेशनल वर्किंग सदर आजहानी अशोक सिंघल का 100वां योम पैदाइश भी है। जनाब मोदी ने उन्हें एक अजीम शख्सियत करार दिया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सकाफत मुआशरे और मुल्क के लिए वक्फ कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने महात्मा गांधी की जयंती का भी जिक्र किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि सफाई सुथराई जिंदगी के उन बहुत से रहनुमा उसूलों में से एक है जो बापू ने दिए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क भर के करोड़ों नौजवान अफराद ने नशा मुक्त युवा अभियान के तहत मुनशियात और नशावर मादों के खिलाफ हाल ही में अहम अहद किया है।
1: आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत

0: हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।
1: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अजीम जश्न के साथ इस साल का आगाज किया था। जनाब मोदी ने कहा कि महमूद गजनी ने 1000 साल पहले पहली मरतबा 1026 में सोमनाथ मंदिर को मुनहदिम कर दिया था। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सोमनाथ मंदिर समुन्द्र के किनारे अपनी पूरी शान व शौकत के साथ आज भी खड़ा है। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने सामईन से जोर देकर कहा कि वो अपने भाई से तरगीब किस्से और कहानियां शेयर करते रहे। वजीर आजम ने कहा कि मन की बात के जरिए इन कोशिशों के बारे में सीखने से मुल्क के दीगर हिस्सों के लोगों को भी तरगीब मिलती है। नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने यह उम्मीद जाहिर की कि लोग अपने अजीज व अकारिब के साथ आने वाले त्यौहार पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत खुद कफील और मुस्तकबिल के दिफाई इको निज़ाम तैयार करने की समत आगे बढ़ते हुए अगले 10, 20, 25 साल के दौरान जंगी साजो सामान की नौयत को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही।
2: आज का युद्ध केवल सैनिक नहीं है, आज का युद्ध मल्टी डोमेन है। भविष्य में सुरक्षा का क्षेत्र और युद्ध का मैदान टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगा। जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा उसे बैटल फील्ड में स्वाभाविक रूप से एडवांटेज होगा। इसलिए हमने भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी को फ्यूचर रेडी बनाने पर बल दिया है।
1: आज पूरी दुनिया में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे की सकाफत को जानने और इक्तसादी तरक्की को तकवीत फराहम करने में सियाहत के नुमाया रोल को उजागर करता है। इस साल का मौजू है सियाहत को अज़रेनो वज़ा करने के लिए डिजिटल एजेंडा और मसनू ज़हानत। ये मौजू सियाहत के मुस्तकबिल का तायुन करने में टेक्नोलॉजी के रोल को नुमाया करता है। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक ग्राहकों की सहूलत के लिए आज खुले हुए हैं। ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से पूरे मुल्क में कल से शुरू होने वाली मुजव्वजा 3 रोज़ा बैंक हड़ताल के पेश नज़र उठाया गया है। पाकिस्तान में शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के डेरा इस्माइल खान में हुए धमाके में 12 अफराद हलाक और 35 दीगर जख्मी हो गए। ये धमाका कल उस वक्त हुआ जब धमाका खेज मादे से भरी गाड़ी पुलिस चेक पॉइंट में जा टकराई और जोर का धमाका हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के अंकुश पंघाल बॉक्सिंग में 80 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेकरूज सलीमोव को 5-0 के मुत्तफ़िका फैसले से हरा दिया। इस तरह बॉक्सिंग में भारत को पहला तमगा मिलना तय है। अंकुश पहली मरतबा एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। मर्दों की क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 1 रोज़ा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। यह मैच अब से कुछ देर बाद 2 बजे शुरू होगा। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही 2 महीने के वक्फे के बाद भारत की 1 रोज़ा क्रिकेट मैचों की टीम में वापस आ गए हैं। इस सीरीज में शुभमन गिल भारतीय टीम की कमान संभालेंगे जबकि शाई होप वेस्टइंडीज के कप्तान हैं। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो मुनशियात से दूर रहें और मुल्क से मुनशियात के खात्मे के पैगाम की तशहीर करें। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो मर्दों शुमारी के अमल में शामिल हों और खुद ही तफसीलात का इंदराज कराने की सहूलत का इस्तेमाल करें। लोगों की सहूलत के लिए सरकारी मिल्कियत के सभी बैंक और इलाकाई देही बैंक आज खुले हुए हैं। एशियाई खेलों में बॉक्सर अंकुश पंघाल मर्दों के 80 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इस तरह भारत को एक तमगा मिलना तय है। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के साथ पहले 1 रोज़ा मैच में भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही

0: single squash boxer Ankush Fangal assures medal. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था, इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
2: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
2: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1,000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
1: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
2: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
2: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
2: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथोन थीर खानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानीत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए ट्रैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
4: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर वेबिनार प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इन एक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है,
6: इन एक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मैटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इन एक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
5: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृता नंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृता नंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी का प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं मोहब्बत को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता, मोहब्बत को महसूस किया जा सकता है, उसकी खामोशी सुनी जा सकती है और कभी कभी उसे पर्दे पर देखा भी जा सकता है। लेकिन अगर किसी फिल्मकार ने मोहब्बत को एक खूबसूरत दृश्य, एक कविता और एक गीत और एक एहसास बना दिया, तो वो नाम था यश चोपड़ा। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हमारे आज के कलाकार हैं यश चोपड़ा। हिंदी सिनेमा के उस फिल्मकार का नाम जिनकी फिल्मों में प्यार सिर्फ कहानी नहीं था बल्कि एक पूरा संसार था। सरसों के खेत, उड़ती हुई शिफॉन की साड़ियां, बारिश में भीगते प्रेमी, ट्रेन की खिड़की से दिखाई देता इंतजार और उन सब के बीच एक अधूरी सी मोहब्बत। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद करेंगे उस शख्सियत को जिसने भारतीय सिनेमा की रोमांटिक भाषा ही बदल दी। तो आज बात करेंगे हम यश चोपड़ा की।

साथियों, आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा की। 27 सितंबर 1932 लाहौर में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे शायद उस समय खुद भी नहीं मालूम था कि आने वाले वर्षों में वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना एक अलग अध्याय लिखने वाला है। यश चोपड़ा का बचपन साधारण था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। सिनेमा उन्हें आकर्षित करता था और यही आकर्षण उन्हें मुंबई तक ले आया। उन्होंने फिल्मी दुनिया में शुरुआत एक निर्देशक के रूप में की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। लेकिन यश चोपड़ा सिर्फ फिल्में बनाने वाले निर्देशक नहीं थे, वो भावनाओं को समझने वाले फिल्मकार थे। उन्हें पता था कि दर्शक सिर्फ कहानी नहीं देखता, वो कहानी में खुद को ढूंढता है। यश चोपड़ा अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा के साथ काम करते हुए फिल्म निर्माण की बारीकियां भी सीखी और आया वर्ष 1959। फिल्म थी धूल का फूल। ये उनकी निर्देशन यात्रा की महत्वपूर्ण शुरुआत थी। इसके बाद आई कई फिल्में जैसे धर्मपुत्र, वक्त, इत्तेफाक। हर फिल्म के साथ यश चोपड़ा की अपनी सिनेमाई पहचान मजबूत होती गई, खासकर वक्त, जिसने उन्हें एक बड़े फिल्मकार के रूप में स्थापित किया, जहां एक परिवार, समय का तूफान, बिछड़ना और फिर वर्षों बाद मिलना। यश चोपड़ा जानते थे कि बड़े पर्दे पर भावनाओं को कैसे प्रभावशाली बनाया जाता है।

साथियों, ये मधुर से गीत और संगीत आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन पसंद चैनल आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से। और आज आपकी दोस्त है आपके साथ तृप्ति जौहरी, और कार्यक्रम चल रहा है वही एक ही कलाकार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा जी के बारे में। तो साथियों, यश चोपड़ा की असली पहचान अभी बननी बाकी थी, वो पहचान जो आगे चलकर उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा रोमांटिक फिल्मकार बनाएगी। साल था 1973। यश चोपड़ा अपनी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी की शुरुआत करने वाले थे, और शुरुआत की भी उन्होंने आई यशराज फिल्म्स और इसी बैनर के तहत आई फिल्म दाग ए पोएम ऑफ लव। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी जैसे कलाकार थे। यहीं से यश चोपड़ा की अपनी रचनात्मक दुनिया का विस्तार हुआ। उनकी फिल्म में प्रेम था, लेकिन सिर्फ प्रेम नहीं था, रिश्तों की जटिलता थी, समाज था, संघर्ष था, और इंसान के भीतर चलने वाली भावनाएं थी। फिर आया साल 1976, फिल्म कभी कभी, अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, राखी और अमिताभ की प्रेम कहानी। लेकिन इस फिल्म की सबसे खास बात थी शब्द। जी हाँ, शब्द। साहिर लुधियानवी की कविताएं और यश चोपड़ा की सिनेमाई दृष्टि, ऐसा लगा जैसे कविता स्क्रीन पर चल रही हो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर प्यार को कोई आवाज दी जाए तो शायद वो आवाज कुछ ऐसी ही होगी।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा की। यश चोपड़ा की फिल्म में गीत कहानी से अलग नहीं होते थे, गीत कहानी का हिस्सा होते थे और यही वजह थी कि उनके सिनेमा में संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता था, महसूस होता था। जी हाँ, यश चोपड़ा को सिर्फ रोमांस का फिल्मकार समझना उनकी प्रतिभा को छोटा करना होगा। उन्होंने गंभीर सामाजिक और एक्शन ड्रामा भी बनाए। अगर हम बात करें फिल्म दीवार की, जिसने अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन दौर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिर आई फिल्म त्रिशूल, उसके बाद काला पत्थर, यानी एक तरफ प्रेम और भावनाएं तो दूसरी तरफ संघर्ष, व्यवस्था और इंसान की लड़ाई। यश चोपड़ा की यही विविधता उन्हें अलग बनाती थी। फिर आया वर्ष 1981, जब आई फिल्म सिलसिला। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा, एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, विवाह, आकर्षण और सामाजिक मर्यादाओं के बीच इंसान की भावनाओं को दिखाया गया। फिल्म अपने समय से आगे की कहानी कही गई और आज भी सिलसिला का नाम आते ही हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित रिश्तों और प्रेम कहानियों में इसकी चर्चा होती है। यश चोपड़ा की खासियत थी, वो रिश्तों को सिर्फ सही या गलत के खांचे में नहीं रखते थे, वो उनके भीतर छिपे दर्द और द्वंद को दिखाते भी थे।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा के बारे में। तो यश चोपड़ा ने एक से एक बढ़कर बेहतरीन फिल्में बनाई, जिसमें चांदनी, डर, दिल तो पागल है और वीर जारा जैसी फिल्में बनाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यश चोपड़ा की फिल्मों में ऐसा क्या था जो दशकों बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। शायद इसका जवाब उनकी फिल्मों की उस दुनिया में है जहां प्रेम को सिर्फ संवादों में नहीं दृश्यों में भी दिखाया जाता था। उनकी फिल्मों में संगीत का विशेष स्थान था। गीत कहानी को आगे बढ़ाते थे, कपड़े भी कहानी का हिस्सा बन जाते थे, लोकेशन भी कहानी का हिस्सा बन जाती थी और सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं कहानी का केंद्र होती थी। यश चोपड़ा ने हिंदी फिल्मों के रोमांस को भारत की सीमाओं से निकलकर दुनिया के खूबसूरत लोकेशनों तक पहुंचाया। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियां हो, लंदन की सड़कें हो या भारत के पहाड़ और खेत, उनकी फिल्म में हर जगह एक खास रोमांटिक एहसास दिखाई देता था। यश चोपड़ा के सिनेमा की चर्चा संगीत के बिना अधूरी है। उन्होंने अलग अलग दौर के महान संगीतकारों और गीतकारों के साथ काम किया, जैसे साहिर लुधियानवी, हयाम शिवहरी, हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा की जोड़ी, जावेद अख्तर, आनंद बख्शी और बाद के दौर में कई अन्य प्रतिभाशाली संगीतकार और गीतकार। यश चोपड़ा समझते थे कि एक अच्छा गीत फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शक के साथ रह सकता है और यही हुआ भी। उनकी फिल्म के गीत आज भी रेडियो पर बजते हैं तो लोग उन्हें गुनगुनाते हैं और पुरानी यादें लौट आती हैं।

और साथियों इसी के साथ कुछ हम नाम शामिल कर लेते हैं अपने कार्यक्रम में, जैसा कि प्रोग्राम का दस्तूर है, कुछ हमारे साथी जुड़ जाते हैं कार्यक्रम में, तो रोजी डिकैस्ट्रो, ताज मोहम्मद, प्रकाश वर्मा, पीएस नाहवकर, पंकज शर्मा, सुदर्शन मुखी, दिग्दर्शन गौड़, संजय ढींगिया, राजकुमार डूडी और धर्मेंद्र छिपा, और इनके साथ रवि कुमार, राहुल आर कुमार, हरजिंदर शिंदा, मसूर हसन, फरगुन यादव, फारूक अली खान, शेख जियाउर रहमान के साथ उनके परिवार के सभी सदस्य, बाबू शिवा, प्रवीण हगोने, रवि कुमार, राहुल, और आपने भी मेल कई बार भेजी है, तो आप सभी हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और आपने अपने संदेश हमें भेजे हैं कार्यक्रम से संबंध में, तो इसी तरह जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें। आनंद लीजिए इस गीत का।

तो साथियों ये था आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार और आप थे अपनी दोस्त तृप्ति चौरी के साथ। तो आज के कार्यक्रम से दीजिए अपनी दोस्त तृप्ति चौरी को अनुमति, फिर किसी कार्यक्रम में आपसे होगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन।
1: वंदना सखी,
0: हाँ?
1: देखो आश्विन माह कल ते लग गयो है और ब्रज में ब्रजवासी सवेरे सवेरे कुंड सरोवर में स्नान करके अपने पितरन को श्राद्ध करे हैं।
0: हाँ बहना, और बहना पता है पितृ पक्ष में पंच बली कर्म को बहुत महत्व हुए।
1: हाँ सखी,
0: मतलब भोजन के पांच हिस्से करके देवता चीटी कौआ गाय और कुकर को ग्रास निकालो जाए तो पितृ पक्ष की परंपरा हो सखी प्रकृति ते जुड़ी भई है।
1: हाँ सखी, और मंदिरन में सांझी कला को प्रदर्शन होए, पर इन दिनान में धूप में इतने गर्मी हुए क्या लोग बाग बीमार पड़ जामे।
0: हाँ तो याको एक उपाय है ना कि जब भी घर से निकलो तो सिर पे छाता या साफा रखना चाहिए। वैसे जब बादल छट जामे ना बेना तो धूप की तेजी अधिक लगे।
1: और अपने स्वास्थ्य को सही रखवे की काजे तले भुने खाद्य पदार्थन को छोड़ के हल्को सुपाच्य भोजन हो करना चाहिए ना। पर देखो सखी, मौसम को कछु पतो ना, कभू तो बड़ी गर्मी है जाए और कभू देखो ठंडा मौसम है जाए। और आजकल तुम देख ही रही हो कैसो अदल बदल रहे हो मौसम।
0: सही बात कह रही हो बहना, जब बादल है जाए तो धूप की तेजी कम है जाए और जब बादल छट जाए तो धूप तेज है जाए। और बहना धूप की तेजी के कारण पित्त बढ़ जाए तो बढ़े पित्त को शांत करवे के काजे कसैले कड़वे और मीठे खाद्य पदार्थन को सेवन जरूर करना चाहिए।
1: हाँ सखी, जैसे करेला तोरी लौकी कद्दू ये सभी पित्त को शांत करे हैं। और जेऊ कहो जाए कि इन दिनान में दिन में सोए ते कफ और पित्त दोष बढ़ जाए।
0: हाँ बेना, आयुर्वेद जो है वो ऋतु के अनुसार चले और ऋतुओं को आधार है सूर्य की गति। आजकल जो समय है ना बेना वाकु विसर्ग काल कहो जाए, जमे शरीर दुर्बल है जाए याइते या समय मिलवे वारे खाद्य पदार्थन को सेवन बतायो गयो है।
1: सखी आजकल कहो जाए है कि दूध मिश्री मिश्रित लेना चाहिए और पुरानो अनाज खाना चाहिए, जैसे पुरानो चावल जो ठंडक प्रदान करे।
0: हाँ, और थोड़ी देर चांदनी में हूँ जरूर टहलना चाहिए।
1: हाँ सखी, इन दिनान में चांद की शीतलता बड़ी सुहानी लगे और शरद पूनो पे तो या शीतलता को अमृत बताया है।
0: हाँ सखी, याई ते तो पूनो पे खीर को चांद की शीतलता में रखियो जाए। और बहना आजकल ब्रज की कुंजन में खिले चंपा बेला के पुष्प चांदनी ते अटखेली करत भाई सुंदरता बिखेरे हैं। और इन रातन में रासलीला देखने को जो आनंद है वो कछु और ही होए।
1: इन सघन लतन में विचरनो सचमुच ही आनंददायक होए। सुनो तो यह प्यारे से लोकगीत में जाकू स्वर दियो है मदन मोहन ब्रजवासी ने।

0: प्रेम अमन श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। मैं ना प्रेम वाटिका के दो युगलवर प्रेम को चरम है। कृष्ण भक्त कवि श्री रसखान ने जो प्रेम को वर्णन किया है वो ब्रज साहित्य की शोभा है। बिनन ने अपनी रचना में सहज सरल और प्रभावी ब्रज भाषा को प्रयोग करके जी साबित कियो हो कि प्रेम हर धर्म ते ऊपर है।
1: हाँ सखी, प्रेम वाटिका की और वो रचनाएं प्रेम का वर्णन करें। जैसे दो मन एक होते सुनियो वह प्रेम न आही होई जब दो तनु एक सोई प्रेम कहाई।
0: बहना वियोग में हूँ प्रेम को अद्भुत वर्णन कियो है रस खान ने। वा रस की कछु माधुरी उधो लही सहाही पावे बहुर मिठास अरु अब दूजो को आही।
1: और सखी रस खान की तनिया रहीम हूँ कृष्ण भक्ति धारा के प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। समाज में नीति प्रेम और व्यवहार की सीख देती रहीम की रचनाएं आज हूँ प्रेरणा दे मैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात का रही मन हरि को घटियो जो भृगु मारी लात।
0: बिल्कुल बहना, नीति परक दोहेन के संग संग जो रचनाएं बिनन ने गोपी प्रेम की करी है ना वे हूँ बड़ी विरली हैं, बड़ी मार्मिक हैं। कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नहीं सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी अनुदिन श्री वृंदावन ब्रजते आवन आवन आनी अब रहीम चित ते नटरति है सकल श्याम की बानी।
1: सखी रहीम और रसखान दो हमारे ब्रज साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। तो चनाएं आज एक वार्ता सुनवाए दें।
0: हाँ सुनवाए।

0: हाँ सखी, यह वार्ता का विषय है ब्रज साहित्य में रहीम और रस खान को स्थान। यह वार्ता के वार्ताकार हैं विकास खन्ना।
1: राधे राधे रसिकजन श्रोताओं, ब्रज भाषा में बात जब रहीम और रसखान के स्थान की आवे है तो इन दोनों कविन को केवल भक्तिकालीन मुस्लिम कवि कहनो पर्याप्त ना है। इन दोनों को महत्व ब्रज भाषा को साहित्यिक अभिव्यक्ति की व्यापकता देवे और वाके भीतर प्रेम भक्ति नीति तथा लोक जीवन की भांति भांति धारान को समृद्ध करवे में है। साहित्य इतिहास में रहीम व रसखान को ब्रजभाषा के प्रमुख कविन में रखा गया है। तो रसिक जन श्रोताओं, बात करें रसखान की, ब्रजभाषा में प्रेम व कृष्ण भक्ति के जा अद्वितीय कवि की भाषा में स्वाभाविक प्रवाह माधुर्य चित्रात्मकता और भाव सघनता की प्रचुर अभिव्यक्ति मिले है। रसखान के उपलब्ध साहित्य में सुजान रसखान और प्रेम वाटिका विशेष महत्व को स्थान रखे हैं। उनके कई ग्रंथन को लेके विद्वानन में विरोधाभास मिले हैं। रसखान को यह सवैया ब्रज भाषा की सशक्त प्रस्तुति को सुंदर उदाहरण दियो जा सके है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। या में ब्रज भाषा केवल कृष्ण की स्तुति की भाषा नाए है, ये ब्रज भूमि के संपूर्ण जीवन की भाषा बन जाए है। गोकुल, ग्वाल, नंद की गौए, गोवर्धन, यमुना और कदम, यही हते रसखान को अद्भुत योगदान। प्रेम वाटिका में प्रेम को दार्शनिक स्वरूप आपे या दोहा छंद के माध्यम से प्रेम को लगभग आध्यात्मिक दर्शन को रूप देखवे में मिले है। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई दुई जानिए, जो सूरज अरुधूप। या रचना में ब्रज भाषा में सूफी प्रेम दृष्टि और कृष्ण भक्ति को अद्भुत समन्वय देखने को मिले हैं। एक बात विशेष रूप से कही जा सके कि प्रेम वाटिका मूलतः रसखान की प्रेम रूपी साधना को काव्य है। रसखान की भाषा की एक और बड़ी विशेषता चित्रोपमता है, या में कृष्ण को बाल स्वरूप देखने को मिले हैं। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, ऐसी बड़ी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटपीर कचोटी। या में संस्कृत निष्ठ शब्दावली के बजाय ब्रज के घरेलू लोकप्रिय प्रचलित शब्द आते हैं। याई कारण दृश्य आखन के सामने सजीव है जावे है। याई कारण आलोचनात्मक परंपराऊ रसखान के संवयन में ब्रज भाषा को सहज प्रवाह और दृश्य योजना में उनकी प्रमुख शक्ति माने है। अब बात करें रहीम की। रहीम ब्रज भाषा के नीति और लोक जीवन के महान कवि माने जाए हैं। रहीम को स्थान रसखान से कछु भिन्न है, जहाँ रसखान ने ब्रज भाषाए प्रेम और कृष्ण लीला को माधुर्य दियो, वहीं रहीम ने ब्रज भाषा को नीति व्यवहार और जीवन दर्शन की अत्यंत संक्षिप्त और प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी। रहीम की अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा की हैं, यद्यपि रहीम ने अवधि में भी काव्य रचना की है। साहित्य इतिहास में रहीम ब्रज भाषा के प्रमुख नीति कवियन में गिने जाए हैं। रहीम को प्रसिद्ध दोहा, रहीमन धागा प्रेम को मत तोरी चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, या दोहा में ब्रज भाषा को उपयोग देखिए कि धागा और गांठ जैसे सामान्य शब्दन को माध्यम ते रहीम ने मानवीय संबंधों को गहरो मनोविज्ञान उकेर के रख दियो है। याई तरिया रहीम ने ब्रज भाषा को नीति की भाषा बनाए दीनो। रहीम के दोहे मात्र उपदेश नाए हैं, उनमें लोकानुभव ते निक्सी भई सूक्ति और जीवन बुद्धि है। उदाहरण, रहीमन देखी बड़ेन को लगुना दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। या में तलवार और सुई को विरोधाभास लेकर रहीम

ने बताया है कि संसार में काई व्यक्ति और वस्तुओं को केवल वाके आकार व भारी महत्व ते नाय आंकनो चाहिए। यहीं तरिया रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। पानी के भीतर जल मान सम्मान और जीवन मूल्य कई अर्थ समाये हैं। अर्थात सघनता रही में ब्रज भाषा के नीति काव्य में उनके दोहन की मार्मिकता और लोकप्रियता सिद्ध करे हैं। दोनों ब्रज भाषा के कवियन में महत्वपूर्ण अंतर या प्रकार से देखा जा सके कि भाव पक्षानुसार जहाँ रसखान माधुर्य भक्ति प्रेम वरह प्रकट करे हैं, तो वहीं रहीम नीति प्रेम व्यवहार और लोकानुभव प्रकट करे हैं। शैली की बात करें तो रसखान सवैया कवित्त दोहा को प्रयोग करें और रहीम सिर्फ दोहा शैली में ही लिखे हैं। भाषा की विशेषताओं में अंतर दिखे है, जहां रसखान चित्रात्मक सरस भावपूर्ण भाषा शैली की बात करें हैं, वहीं रहीम सूक्तिपरक संक्षिप्त मार्मिक शैली में बात कह जाएं। जहां ब्रज की बात करें तो रसखान कृष्ण की लीला भूमि के रूप प्रकट करें और वहीं रहीम भारतीय लोक जीवन और नीति की भूमि के रूप में बखान करें। याई काजे रसखान को कृष्ण प्रेम को अद्वितीय ब्रज कवि व रहीम को भारतीय लोक जीवन और नीति को ब्रज कवि कहो जाए है। अतः हम कह सके कि ब्रज भाषा के विकास में जहां ब्रज भाषा को वात्सल्य और माधुर्य दियो, वहीं रसखान ने उसी ब्रज भाषा को अनन्य कृष्ण प्रेम और ब्रज अनुराग दियो और रहीम ने वहीं ब्रज भाषा को नीति सामाजिक व्यवहार और जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति बनाए दियो। या दृष्टि ते रसखान और रहीम ब्रज भाषा के क्षेत्र विस्तारक कवि हते। याही प्रकार ते ब्रज भाषा के विकास में दोनों कविन को संयुक्त महत्व है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, ब्रज भाषा केवल कृष्ण भक्ति की भाषा बनकर नाय रह गई। जहाँ सूरदास जी ने वाय वात्सल्य और माधुर्य दियो, वहीं रसखान जी ने ब्रज भाषाए अनन्य कृष्ण प्रेम और ब्रज अनुराग दियो और रहीम जी ने वाई भाषा को नीति सामाजिक व्यवहार और जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति बनाए दिनो। या दृष्टि ते रसखान और रहीम ब्रज भाषा के क्षेत्र विस्तारक कवि हैं। ब्रज भाषा के साहित्यिक विकास में 16वीं व 17वीं शताब्दी को यह दौर अत्यंत महत्वपूर्ण रहो। आगे चलकर ब्रज भाषा भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों की प्रमुख साहित्यिक भाषा बनी है। इन दोनों कविन को महत्व केवल या तथ्य में नहीं कि वे मुस्लिम पृष्ठभूमि से आए हैं और ब्रज भाषा में लिखे हैं, वास्तविक महत्व ये आते है कि इन दोनों ने ब्रज भाषा को अपनो स्वाभाविक काव्य माध्यम बनाया। रसखान के काजे मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और रहीम के काजे रहीमन धागा प्रेम को मत तोरो चटकाए, एक ब्रज के प्रति आत्मसमर्पण हते और दूजे में मानवीय संबंधन के प्रति संवेदना हते। या काजे ब्रज भाषा के साहित्य में इन दोनों को स्थान सांस्कृतिक समन्वय के उदाहरण मात्र के रूप में ना आए बल्कि स्वतंत्र और उच्च कोटि के साहित्यकारों के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि एक पंक्ति में कहा जाए रसखान ने ब्रज भाषा को कृष्ण प्रेम की आत्मीयता माधुर्य और ब्रज भूमि के प्रति अनुराग दीनों, रहीम ने वाई ब्रज भाषा को नीति लोकानुभव और जीवन दर्शन की गहरी अभिव्यक्ति प्रदान की नी। या प्रकार दोनों ने मिलके ब्रज भाषा की भाव भूमि को भक्ति ते लोक नीति तक विस्तृत किया है और शायद यही कारण ब्रज भाषा के साहित्य में रसखान केवल मुस्लिम कृष्ण भक्त और रहीम केवल नीति दोहाकार नाये हैं, दोनों ब्रज भाषा के अपने कवि हैं। ब्रज भाषा के साहित्यिक इतिहास में इन दोनों कविन की स्थिति या प्रकार ते हम समझ सके हैं। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के विशिष्ट कवि हते हैं, प्रेम और ब्रज अनुराग के कवि

0: ब्रज भाषा के अत्यंत सहज और सरस सवैया कवि हते हैं। रहीम भक्तिकालीन प्रमुख कवि, ब्रज भाषा के नीति और लोकानुभव के कवि, दोहा और बरवे परंपरा की महत्वपूर्ण शिल्पी हैं। हिंदवी को परिचय भी रहीम को इसी व्यापक रूप में रखे है। वे भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार के संगम के लिए स्मरणीय है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा में रसखान के सवैयों की भाषा को विशेष रूप से सरल, सरस और शब्दाडंबर मुक्त मानो जाए है। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह होते है कि सूर कृष्ण की लीला के सांकेतिक मानचित्र बनाए, रसखान कृष्ण प्रेम और ब्रज के अनुराग सांकेतिक मानचित्र बनाए, रहीम मनुष्य का व्यवहार और जीवन की नीति अपनो सांकेतिक मानचित्र बनाए हैं। जैसी अलग अलग धाराएं दिखाई देवे, या दृष्टि से रसखान और रहीम एक दूसरे के पूरक दिखाई देवे हैं। रसखान की कविता पूछे है, मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय क्या है सके, उत्तर है ब्रज और कृष्ण। रहीम की कविता पूछे है, मनुष्य के जीवन को सुंदर क्या बनाए है, उत्तर प्रेम, विनय, विवेक और समन्वन की मर्यादा। समापन के लिए एक प्रभावी वक्तव्य ये कह सके कि यदि हमें इसे किसी साहित्यिक गोष्ठी, ब्रज महोत्सव, विश्वविद्यालय कार्यक्रम या व्याख्यान में प्रस्तुत करना हो तो निष्कर्ष इस प्रकार रखो जा सके, ब्रज भाषा के साहित्य में रसखान और रहीम को महत्व केवल या बात में नहीं कि दोनों कवि भिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि से आके ब्रज भाषा में लिखे हैं, उनको वास्तविक महत्व या बात में कि दोनों ने ब्रज भाषा की अभिव्यक्ति शक्ति को व्यापक बनाया। रसखान ने भाषा में कृष्ण प्रेम को ऐसी आत्मीयता दीनी कि ब्रज भूमि स्वयं प्रेम को आलंबन बन गई। रहीम ने वाई भाषा में जीवन के व्यवहार, नीति, प्रेम और श्रृंगार की ऐसी सरलता और मार्मिकता दीनी कि उनके दोहे लोक स्मृति को हिस्सा बन गए। या प्रकार रसखान ने ब्रज भाषा के हृदय को विस्तार दियो और रहीम ने वाके अनुभव जगत को, दोनों मिलकर प्रमाणित करे हैं कि ब्रज भाषा केवल काई संप्रदाय की भाषा नहीं बल्कि भारतीय लोक संस्कृति और अत्यंत सामर्थ्य की साहित्यिक भाषा है।
1: ब्रज साहित्य में रहीम और रसखान को स्थान। अभी आपने जो वार्ता सुनी, वार्ताकार है विकास खन्ना। बहना, सचमुच ही रसखान और रहीम दो भक्त काल में ब्रज संस्कृति को अंग बने। रसखान और रहीम ने वियोग और संयोग दोनों को ही बड़ो प्यारा, बड़ो मार्मिक वर्णन किया।
2: हाँ सखी, रसखान की भक्ति तो ऐसी ही है कि ब्रज को छोड़ना ही ना चाहते। मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।
1: हाँ बहना, ब्रज की रज को रस तो योगी हूँ प्राप्त करना चाहे, क्योंकि बहना प्रेम भक्ति को विस्तार तो ब्रज के सौंदर्य में अटखेली करत भई गोप और गोपीन की लीलाएं हती, जिन्हन ने कवियन को, रचनाकारन को अपनी ओर आकर्षित करो। एक ऐसो ही सवैया है रसखान को कि रसखान कबो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो,
2: कोट के कल घोत के घाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। सखी, जो ब्रज के रसाचार्य हैं, बिनन ने जो रासलीला करी उनमें इन सब भक्तन की रचनान को रस उड़ेल के रख दियो।
1: पता है बेना, राधा कृष्ण के रहस्यमय पावन प्रेम को सबसे अधिक लोकप्रिय झूलन लीला ने बनाया, जो आजकल बड़ी मनभावनी होए, बड़ी लुभावनी लगे।
2: हाँ सखी, तो चलो एक और लोकगीत मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में इन्हीं झूलन लीला को वर्णन करत भयो सुनवाए दे।
1: हाँ सुनवाए दियो।

0: चलो सखी ब्रज कुंजन की ओर, हिंडोरे झूले युगल किशोर।
1: सखी बड़ो ही प्यारो लोकगीत तो है ना।
0: हाँ बहना,
1: तो अब यही के संग ही हमारो आज को ब्रजमादरी कार्यक्रम यही संपन्न होवे है। मोको यानी के वंदना को
0: और मोको यानी वंदना जौहरी को जाइवे की अनुमति देओ।
1: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्ने साथियों का विशेष कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: मेरे प्यारे दोस्तों और हमारे सभी प्यारे लिसनर्स को नमस्कार। वेलकम टू आवर सुपर फन रेडियो किड्स प्रोग्राम। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट द फन बिगिन। पर शुरू करने से पहले जरा एक बार अपने आप का परिचय तो दे दीजिए।
1: मुसाब
2: सर,
1: इसराज,
3: सौर्य,
4: संस्कृति मडवाल,
5: अमाया गुप्ता,
6: परिणीति।
0: यहाँ पे तो बहुत क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं आज। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी लाइफ में लर्निंग कभी बंद नहीं होती। सुबह उठने से लेकर स्कूल जाने तक और स्कूल से वापस घर आने तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने?
2: हाँ बिल्कुल सही कहा।
0: कभी हमारी टीचर कोई नई बात सिखा देती है, कभी दोस्त मजेदार ट्रिक सिखा देते हैं, और कभी कभी तो हम अपनी गलतियों से ही सीख लेते हैं और फिर हमारी गलतियाँ कहती हैं चलो आज कुछ नया ही सीख लो। और मजे की बात तो ये है कि हर दिन की अपने कोई एक नई ही लर्निंग होती है। तो आज देखते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे दोस्त ने ऐसे कौन कौन सी नई बात सीखी है। चलो तो शुरू सहर से करते हैं। बताओ सहर, आपने क्या सीखा?
7: मैं पहले साइकिल चलाना सीखी, बार बार गिरी लेकिन वापस साइकिल चलाना सीख गई।
0: अरे वाह सहर। चलो शौर्य अब तुम ही बता दो।
8: तो मैंने कंप्यूटर वेबसाइट्स पर प्रोग्राम करना सीखा है।
0: अरे वाह, अब इस राज की टर्न है।
9: सुबह से मिलने वाली सीख, हर सुबह जब मैं अपना बिस्तर खुद ठीक करता हूँ तो मैं चीजें व्यवस्थित करना सीखता हूँ, तो मैं डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखता हूँ। मैंने सीखा है कि अपनी छोटी छोटी काम खुद करने से भी हम इंडिपेंडेंट बनते हैं। एक छोटी सी कविता जो मैंने खुद सीखी थी सुबह से मिलने वाली सीख पर। छोटी सी मेरी रोज की बात, दे जाती है सीख बड़ी खास, अपने काम खुद करना सीखो, बन जाओ अपने काम के बॉस।
0: अब संस्कृति से भी तो सुन लिया जाए।
10: मैंने तो पहली बार क्रोशे बनाना सीखा था, क्योंकि क्रोशे से बनी हुई हर एक चीज मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मैं सोचती थी अगर इसे खुद से बनाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा।
0: पता है संस्कृति, मेरे पास एक क्रोशे का टॉप है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी किसी दिन।
10: हाँ जी जरूर।
0: अब फाइनली बारी आ ही गई परिणीति की, तो आप भी कुछ बताइए अपने बारे में।
11: मैं डेली योगा सीखती हूँ।
0: और परिणीति को डेली योगा सिखाता कौन है?
11: मम्मी पापा।
0: चलो बातें तो बहुत हो गई, एक गाना भी सुन लिया जाए।
12: हाँ।

0: दोस्तों, स्कूल का नाम सुनते ही हमारे सामने कितनी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बुक्स, नोटबुक्स और होमवर्क जो हर रोज हमारी टीचर हमें दे देती है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स। हर दिन हमारी टाइम टेबल में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, कभी मैथ्स, कभी साइंस, कभी इंग्लिश, तो कभी सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स में अक्सर एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसकी क्लास हमें थोड़ी ज्यादा पसंद आती है। तो जल्दी जल्दी बता दो, किसको कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद है?
1: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हिंदी है।
2: और हाँ, मेरा तो सिर्फ विज्ञान है, यानी साइंस। वो जादू जैसा लगता है, जैसे कि शहद कभी खराब नहीं होता, चाहे वो हजारों साल पुराना भी क्यों ना हो।
0: हाँ शौर्य, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो अब जरा शहर से भी तो पूछ लिया जाए कि उनका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है।
3: हिंदी।
0: अच्छा, तो शहर का फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है। जरा ये तो बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी क्यों है?
3: क्योंकि उनकी माँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है।
0: ये तो मैंने पहली बार सुना है कि किसी का कोई फेवरेट सब्जेक्ट उनकी टीचर की वजह से भी होता है। हिंदी में तो बहुत सारी कविताएं भी होती हैं, तो क्या कोई कविता है?
3: में बार मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। घुमी हुई आजादी की कीमत सबने मन में पहचानी थी, दूर फ्रंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उसी संसद तावन में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
0: अरे वाह, चलो अब मुसाब से पूछती हूँ कि उसका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है।
4: गणित मेरा पसंदीदा विषय है, क्योंकि इसमें रटने के बजाय अभ्यास की जरूरत होती है।
0: अरे वाह मुसाब, अरे मैं देख रही हूँ इतनी देर से परिणीति मुझे चूटी मार रही है कि दीदी मुझे भी तो बोलने का मौका दे दो। चलो परिणीति, अब तुम बताओ।
5: मुझे हिंदी पसंद है और मैं आपके लिए कविता लेके आई हूँ,
0: तो जरा सुना भी दो।
5: एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार, उत्तर से पश्चिम को जाए धूमधाम जब घर को आए, मम्मी को एक बात सुनाए, देख लिया हम जग नजारा, अपना घर है सबसे प्यारा।
0: अरे वाह परिणीति, कितनी क्यूट सी पोयम थी ये। इसराज तुम बताओ।
6: मेरा सबसे प्रिय विषय है विज्ञान, साइंस। मुझे विज्ञान इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हमें केवल पढ़ना ही नहीं पड़ता, बल्कि देखना, सोचना, सवाल पूछना और एक्सपेरिमेंट करके खुद सीखना भी होता है। मुझे विज्ञान केवल किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं लगता, विज्ञान हमारे चारों ओर है, हमारे घर में, हमारे प्लेग्राउंड में, आसमान में, पेड़ पौधों में, पानी में और हमारे रोजमर्रा के जीवन में।
0: अरे वाह इसराज, अब अमाया से भी पूछ लिया जाए।
7: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस, क्योंकि इसमें मेरे अंक ज्यादा आते हैं और साथ ही साथ पढ़ने में बहुत इजी होता है।
0: मैंने एक बात तो नोटिस की है, यहाँ पर ज्यादातर बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट या तो हिंदी है या फिर साइंस है। चलो अब फिर से एक गाना सुन लिया जाए।
8: हाँ जरूर।

0: परिणीति प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मुझे बता रही थी कि दीदी पता है आज मैं एक गाना भी लेके आई हूँ, तो चलो अब परिणीति जी से गाना सुन लिया जाए।
1: हाँ दीदी।
0: तो चलो सुने इसका गाना।
1: हाँ, हाँ, हाँ।

0: पनी भूरी का टुम पूरी करते।
1: परिणीति का गाना सुन के तो मुझे भी एक गाना याद आ रहा है।
2: अच्छा जी, संस्कृति तो सुना भी दो।
1: ठीक है, सुना देती हूँ।

0: रंग शरबतों का तू मीठे गाठ का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे गाठ का पानी।
1: वाह संस्कृति, कितना सुंदर गाना गाया तुमने। दोस्तों अभी हमने बात की कि हर दिन कुछ नया सीखना कितना मजेदार होता है, और सच कहें तो सीखना सिर्फ किताबों से नहीं, कभी किसी की बातों से, कभी किसी के काम से, तो कभी किसी की पूरी जिंदगी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सोचिए अगर कोई इंसान सादगी से रहे, सच का साथ दे और मुश्किल में भी अपने रास्ते पर बना रहे तो उसके अंदर कितना खास गुण होंगे। और ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों आप जरा जाने कि गांधी जी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी ऐसी खूबियां थी जो उन्हें इतना खास बनाती हैं और जिनसे हम आज भी कुछ अच्छा सीख सकते हैं। चलिए शुरू हो जाइए।
2: मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है महात्मा गांधी जी की। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें प्यार से बापू भी कहते थे। वे भारत

0: की स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में से एक थे। जब मैं गांधी जी की तस्वीर देखता हूँ तो सबसे पहले मुझे उनके गोल चश्मे, सफेद धोती और शांत मुस्कान दिखाई देती है। गांधी जी बहुत ही सरल जीवन जीते थे। वे खादी के कपड़े पहनते थे और चरखा चलाते थे। वे मानते थे कि हमें अपने देश में बनी वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए और अपने काम खुद करने चाहिए।
1: हाँ इसराज, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो संस्कृति, आप बता दो।
2: महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। वह मानते थे कि बिना अहिंसा के भी बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने लोगों को हमेशा सच बोलने, मेहनत करने और अपने देश से प्रेम करने की सीख दी।
1: बहुत बढ़िया संस्कृति। चलो शौर्य, जरा आप भी कुछ बता दो।
3: तो मैं उनके बारे में तीन कहानियां सुनाना चाहता हूँ।
1: तीन? चलो आप सुना दो।
3: तो एक बार गांधी जी ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो जैसे ट्रेन चल पड़ी उनका एक जूता फिसल कर सीधा ट्रैक पर गिर गया। तो गांधी जी ने दरवाजे बंद होने से पहले ही दूसरा जूता उनके पहले वाले के ठीक बगल में ही फेंक दिया। उनके आसपास खड़े हुए लोग हैरान हो गए। बापू, आपने अपना दूसरा जूता क्यों फेंक दिया? गांधी जी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई गरीब रेलवे ट्रैक से मतलब की जा रहा होगा तो एक जूता उसके किसी काम का नहीं, दो जूते वो कम से कम पहन तो पाएगा। और हाँ, दूसरी, तो एक बार गांधी जी की एक छोटी सी पेंसिल आश्रम में घूम गई। वो इतनी छोटी थी उसको पकड़ना तक भी मुश्किल हो जा रहा था। कुछ लोगों ने उनको नई पेंसिल देना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और फिर अपनी पुरानी पेंसिल ढूंढ ली। और फिर गांधी जी ने बोला, ये ना मुझको मद्रास ने एक बच्चे ने बड़े ही प्यार से दी थी और मैं किसी के प्यार को अनदेखा नहीं कर सकता। तो ये कहानी बताती है गांधी जी के पास नेशन के लिए कितना प्यार है। और तीसरी, तो ना एक बार गांधी जी एक छोटे से पाठशाला में बच्चों से मिलने गए। वहाँ पर एक छोटा बच्चा था जो गांधी जी की सिंपलिसिटी देखकर उदास हो गया। गांधी जी उनके पास आए और बड़े ही प्यार से पूछा कि वह उदास क्यों है। बच्चे ने बोला, बापू आप सिर्फ धोती क्यों पहनते हैं, कुर्ता क्यों नहीं, आपको ठंड नहीं लगती? तो फिर बाद में मैं अपनी मम्मी से आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा, ये बच्चे ने कहा था। गांधी जी ने कहा, अरे मैं ही नहीं हूँ जिसके पास कुर्ता नहीं है, और हाँ मैं सिर्फ तभी ऊपर का हिस्सा पहनूंगा जब मेरे लाखों बहन भाइयों के पास भी कपड़ों की कमी नहीं होगी।
1: अरे वाह शौर्य, कितनी मोटिवेशनल कहानी थी। तो अब सेहत भी कुछ बोलना चाह रही हैं।
4: मैं आज गांधी जी के बारे में एक कविता सुनाना चाहूंगी। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर थर थर थर सुनकर उनका नाम रे। बंदे में था दम, बंदे मातरम, बंदे में था दम, बंदे मातरम।
0: अरे मुझे तो इस कविता पर एक गाना याद आ रहा है।
1: अच्छा, तो जरा सुना भी दो वो गाना।
0: ठीक है।

0: अब हम गांधी जी के बचपन का एक बहुत ही प्रिय प्रसंग सुनने जा रहे हैं। यह प्रसंग हमें बताता है कि ईमानदारी छोटे उम्र से ही हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती है। बात उस समय की है जब मोहनदास यानी गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे। एक बार स्कूल में अंग्रेजी अधिकारी द्वारा विद्यार्थी की वर्तनी की परीक्षा ली जा रही थी। परीक्षा के दौरान गांधी जी से एक शब्द की स्पेलिंग गलत हो गई। उनके शिक्षक ने उन्हें संकेत किया कि वे पास बैठे विद्यार्थी की कॉपी देखकर वह स्पेलिंग लिख ले, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। यानी उस समय भी उन्होंने यही सोच कि अंक कम मिल जाए लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर परीक्षा में कोई सवाल नहीं आता तो गलत तरीके से उत्तर लिखने या नकल करने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कम अंक उसे सुधारने का मौका देते हैं, लेकिन बेईमानी हमारे चरित्र को कमजोर कर सकती है।
1: अरे वाह अमाया, बहुत खूब। अरे हम इतनी देर से गांधी जी की बातें करे जा रहे हैं, पर किसी ने ये सोचा कि हम क्यों करे जा रहे हैं गांधी जी की इतनी सारी बातें?
2: क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है।
1: जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। इस दिन हम महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं। गांधी जी ने हमें सत्य, अहिंसा, सादगी और अपने सिद्धांतों पर डटे रहने की सीख दी थी।
3: हाँ आपने सही कहा, लेकिन अब मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या आपको पता है 2 अक्टूबर को एक और महापुरुष की जयंती हम मनाते हैं? हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनका नारा था जय जवान जय किसान। वह अपनी सादगी के लिए ही जाने जाते थे।
4: मुझे गांधी जयंती के बारे में बोलना है।
1: हाँ हाँ बोलो मुसाम।
4: गांधी जी सत्य और अहिंसा के पर चलते थे। उनका मानना था कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मबल और शांति से इसे जीता जा सकता है। वह दुनिया में फेमस होने के बावजूद एक आम इंसान के तरह बहुत साधारण जीवन जीते थे। उनका पहनावा और रहन सहन उनकी सादगी का प्रतीक था।
1: हाँ मुसाब, आपने बिल्कुल सही बात की। तो दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम में हमने कितनी सारी चीजें देखी, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में, हर दिन कुछ नया सीखने के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी जी और उनके गुणों के बारे में, जिनसे हमें आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, तो किसी को मैथ्स या फिर किसी को आर्ट पसंद है, और यही तो हमारी खूबसूरती है। हर किसी की अपनी पसंद और अपने सीखने की कहानी होती है, और अगर हम हर दिन बस एक नई चीज सीखें और साथ ही सच्चाई, सादगी और अच्छे व्यवहार जैसी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हर दिन थोड़ा और स्पेशल बन सकता है। तो इसी प्यारी सी लर्निंग और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ, तो चलो जाते जाते महात्मा गांधी जी का एक भजन भी सुन लिया जाए।
2: हाँ बिल्कुल,
1: जिसका नाम है रघुपति राघव राजा राम, जो कि गांधी जी का फेवरेट भजन था।
5: रघु

अभी हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोता सुन रहे थे उनका मनपसंद कार्यक्रम रेडियो किड्स। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार, संगीतमय कार्यक्रम स्वरांजलि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। साथियों, आज स्वरांजलि कार्यक्रम में चंद्रपाल और इनके साथी पिंकी भाटी, कविता, निशा रानी और राजकुमार जी श्री गणेश भजन और लोक गीत रागिनी की प्रस्तुति से आज के इस कार्यक्रम को मनमोहक बनाएंगे। इनके गीतों को संगीत से सजाएंगे हारमोनियम पर बीर सिंह, नगाड़े पर जगदीश जी, ढोलक पर बबलू जी, बेंजो पर मुकेश और ऑक्टोपैड पर रूपचंद जी। आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश की वंदना से।

0: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो आइए श्री गणेश के चरणों में समर्पित इस मधुर भजन का आनंद लें।
1: वो मेरे 10 दिन के

0: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो चलिए एक देशभक्ति रागिनी सुन लेते हैं।
1: न्यू बोल्यार

0: चलिए सुनते हैं एक और भक्तिमय उपदेश का, ये आनंद लेते हैं।
1: प्रेम साथियों, हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा माता पिता और गुरु संत जनों का सम्मान बताया गया है। कवि ने किस तरह से क्या कल्पना करी, आइए इस बात के लिए

0: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। यह है आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।
1: अरे हे मटकी आप चटक गई होएगी।

0: दोस्तों, आज स्वरांजलि कार्यक्रम में चंद्रपाल और आपके साथी पिंकी भाटी, कविता, निशा रानी और राजकुमार ने और आपके गीतों को संगीत से सजाया हारमोनियम पर बीर सिंह जी, नगाड़े पर थे जगदीश, ढोलक पर थे बबलू, बेंजो पर थे मुकेश और ऑक्टोपैड पर रूपचंद। प्रस्तुति सहयोग दिया दिनेश कुमार और विशाल ने। कार्यक्रम का संयोजन किया शिवनंदन लाल ने और इस कार्यक्रम को आप सबके लिए प्रस्तुत किया तुषार पराशर ने। आज के स्वरांजलि कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। अब अपने दोस्त कमल किशोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार। बस कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के तहत देश भर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के

0: सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। इस अवसर पर एक जनसभा में गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने अब तक 2 रजत और 1 कांस्य समेत 3 पदक जीत लिए हैं। स्क्वाश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक जीते। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। फ्री स्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में ताजिकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 4 में जगह बनाकर पदक तय कर लिया है। पदक तालिका में चीन 113 स्वर्ण समेत 190 पदक जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 15 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत के साथ 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 39 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हम आपको बता दें कि इस मैच में रोहित शर्मा भारत के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपनी 200वीं पारी खेलेंगे। विराट कोहली 59 रन बनाते ही सबसे तेज 15,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: Touching upon the topic of the ongoing census, Mr. Modi said the first phase of this exercise is nearly complete across all states and union territories. Data of over 32 crore families has already been recorded. Prime Minister Modi noted that millions of young people across the country have recently taken a significant resolve against substance abuse and drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan.
3: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
2: On sports, the Prime Minister said he had announced a talent hunt campaign for sports from the Red Fort this time. He said it is essential to reach out to villages and towns to discover sporting talent to ensure India continues to perform well. Raksha Mantri Rajnath Singh has said India does not seek to occupy any country's territory but will safeguard its own security and strategic autonomy when threatened. Mr. Singh was addressing a defense conclave organized by a media house in New Delhi today. Raksha Mantri emphasized that India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. The minister underlined that there can be no scope for dialogue with any country that promotes terrorism against India. He asserted that as long as a neighboring country continues to pursue a policy of supporting terrorism, India remains fully entitled to take all necessary measures against terrorism. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stone for a series of railway development projects worth more than 1,500 crore rupees in Sabarmati in Gujarat today. Mr. Shah, along with Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, also flagged off the country's first LNG-powered train from Sabarmati station. Addressing a public gathering, Mr. Shah said Indian Railways has undergone major transformation over the past 12 years under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He said annual diesel consumption by the railways has declined from 293 crore litres to 108 crore litres, while efforts are continuing to eliminate diesel use completely. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy rainfall over Uttarakhand and West Uttar Pradesh today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, East Uttar Pradesh and Himachal Pradesh for the day. At the Asian Games in Japan, India today clinched two silver medals in squash, Abhay Singh won silver in the men's singles after losing to Malaysia's Ain Yo Engi. In women's singles, Anahat Singh also bagged silver after going down against Malaysian Sivasangari Subramaniam. India's Harita Bhadra has won the bronze medal in the women's 200 meters at the Asian Games. Earlier, Ankush Panghal assured India of its first boxing medal at the Games after advancing to semi-final by defeating Tajikistan's Nekruz Salimov in the men's 80-kilogram quarter-final today. And in men's cricket, West Indies were 215 for 5 in 40.4 overs against hosts India in the first one-day international of the three-match series in Thiruvananthapuram when reports last came in. Earlier, India won the toss and opted to field first. And with that, we end this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी के सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: अश्वनी
1: जी निरंकर,
0: ये लोक रंजनी कार्यक्रम में हम अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं कुछ खूबसूरत से लोकगीत, और इन खूबसूरत गीतों में हमारी संस्कृति दिखाई देती है। हमारा चाहे मौसम की बात है, चाहे तीज त्योहारों की बात है, या फिर किसी खास मौके की बात है, वो इसमें शामिल होते हैं। और जो आपसी हमारे रिश्ते हैं उनकी जो नोक झोंक है, या फिर हम आम जिंदगी में जिन चीजों को देखते हैं उनका जिक्र इन लोकगीतों में होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जो सबसे पहले हम लोकगीत सुनवा रहे हैं अपने दोस्तों को, वो है पूजा शर्मा और अनुराधा शर्मा की आवाज में ये लोकगीत, तो सुनते हैं
1: जी।

0: वे बहुत सुंदर भजन था ये कृष्ण जी का, और इस समय तो श्राद्ध भी चल रहे हैं तो पूजा पाठ में आदमी सभी का मन रहता है, और पूरी जो साल है पूरे कुछ न कुछ ऐसा त्योहार आता है जिसमें हम पूजा में लीन होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी अभी गई है, आगे दिवाली आएगी, इस तरह पूरे साल हमारी संस्कृति में है कि हम ऊपर वाले का नमन करते हैं और भजन में अपनी रुचि भी दिखाते हैं।
1: बिल्कुल, और भी ननका भाई, जैसे हम देखते हैं कि और हमारी जो ताना बाना है, जो समाज है हमारा, वहीं से ही कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे जो रोज़मर्रा के जो हमारी नानी दादियाँ और जो हमारी बहनें गुनगुनाती हैं, वही कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं लोकगीतों के रूप में आगे चलकर ये विख्यात होते हैं, और इनमें इतना रस आता है, तो कहीं ना कहीं मेरा या आपका मन जरूर करता होगा कि कहीं ना कहीं उन गाँव की पगडंडी पर ज़रूर लौट जाएँ, जहाँ पर हंसी मजाक और
0: जी इन सभी जी, रस्मों में जी, जो हम शामिल होते हैं जी, उसमें सजने संवरने की भी अहम भूमिका है।
1: बिल्कुल,
0: और जब सजने संवरने की बात होती है तो फरमाइश भी होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्या होती है सुनते हैं
1: जी प्रियंका शर्मा की आवाज में।

0: क्या बात है, मेरी पतली कमर नाड़ा झुब्बेदार लाई, और हरियाणा के जो इलाके हैं ना अलग अलग है, वहाँ की क्या खासियत है उसका भी जिक्र आ गया पूरा। और अब हमारे देश में जो अलग अलग जगह पर कहीं मौसम बहुत सुहावना है, कहीं का खान पान बहुत अच्छा है, कहीं का पहनावा, बिल्कुल सब मिल करके एक हमारा सुंदर भारत बनता है। तो ये कह रही है सविता कि कश्मीर घुमा दो क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है।
1: तो क्यों ना पहले लोकगीत सुन लेते हैं पहले, और घुमा
0: सुनते
1: देते
0: हैं
1: हैं
0: सविता
1: आपको
0: शर्मा।
1: भी और खुद भी घूमते हैं सविता शर्मा के साथ साथ।

और अब सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी से मैं वसीम अहमद और मेरी सहयोगी।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में।
0: विश्व और भारत में चल रहे तमाम खेलों के नतीजे, खिलाड़ियों के प्रदर्शन की खबरों के साथ खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी सुनने वाले खेल प्रेमियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जापान के आयोची नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के कल और आज शाम खेले गए मुकाबलों में भारतीय प्रदर्शन की और नतीजों की भी, और साथ ही बात होगी भारत बनाम वेस्ट इंडीज पुरुष टीमों के बीच खेले जाने वाले 3 एक दिवसीय श्रृंखला के आज चल रहे पहले मैच की, और चेस की दुनिया में भी हम आपको लेकर चलेंगे। बात सबसे पहले करते हैं एशियन गेम्स 2026 की, जो कि आयोची नगोया में चल रहे हैं,
1: और शुरुआत करते हैं आज के दो बड़े प्रदर्शन से, स्क्वैश और आज पुरुष और महिला वर्ग के फाइनल यानी गोल्ड मेडल मैचेस खेले गए। महिला वर्ग में अनहत सिंह और पुरुष वर्ग में अभय सिंह दोनों ही खिलाड़ियों ने मैच में रजत पदक अपने नाम किया। दोनों ही खिलाड़ियों का सामना मलेशिया के खिलाड़ियों से था। महिला फाइनल में मलेशिया की विश्व नंबर 5 खिलाड़ी ने 18 वर्षीय अनहत सिंह को 11-4, 11-4, 11-7 से हराया। वहीं दूसरी तरफ विश्व में 17 नंबर के खिलाड़ी मलेशिया के विश्व में 26वें

0: नंबर के खिलाड़ी भारत के अभय सिंह को 11-9, 11-5, 11-5 से हराया। इन दोनों नतीजों का मतलब मलेशिया को दोनों स्वर्ण और भारत को दोनों रजत पदक मिले। अनंत सिंह के लिए एक ऐतिहासिक पल था जब वह पहली भारतीय महिला बनी जो एशियन गेम्स के स्क्वैश में फाइनल में पहुंची। अनंत और अभय ने जहां रजत पदक जीता, वहीं लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 ओलंपिक्स खेलों में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से चूक गए। और अब चलते हैं एथलेटिक्स की ओर।
1: एथलेटिक्स में महिला 400 मीटर के फाइनल में प्राची चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर भारत की मेडल तालिका में बढ़ोतरी कर दी। प्राची ने यह मेडल 53.21 सेकेंड्स की टाइमिंग के साथ हासिल किया। वहीं बहरीन की सलवा नासिर ने गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए 49.20 सेकेंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी मुकाबले में दूसरी भारतीय महिला एथलीट किरण पहल ने 53.41 सेकेंड्स के साथ पांचवां स्थान हासिल किया।
0: और एक और अच्छी खबर एथलेटिक्स से, भारतीय एथलीट हनीता बराना ने 200 मीटर की दौड़ में 23.20 सेकेंड्स की टाइमिंग्स के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया और भारत के पदकों की संख्या को आगे बढ़ाया। पुरुषों के 200 मीटर दौड़ में भारत के अनिमेश कुजूर 20.80 सेकेंड्स की टाइमिंग्स के साथ पाँचवें स्थान पर रहे। और महिला लॉन्ग जंप से भी एक अच्छी खबर आ रही है। एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की लंबी कूद के साथ रजत पदक विजेता बनी और वो स्वर्ण पदक की दौड़ से मात्र 2 सेंटीमीटर से चूक गई।
1: अब बात करेंगे बैडमिंटन में। बैडमिंटन में भारत को आगे बढ़ाने का जिम्मा 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और युवा उन्नति हुडा ने बखूबी निभाया। सिंधु ने दूसरे दौर में ताइपेई की पिंचियान चियू को 21-19, 21-14 के सीधे सेटों में हराया। तीसरे दौर में उनका सामना हुआ जापान की तोमोका मियाजाकी से। सिंधु को क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का करने के लिए उन्होंने उनको 21-9, 21-13 से एक तरफा जीत हासिल करी। वहीं क्वार्टर फाइनल में चीन की चेन यूफेई से वे हार गईं। दूसरी तरफ युवा खिलाड़ी उन्नति हुडा ने अपने दूसरे दौर में मलेशिया की वॉन्ग लिंगचिंग को 3 गेम तक चले 21-14, 20-22, 19-21 से 2-1 के मैच से अपने नाम किया। और क्वार्टर फाइनल में जापान की विश्व नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से कड़े मुकाबले में 1-2 के सेट स्कोर से हार के मेडल रेस से बाहर हो गईं। उन्होंने इससे पहले तीसरे दौर में थाईलैंड की पुत्री कुसुमा वर्दानी से 21-19, 21-13 से भी जीत दर्ज करी थी। पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन दूसरे दौर में सिंगापुर के यू क्योन लो से दूसरे दौर में 1-2 के गेम स्कोर से हार गए। वहीं आयुष शेट्टी ने दूसरे दौर में कजाकिस्तान के मकसूद ताजबुलायेव को 21-7, 21-7 से हराया, लेकिन तीसरे दौर में ताइपेई के तियन चियन चौ से 16-21, 21-19, 17-21 से हार कर मेडल रेस से बाहर हो गए।

0: और बैडमिंटन की बात को ही आगे बढ़ाते हैं, वही महिला युगल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने जापानी वर्ल्ड रैंक 3 की युकी और मायू की जोड़ी से 24-22, 24-21-18 से हराया था त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने। और लेकिन क्वार्टर फाइनल में अपने से ऊंची रैंक वाली जो एक और जोड़ी थी उसको सीधे सेटों में उन्हें 18-21, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ मिश्रित युगल में भारतीय जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने विश्व रैंक एक मिश्रित जोड़ी चाइना की जोड़ी को 1-3 गेम तक चलते कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18 और 18-21 से हार का सामना करना पड़ा।
1: अब हम भी निशाना लेते हैं तीरंदाजी पर। जी हाँ, आर्चरी में भारत के लिए एक बहुत रोमांच से भरा आकर्षक दिन रहा, जहां टीम स्पर्धा में हर टीम हर इवेंट में आगे बढ़ गई। रिकर्व इवेंट से शुरू करते हैं। रिकर्व टीम के क्वार्टर फाइनल में धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे की टीम ने एक आकर्षक प्रदर्शन करते हुए चाइना को 5-2 से हरा कर सेमीफाइनल

0: ने अपनी जगह पक्की कर ली। महिला रिकर्व टीम की भारतीय तीरंदाज अंकिता भगत, कुमकुम अनिल मोहोद और कीर्ति शर्मा ज्यादा आक्रामक और अचूक निशाने लगाती नजर आईं। उन्होंने इस क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपेई को 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रिकर्व टीम स्पर्धा में भारतीय मिक्स टीम भी मेडल की रेस में आगे बढ़ी। धीरज बोम्मदेवरा और कुमकुम अनिल मोहोद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात को 6-0 से हराया और उसके बाद क्वार्टर फाइनल में वियतनाम को भी 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सो रिकर्व इवेंट में भारत की तीनों टीमें अब सेमीफाइनल में हैं। सेमीफाइनल में पुरुष टीम का मुकाबला ईरान से, महिला टीम का मुकाबला चाइना से और मिक्स टीम का सामना जापान से होगा। ये तीनों सेमीफाइनल मुकाबले 2 अक्टूबर को खेले जाएंगे।
1: श्रोताओं, आर्चरी में अच्छा प्रदर्शन जारी है। कंपाउंड टीम इवेंट में भी भारतीय पुरुष, महिला और मिक्स्ड टीम भी मेडल की रेस में बनी हुई है। आज पुरुष कंपाउंड क्वार्टर फाइनल में साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशाल दलाल की भारतीय टीम में भूटान को 235-232 के नज़दीकी मुकाबले में हार कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला कंपाउंड क्वार्टर फाइनल में चिकिता ज्योति सुरेखा और प्रीतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को 233-230 के स्कोर से हराकर सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित की। और दूसरी तरफ एक और बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। मिक्स्ड कंपाउंड स्पर्धा में चिकिता और साहिल जाधव ने पहले प्री क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया को 160-146 के स्कोर से हराया और उसके बाद कजाकिस्तान को 159-154 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कंपाउंड इवेंट इस सेमीफाइनल में पुरुष और महिला दोनों टीमों का सामना साउथ कोरिया से होगा और मिक्स्ड टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। ये तीनों मुकाबले 30 सितंबर को होंगे।
0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया से आर्चरी में भारत के लिए बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 6 इंडियन टीम 2 इवेंट के सेमीफाइनल्स पहुंच चुकी हैं और भारत के पास कई मौके हैं आने वाले दिनों में मेडल जीतने के लिए। बात अब करेंगे कुराश की। भारत के लिए आज कुराश में अच्छा दिन नहीं रहा। पुरुषों के 90 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में यश कुमार चौहान अपना राउंड ऑफ 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल मैच ताजिकिस्तान के शकर मामाद मीरा मामादोव से 0-10 के स्कोर से हार गए। वहीं विशाल इसी भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में तो पहुंचे लेकिन थाईलैंड के ये ऑन से 0-5 के स्कोर से हार गए। महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 32 में संगीता को फिलीपींस की सी क्वेलिनो से 0-10 के स्कोर से हार मिली। वहीं भारती को राउंड ऑफ 16 में ईरान की तहरे अजर पाइवान से 0-3 के स्कोर से हार मिली। तो आज कुराश में भारत के 4 खिलाड़ियों का सफर समाप्त हुआ लेकिन कुराश में भारत का सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। विपिन कुमार पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में 29 सितंबर को एक्शन में होंगे और महिला में पिंकी बलहारा 78 किलो भार वर्ग में 28 सितंबर को एक्शन में होंगी।
1: और फेंसिंग की बात कर लेते हैं। फेंसिंग में भारतीय महिला सेबर टीम के लिए आज निराशा भरा दिन रहा जहां उनका अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। भारतीय महिला फेंसिंग टीम की खिलाड़ी भवानी देवी, श्रेया गुप्ता, जेजा रानी जेएस और श्रुति जोशी उज्बेकिस्तान के खिलाफ 35-45 के स्कोर से हार गई। महिलाओं के ट्रैप इवेंट में शूटिंग की बात करें तो महिलाओं के ट्रैप इवेंट में नीरू डांडा अभी एकल तालिका में प्रथम स्थान पर बनी हुई हैं। उन्होंने पहले दिन 50 में से 48 निशानों पर वार किया। दूसरी तरफ अरिमा अहलावत 16वें स्थान पर हैं। महिला ट्रैप इवेंट में अंक तालिका में दूसरे दिन दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं।
0: पुरुष ट्रैप इवेंट में किनान चेन्नई को परफेक्ट स्टार्ट मिला। उन्होंने अपने ओपनिंग राउंड में सभी 25 निशाने लगाए और दूसरे राउंड में 22 निशाने लगाए। वो व्यक्तिगत तालिका में 11वें स्थान पर हैं और शपथ भरद्वाज 22वें स्थान पर। भारतीय पुरुष टीम ने पहला दिन 7वें स्थान पर खत्म किया। प्रिसिशन इवेंट की बात करें तो भारतीय महिलाओं ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में क्वालिफिकेशन पूरा कर लिया। भारतीय महिला दल में ईशा सिंह 290 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर हैं, राही सरनोबत 15वें और मनु भाकर 16वें स्थान पर हैं। दोनों के ही 287 अंक हैं। भारतीय शूटिंग के लिए अभी बहुत एक्शन आना बाकी है। इक्वेस्ट्रियन की बात करेंगे अब हम। इक्वेस्ट्रियन में भारत की दावेदारी आज समाप्त हो गई। 2022 में भारत ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता था, लेकिन 2026 में इस स्पर्धा में मेडल से वंचित रह गए।
1: बॉक्सिंग की ओर चलते हैं और बॉक्सिंग में पुरुष वर्ग के 80 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के अंकुश पंघाल ने तजाकिस्तान के नेक्रू को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की और वुमेन्स 63 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता को प्रवीण हुड्डा में 5-0 से नवभाकर को सेमीफाइनल में हराया, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर जगह पक्की करी। और वहीं मेंस 60 किलोग्राम भार वर्ग में सचिन सिवाच जापान के खिलाड़ी से 1-4 से हार गए। वहीं 90 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में नरेंद्र बरवाल ने रेफरी स्टॉप कॉन्टेक्स्ट यानी कि आरएससी के जरिए मैच जीत लिया थाईलैंड के खिलाड़ी से।
0: आज बॉक्सिंग के अन्य महत्वपूर्ण मैच में महिला 75 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में भारत की लवलीना बोरोगेन के सामने होंगी दक्षिण कोरिया की सुवेन सियोंग। 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की प्रिया के सामने होंगी तजाकिस्तान की विजगोना समदोवा। पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग क्वार्टर फाइनल में भारत के कपिल पोखरिया के सामने चाइना के श्वेजन की चुनौती होगी। हॉकी की बात करें, हॉकी में भारतीय महिला टीम अपने मजबूत खेल से अंतिम ग्रुप मैच में सिंगापुर से हाफ टाइम तक 5-0 के स्कोर से आगे थी। मैच का पहला क्वार्टर दोनों टीमों के बीच गोल रहित रहा। यह आश्चर्यजनक बात थी जहां की भारतीय टीम भी एक भी गोल पहले क्वार्टर में न कर सकी थी।
1: और अभी तक शानदार मुकाबले चल रहे हैं भारत की ओर से और मेडल टैली लगातार बढ़ रही है। इसी बीच हमने बात करी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विजय लोकपल्ली जी से, आइए जानते हैं वो क्या बताते हैं।
2: जी हाँ, देखिए जो जो फॉलो करते हैं क्लोजली वो थोड़ा सा उनको निराशा ये होगी कि कुछ एक इवेंट्स ऐसे थे जिसमें हमको मिलने चाहिए थे, बेटर रिजल्ट होने चाहिए थे, लेकिन ये जो 4 गोल्ड है इसमें से कबड्डी के तो एक्सपेक्टेड थे
1: जी।
2: जो है 2 गोल्ड मेडल और महिला जो क्रिकेट टीम है वो भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। तो ये अगर देखेंगे तो जो उनके कोचेस हैं, जो फैंस हैं, वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी तक तो जैसे आपको याद होगा पिछले एशियन गेम्स में 100 से ऊपर लाए थे मेडल्स, इस बार भी उम्मीद यही है। और कितना खरे उतरते हैं अपने खिलाड़ी अभी पता बोलना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूंगा कुछ एक खेल में तो हमने बहुत अच्छा किया है। जैसे अगर आप देखें स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत दोनों को उम्मीद थी कि स्वर्ण मिलेगा लेकिन नहीं मिला, फिर भी सिल्वर मिलना बहुत अच्छी उपलब्धि है।
1: बिल्कुल, और बैडमिंटन में तो कुछ खास नहीं कर पाए हमारे शटलर्स।
2: जी हाँ, बैडमिंटन बहुत निराशाजनक क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें बैडमिंटन में थी क्योंकि फॉर्म में थे, अगर आप देखें रैंकिंग के हिसाब से भी उम्मीदें थी, पर होता यह है कि उस दिन जैसे आपका फॉर्म अगर उस दिन आप खराब खेले हैं ऑब्वियसली, जैसे सिंधु ने कहा कि उनको रिकवरी नहीं मिल रही थी शेड्यूलिंग, और उन्होंने ठीक कहा है कि मैचेस की शेड्यूलिंग में उनको रिकवरी का टाइम ही नहीं मिल रहा है खिलाड़ी को, रात को घर लेट पहुंचते हैं रूम में, अगले दिन सुबह फिर निकल पड़े और उस दिन 2 मैचेस थे उनके। सो मेरी पूरी सहानुभूति है सिंधु के साथ, और पर हाँ ओवरऑल बैडमिंटन में तो निराशाजनक रहा
1: जी। अच्छे की उम्मीद थी और कई जगह जहां उम्मीद नहीं थी वहां भी पदक आया है। पोल वॉल्ट में सर पहली बार पदक आया है हमारा एशियन गेम्स में।
2: हाँ बिल्कुल, ये तो इसमें आप देखिए ना, ये दिखाता है दर्शाता है कि खिलाड़ी मेहनत करते हैं और सरकार का सपोर्ट भी है। अपनी तरफ से तो सरकार ने उनको बहुत सपोर्ट किया, जो जो उनको चाहिए था मिला, जहां जहां जाके कम्पीट कर रहा था वहां पे उनको भेजा गया। सो कुछ एक प्रोग्रेस अच्छी है मैं कहूंगा, जैसे आपने बोला पोल वॉल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत टाइम के बाद मैरिसन में एक मेडल आया है भारत को, वो एक मैं कहूंगा भी एक अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन एथलेटिक्स में जैसे कह रहे थे तूर तूर को बिल्कुल गोल्ड मेडल पक्का था, पर नहीं जीत पाए, पर सिल्वर लाए हैं। तो सिल्वर भी जो है कोई खराब रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ एज अ फैन आप तो चाहेंगे कि आपका खिलाड़ी गोल्ड ही लेके आए।
1: बिल्कुल, और क्रिकेट भी इस बार काफ़ी चर्चा में है, और कैप्टन है हमारे श्रेयस अय्यर। और पिछला गेम अगर देखें जापान के साथ था, तो जापान ने उनको अच्छी खासी चुनौती दी, और अगला अब उनका जो मैच है वो अफगानिस्तान के साथ है।
2: ऐसी बात नहीं है, अफगानिस्तान अच्छी टीम है, उस दिन भारत को अच्छा खेलना पड़ेगा। और जहां तक आपने कही बात जापान की, वो तो पहला मैच खेल रहे थे अपना, और ये ध्यान रखिएगा कि वो मैच केवल 5 ओवर्स का था। अगर पूरा मैच होता तो क्या रिजल्ट हो सकता था नहीं मालूम, लेकिन 5 ओवर की वजह से जापान को थोड़ा ये फायदा हो गया कि वो अपना खुल के खेले। उनको तो पहला मैच था, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। और भारतीय टीम जो गई है पुरुषों की, इसमें तो उस गोल से कम उनको वापस आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट टीम है और क्रिकेट बहुत ऑर्गेनाइज्ड है भारत का। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर वो सिल्वर लाते हैं तो कोई अच्छा रिजल्ट होगा। भारतीय क्रिकेट टीम को तो गोल्ड ही लाना पड़ेगा।
1: सर, हॉकी से क्या उम्मीदें हैं आपकी इस
2: हॉकी से
1: बार?
2: बहुत उम्मीदें हैं। आप देखिए महिला तो खास करके जो पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो उन्होंने दिखाया अपना हुनर और सबका दिल जीता उन्होंने, उसमें से उस अगर आपको याद हो उस टीम में तो कुछ 9 लड़कियां तो पहली बार वर्ल्ड कप खेलने गई थी। और यहाँ पे भी भारत का मैं कहूंगा मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार उस गोल्ड ही जीतेंगी, क्योंकि तो फॉर्म अच्छा है, खिलाड़ी अच्छे हैं, फिटनेस है, तैयारी बहुत बेहतरीन रही है। और जहां तक पुरुषों की हॉकी टीम का सवाल है, पाकिस्तान से हो सकता है उनको एक थोड़ा बहुत चैलेंज हो, लेकिन पाकिस्तान को पिछले कितने 10-12 मैचों में तो उन्होंने हराया ये आराम से। तो उसमें भी मैं समझता हूँ गोल्ड से नीचे नहीं आना चाहिए वापस।
1: जी, हॉकी से भी गोल्ड की उम्मीद है, क्रिकेट से भी गोल्ड की उम्मीद है। और अगर पिछले एशियन गेम्स की बात करें, तो हांगझोउ में 100 के पार का आंकड़ा था भारत का मेडल्स का, इस बार क्या उम्मीदें हैं सर?
2: जी हाँ, इस बार 100, देखिए अभी इस वक्त तो कहना मुझे नहीं लगता 100 मेडल आ पाएंगे, क्योंकि कठिन है। और क्योंकि आप देखें एथलेटिक्स में जितनी उम्मीद थी उससे कम आए हैं मेडल, शूटिंग में इस बार कम आए हैं, बैडमिंटन में बहुत कम, बैडमिंटन ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया है। ये सब मेडल्स अगर आप पिछले एशियन गेम्स में देखेंगे, इन सब में हमने अच्छा किया था, इसीलिए हम 100 के पार चले गए थे और उम्मीद भी थी। और इस बार भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, फेडरेशंस को, जो खिलाड़ी खुद हैं, कोचेस हैं, उन्होंने कहा था कि इस बार भी 100 तक पहुंच सकते हैं। पर मुझे लगता है इस वक्त तो ये समझ सोचना कि 100 मेडल आ जाएंगे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, बट उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कोई कुछ एक ऐसे इवेंट आए जिसमें आपको उम्मीद ना हो और भारतीय खिलाड़ी अच्छा कर पाए।
1: बिल्कुल, उम्मीदें तो बहुत हैं, और देखने वाली बात यह है कि कैसा प्रदर्शन रहता है हमारे खिलाड़ियों का। बात करते हैं कल खेले जाने वाले मुकाबलों की। एशियन गेम्स 2026 में 28 सितंबर का दिन भारतीय खेल प्रेमियों के लिए खास रहने वाला है। एक ओर क्रिकेट में पुरुष टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी, तो दूसरी ओर हॉकी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दमखम दिखाएंगे। सबसे बड़ा आकर्षण होगा पुरुष क्रिकेट का क्वार्टर फाइनल, जहां भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। भारत को टूर्नामेंट में सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला, जबकि अफगानिस्तान ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहकर अंतिम 8 में पहुंचा है। मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा, और भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर क्या कहते हैं अपनी टीम के बारे में और जापान की परिस्थितियों के बारे में, और साथ ही साथ जब वो वहां पहुंचे तो बारिश का नजारा उन्हें देखने को मिला, और आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या बताते हैं।
3: हम टोक्यो में थे थोड़े दिन, जापान के साथ एक मैच खेला, उसके बाद इतना प्रैक्टिस सेशन नहीं मिला, तो ऑब्वियसली वी एक्सप्लोर लिटिल बिट। यस, बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे, और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। इम्पोर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। अफगानिस्तान ही नहीं, कोई भी टीम आप देखोगे एशियन गेम्स में, जैसे ये जापान ने बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन दिया था हमें, क्योंकि यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो टीम अच्छा खेलेगा डेफिनेटली हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे मैच के लिए।

नहीं सी, जैसे कि आप इंडिया को जब रिप्रेजेंट करते हो तो एक्सपेक्टेशंस रहता ही है कि आपको टॉप में फिनिश करना है, एंड अभी तो एशियन गेम्स से आगे जाके बहुत सारे मैचेस है, तो अच्छा फिटनेस भी मेंटेन करना पड़ेगा और माइंडसेट भी. इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज ओवर हियर राइट नाउ देर आर टीम्स हु आर फ्रॉम एशिया एंड एट द सेम टाइम वी आर इन डिफरेंट वेन्यूज एंड ऑल्सो ऑन द टर्फ इवन

0: We are trying to maximize the best we could. It's an honor to be representing India in Asian Games and captaining it at the same time. My only thought is that as many gold medals we get, that would be great for the country, and also it's a great motivation for them to step up from here to the Olympics. And we've seen some amazing records made this season, so looking forward to see some more amazing events happening around, and if we get an opportunity to go and see one of them, would love to.
1: जब बात यह है कि भारत और अफगानिस्तान में T20 अंतर्राष्ट्रीय भिड़ंतों में भारत का रिकॉर्ड बेहद मजबूत है, और अब रुख करते हैं हॉकी का। पुरुष हॉकी में मौजूदा चैंपियन भारत अपने पूल ए अभियान के अगले मुकाबले में बांग्लादेश का सामना करेगा। मुकाबला शानदार रहने वाला है। भारत पहले ही पूल में लगातार जीतों के साथ मजबूत स्थिति में बन चुका है, और बांग्लादेश के खिलाफ भी उसका लक्ष्य लय बरकरार रखना होगा। वहीं वॉलीबॉल की बात करें तो पुरुष वॉलीबॉल में भारत का मुकाबला हांगकांग और चीन से होगा, और पूल चरण के इस मुकाबले में भारतीय टीम का लक्ष्य अपनी स्थिति मजबूत करना होगा। एथलेटिक्स की बात करें तो पुरुषों की 1500 मीटर फाइनल में कुलदीप सिंह पर नजर होगी। इसके अलावा महिला 800 मीटर में दसवीं शुरुआती राउंड में उतरेंगी, और महिला 5000 मीटर फाइनल में पावल चौधरी भारत की चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा और कई मुकाबले हैं, और मुक्केबाजी की ओर चले तो पुरुषों के मुकाबले में 70 किलोग्राम 55 किलोग्राम और 90 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले होंगे। वहीं महिलाओं में 51 किलोग्राम 60 किलोग्राम और 75 किलोग्राम भार वर्ग

0: एशियन गेम्स 2026 से रुख करते हैं अब क्रिकेट की ओर। भारतीय सरजमीन पर जहां क्रिकेट के लिए 2027 में होने वाले एक दिवसीय विश्व कप की तैयारी पूरे दमखम से शुरू हो चुकी है। वेस्टइंडीज की टीम ने भारत के दौरे पर है जहां वो तीन एक दिवसीय और पांच टी20 श्रृंखला खेलेगी। भारत का पहला एक दिवसीय मुकाबला शुरू हो चुका है। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। वेस्टइंडीज की तरफ से जॉन कैंपबेल और जस्टिन ग्रीव ने पारी को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी की। जॉन कैंपबेल को कुलदीप यादव ने प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कराया। कैंपबेल ने 60 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों के साथ 62 रन बनाए। फिर जल्द ही प्रसिद्ध कृष्णा ने टीसी कार्टी कोटेरा के निजी स्कोर पर आउट किया और कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को 12 रनों के स्कोर पर आउट करते हुए अपना दूसरा विकेट लिया। जोएल एंड्रयू शून्य के स्कोर पर कुलदीप यादव के चौथे शिकार बने।
1: Thank you.

भारतीय ग्रैंड मास्टर के साथ विश्व चैंपियन बी मुकेश अर्जुन रेड्डी।

0: श्रोताओं, आज के दिन की एशियन गेम्स 2026 की ताज़ा मेडल तालिका के बारे में बात कर लेते हैं। भारत 4 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 15 कांस्य पदक के कुल 33 मेडल के योग से 12वें स्थान पर बना हुआ है, जबकि शीर्ष स्थान पर 116 स्वर्ण पदक के साथ चाइना मजबूती से कायम है। श्रोताओं, इसी के साथ खेल खिलाड़ी के
1: एक और खास खबर साथ में जोड़ देते हैं वसीम, क्योंकि इंडियन सुपर लीग 2026 और 27 का सीजन 10 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, जो 10 अक्टूबर से शुरू होगा और मई 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रतियोगिता अपने नियमित होम एंड अवे प्रारूप में वापस आ जाएगी। आईएसएल 2026-27 सीजन के प्लेऑफ सहित कुल 163 मैच खेले जाएंगे, और 10 अक्टूबर से 17 जनवरी तक 78 मैच खेले जाएंगे। भारत की शीर्ष स्तरीय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता इंडियन सुपर लीग के 13वें संस्करण में कुल 13 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को
0: और मुझे वसीम अहमद को
1: दीजिए
0: इजाजत। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल ऐप से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था, इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने अब तक 3 रजत और 2 कांस्य पदक समेत 5 पदक जीत लिए हैं। महिला लॉन्ग जंप में NC सोजन ने 6.53 मीटर लंबी छलांग लगाकर रजत पदक जीता। स्क्वाश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स में और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। डेकाथॉनल में तेजस्विनी शंकर ने और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किए। फ्री स्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में तजाकिस्तान के नेक्रोज सलीमो को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 4 में जगह बनाकर पदक तय कर लिया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 15 रजत और 16 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। वहीं तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य रखा है। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 295 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that the surgical strike carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today, Mr. Modi said, India will mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. The Prime Minister said the world was astonished to see the bravery of Indian soldiers who crossed the line of control to take action against terrorism.
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्यवाही की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: Touching upon the topic of the ongoing census, Mr. Modi said the first phase is nearing completion across all states and union territories. The Prime Minister stressed that the census is a national responsibility and said the facility for self-enumeration makes the process easier. Ahead of the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi on 2nd of October, Mr. Modi spoke about cleanliness and public participation. He also highlighted the protecting of the environment to strengthen the entire ecosystem. The Prime Minister said millions of young people have recently taken a pledge to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He urged people to support those trying to overcome addiction and work towards a drug-free youth. Mr. Modi said the nation celebrated Ganeshotsav with great devotion and enthusiasm recently while highlighting the festival's growing popularity beyond India. Concluding his address, Prime Minister Modi urged listeners to continue sharing inspiring stories from across the country. Raksha Mantri Rajnath Singh today said India does not seek to occupy the territory of any country but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy when threatened. Mr. Singh was addressing a defense conclave in New Delhi. He said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. The minister said as long as a neighboring

0: country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stone for a series of railway development projects worth more than 1,500 crore rupees in Sabarmati in Gujarat today. Mr. Shah, along with Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, also flagged off the country's first LNG-powered train from Sabarmati station. Addressing a public gathering, Mr. Shah said, the annual diesel consumption by the railways has declined from 293 crore litres to 108 crore litres, while efforts are continuing to eliminate diesel use completely. Science and Technology Minister Jitendra Singh has said nanomedicine will drive the next generation of precision medicine and personalized healthcare. The minister was speaking at the inaugural function of the World Congress of Nanomedicine 2026 in New Delhi today. Dr. Singh said the Department of Biotechnology is supporting 210 research and development projects in nanomedicine with financial support of 174 crore rupees. The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached movable and immovable properties worth around 442 crore rupees in connection with the case related to Rummy, Culture App and others. The ED informed that the action was taken under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, PMLA. At the Asian Games in Japan, India's Ansi Sojan Edapili has won the silver medal in the women's long jump at Aichi Nagoya in Japan today. In squash, the country clinched two silver medals, with Abhay Singh winning silver in the men's singles and Anahat Singh also bagging a silver medal in the women's singles. India's Harita Bhadra has won the bronze medal in the women's 200 meters event. Tejaswin Shankar also bagged a bronze medal in the decathlon. Currently, India is at the 12th position in the medals tally with a total of 35 medals, including 4 gold, 15 silver and 16 bronze medals. And in men's cricket, West Indies have set a target of 296 for hosts India in the first one-day international of the three-match series in Thiruvananthapuram this evening. Earlier, put into bat, West Indies posted 295 for the loss of 7 wickets in the stipulated 50 overs. India had opted to field after winning the toss. Both Rohit Sharma and Virat Kohli returned to India's ODI lineup after a two-month break from this format. The India Meteorological Department has issued a red color warning for very heavy rainfall over Uttarakhand and West Uttar Pradesh. The weather agency has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, East Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले देश के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 72वें संस्करण का आयोजन गुजरात के एकता नगर पूर्व में केवड़िया में किया गया। सन 1954 में शुरू किए गए ये पुरस्कार हर साल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2024 में भारतीय सिनेमा के उत्कृष्ट कार्यों उपलब्धियों का सम्मान है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 22 सितंबर 2026 को गुजरात के एकता नगर पूर्व में केवड़िया में विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
2: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मेलन में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभागीय सचिव श्री चंचल कुमार जी, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजन, सभी को मेरी नमस्कार। मुझे पुरस्कार विजेताओं से बहुत बहुत मैं उनको बधाई देती हूँ। विशेष प्रतिभा और कठिन परिश्रम के बल पर आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है। आप सभी पुरस्कार विजेताओं से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि अपनी टीम के उन सभी सदस्यों तक भी मेरी सराहना अवश्य पहुँचाएं, जिनके योगदान से आपकी पुरस्कृत फिल्म का निर्माण संभव हुआ। मैं अनंतनाग को भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। देवी और स्वजन, यहाँ एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को तथा उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म को पुरस्कृत करना तथा बाल कलाकारों को पुरस्कार देना देश के भविष्य में कलात्मक निवेश है। इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल कलाकारों आतिश शेट्टी, अरुण देव पथुला, रिद्धान बनर्जी, तपोमय देव एवं गीताश्री चक्रवर्ती को मैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। आज पुरस्कृत सभी फिल्में उल्लेखनीय है। मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
1: इस अवसर पर माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,
3: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकत्र हुए। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप यहां पर पधारे और इस कार्यक्रम को गौरवमयी बनाया। जूरी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत की। ऑल ऑफ यू वर्क वेरी हार्ड, सॉ सो मेनी मूवीज, हैड वेरी डिटेल्ड डिस्कशंस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन। एंड स्पेशल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। Getting a National Film Award is such a great honor. So big round of applause for all the winners. हर फिल्म के पीछे एक पूरी टीम की मेहनत होती है। आज का सम्मान न केवल जो विजेता यहाँ पर मंच पे आ रहे हैं बल्कि उस पूरी टीम का है जो पर्दे के पीछे अपनी मेहनत से और अपनी डिसिप्लिन से फिल्म को फिल्म के देखने जैसा बनाते हैं।
1: अपने वक्तव्य में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा,
4: आप फिल्म जगत के लोग हैं। आप अपनी विधा के द्वारा जिस सरलता से, जिस सहजता से समाज की हर वर्ग की चुनौतियों को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज फिल्म जगत ने भारत की सभी भाषाओं को समृद्ध करने का काम किया है, भारत की राष्ट्रभाषा से देश को जोड़ने का काम किया है, लोगों को एक दूसरे से पहचान दिलाने का काम किया है। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटा सा निवेदन भी मैं जरूर करूँगा। भाई और बहनों, हम आज बहुत तनाव में दुनिया गुजर रही है, बहुत डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, लेकिन आप उनको भी बाहर निकालने का काम करते हैं। आपने और हमने फिल्मों के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग की ओर लोगों को प्रेरित करने का काम करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी तरीके आ सके वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना चाहिए। ऐसा खानपान जिससे लोग स्वस्थ और निरोग होकर के जी सके। हमारी फिल्मों के माध्यम से लोगों में एकता, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा और हम एक दूसरे के काम आ सकें और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ एक एक मेरे देश का व्यक्ति आगे बढ़े। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आज जो युवा पीढ़ी के लोग मंच पर आए, भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने जिनको आज बड़े गर्व के साथ सम्मानित किया है, इस दिशा में यदि हम आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित कर पाए, निर्व्यसनी कर पाए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से सोचने का पैदा कर पाए, ये फिल्म जगत के माध्यम से, क्योंकि वो लोगों के दिलों में उतरती है।
1: गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा,
5: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर हमारे लिए गर्व का अवसर है। आज एकता नगर में देश के फिल्म जगत का यह राष्ट्रीय सम्मान एक और संदेशा भी देता है। हमारी एकता जितनी विराट है उतनी ही हमारे सर्जकों, फिल्म मेकर्स की सृजन शक्ति भी विशाल है। सिनेमा केवल मनोरंजन की नहीं परंतु समाज का प्रतिबिंब है। संस्कृति और संवेदनाओं को व्यक्त करने का सक्षम मंच है।

0: फिल्म भाषा की सरहद पार कर सकती है। कलाकार करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। एक कहानी विश्व को भारत के साथ जोड़ सकती है। ऐसी ही विविध भाषाओं, संस्कृतियों और भारत के कोने कोने में मौजूद प्रतिभाओं में से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों सम्मानित करने का आज का अवसर है।
1: इस अवसर पर अपनी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए एक विजेता ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा,
2: मेरा नाम सूरज कुमार है और मुझे मेरे फिल्म पिपलांत्री ए टेल ऑफ इको फेमिनिज्म के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रजत कमल से सम्मानित किया गया है। हमारी यह फिल्म पिपलांत्री पंचायत के हर बच्चियों के पैदा होने पर 111 पेड़ लगाया जाता है। यह बच्चियों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। इस फिल्म के जरिए हमने यह भी बताने की कोशिश किया है कि कैसे आज से 45 साल 40 साल पहले पिपलांत्री में जो है व्हाइट मार्बल माइनिंग के लिए जो है सरकार लीज पे देने के लिए शुरू किया था और उसके बाद पूरा वहां का इकोसिस्टम तबाह हो गया था। लेकिन वहां पे एक आज से 25 साल पहले वहां का एक सरपंच इलेक्ट होता है श्याम सुंदर पालीवाल जी और उन्होंने उस पूरे इकोसिस्टम को उन्होंने चेंज कर दिया। वहां पर आज उन्होंने मिलियंस ऑफ ट्रीज लगाए, उसकी वजह से वहां का आज की तारीख में टेम्परेचर भी डाउन है। वहाँ जितने सारे फ्लोरा एंड फौना है, ग्रीनरी है, इंसानी जिंदगी है, आपको पेड़ पौधे और जीव जंतु सब तरह सारी चीजें जो है वापस आ गई हैं। हमारी यह फिल्म इन्हीं सब सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करता है और उसमें हमने यह भी दिखलाया किस तरीके से पिपलांत्री पंचायत जो है यूएन से सस्टेनेबल गोल को मीट कर रहा है।
1: और इसी के साथ आवाज का चहल पहल का ये अंक यही संपन्न होता है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया श्रीनाथ दीक्षित ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। तो आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया

0: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। शल्यप्रहारः सिन्दूराभियानं च भारतस्य नूतनायाः उग्रवादविरोधीनीतेः अमोघम् उदाहरणमिति मनोगतकार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा सप्रश्रयं प्रोदीरितम्। सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च जनगणनाभियानस्य प्रथमचरणं पूर्णताम् अगात् इति प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितम्। सामरिकस्वायत्ततायाः सुरक्षायाः च उपरि आघाते सति भारतं स्वात्मरक्षां विधास्यति एवेति रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सबलं प्रख्यापितम्। गुजरातस्य साबरमतीक्षेत्रे 15,00,000,000,000 रूप्यकाणां रेलविकासपरियोजनाः गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन समुद्घाटिताः। अपि च नागोया एशियाई क्रीडासु स्क्वैश स्पर्धायां अभयसिंहेन अनाहतसिंहेन च रजतपदके विजिते महिलानां 200 मीटर धावने च हरिता भद्रा कांस्यपदकं विजितवती। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आकाशवाण्याः मनोगतम् इति कार्यक्रमस्य सम्बोधनक्रमे राष्ट्रम् उद्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतीयसैन्यबलेन पाकिस्ताने आतंकवादीनां निगूढ आश्रयेषु कृतः सर्जिकल स्ट्राइक इति शल्यप्रहारः भारतस्य आतंकवादविरोधीनीतेः नव्यम् उदाहरणम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् श्वः भारतवर्षम् अस्य ऐतिहासिक शल्यप्रहारस्य दशमवर्षपूर्तिम् अभिनन्दिष्यति। नियन्त्रणरेखां लङ्घयित्वा वीरभारतीयसैनिकाः येन शौर्येण आतंकवादविरुद्धं कठोरां प्रतिक्रियाम् अकुर्वन् तद्वीक्ष्य समग्रं विश्वम् आश्चर्यचकितम् अभवत्। सः सबलम् अवोचत् यत् एषः शल्यप्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादी आक्रमणैः संतप्तस्य राष्ट्रस्य एकः निर्णायकः प्रत्युत्तरप्रहारः आसीत्। विगते दशके बालाकोट वैमानिकप्रहारात् आरभ्य सिन्दूराभियानं यावत् भारतेन मुहुर्मुहुः एषः स्पष्टः सन्देशः प्रसारितः यत् आतंकवादी दुश्चेष्टानां प्रत्युत्तरं यथोचित दण्डेन एव दीयते।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: सः उदघोषयत् यत् वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थानके हतेषु अमेरिकी नागरिकान् विहाय सर्वाधिकं संख्या भारतीय नागरिकाणाम् आसीत्। 2014-2000 वर्षे प्रधानमन्त्री पदभारग्रहणात् परम् अमेरिकायात्रावधौ तेभ्यः निरपराध नागरिकेभ्यः स्वकीयं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान् इति सः अस्मरत्। प्रधानमन्त्री कोटिशः भारतीय नागरिकाणां पक्षतः शोक संतप्त परिवारेभ्यः पुनरपि एकदा संवेदनां प्राकटयत्। अपरं च जनगणना प्रक्रियाम् अधिकृत्य श्रीमोदी अवोचत् यत् अस्य राष्ट्रीय अभियानस्य प्रथमः चरणः देशस्य सर्वेषु अपि राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च प्रायः सम्पन्नः अभवत्, यत्राधुना यावत् 32,00,000,000+ विवरणं समालेखितम्। सम्प्रति लद्दाख हिमाचलप्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तराखण्ड राज्यानां दुर्गमेषु हिमाच्छादितेषु क्षेत्रेषु अपि कार्यमिदम् अविरतं प्रचलति। एतेभ्यः सीमान्तक्षेत्रेभ्यः अनेके प्रेरकाः अनुभवाः प्राप्ताः इति उल्लेखयन् असौ अवोचत् यत् उत्तराखण्ड राज्ये देशस्य प्रथम ग्रामरूपेण प्रसिद्धात् चमोली मण्डलस्य माणा ग्रामात् मतगणना कार्यस्य शुभोत्कर्षः अभवत्।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: अद्य विश्व हिंदू परिषदः भूतपूर्वस्य अन्ताराष्ट्रिय कार्याध्यक्षस्य श्रद्धेयस्य स्वर्गीय अशोक सिंघलस्य जन्मशताब्दी जयंती वर्तते इति प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तम्। सः अशोक सिंघलम् एतादृशं महान्तं व्यक्तित्वम् अभिहितवान् येन स्वकीयम् अखिलमपि जीवनं संस्कृतेः समाजस्य राष्ट्रस्य च सेवायै समर्पितम्। प्रधानमन्त्रिणा अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिनांके आयोज्यमानायाः महात्मा गांधी जयन्त्याः सन्दर्भे अभिहितं यत् बापू इत्यस्य जीवनमूल्येषु स्वच्छता अभियानस्य स्थानम् अनन्यमस्ति। सः न्यगादीत् यत् व्यक्तिगतस्तरात् आरब्धाः प्रयासाः अनन्तरं लोकसहभागेन व्यापकरूपं धारयन्ति। स्वच्छतैव राष्ट्रस्य पक्षतः महात्मा गांधिने दीयमानः सर्वोत्कृष्टः श्रद्धांजलिः वर्तते इति मोदिना सबलम् उक्तम्।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: मादक द्रव्य व्यसन मुक्त्यै संचालितस्य मादक मुक्त युवा अभियानस्य प्रसंगे प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम् यत् लक्षाधिकैः युवकैः दुर्व्यसनात् दूरस्थाने सम्भूय अन्यान् जागरयितुं महती प्रतिज्ञा गृहीता। शतसप्ताहव्यापी अस्मिन् राष्ट्रिय यज्ञे युवकाः स्वकीयाम् अभिव्यक्ति कलां प्रयुञ्जीरन् इति मोदिना आह्वानं विहितम्। क्रीडा संवर्धनम् अधिकृत्य तेन प्रोक्तं यत् दर्ग रक्तदुर्गस्य प्राचीरा

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: अश्वनी भाई
2: जी,
0: भाई आज भाइयों की फरमाइश का दिन है, फरमाइश आ गई है हमारे पास, बहुत संदेश हैं, चिट्ठियां हैं
2: जी।
0: तो लेकिन आज जो खास बात है, विश्व नदी दिवस भी है
2: जी,
0: और ये जो सितंबर माह है इसके चौथे रविवार को ये मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उद्देश्य है कि हम दुनिया भर में नदियों के महत्व को समझें, जल प्रदूषण को कम करें और नदियों के संरक्षण और प्रबंधन के प्रति लोगों को सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएं। और ये जो इस वर्ष 2026 की थीम है वो है नो फॉरेस्ट नो रिवर नो वाटर नो लाइफ, यानी वन नहीं, नदी नहीं, पानी नहीं तो जीवन नहीं।
2: बिल्कुल,
0: तो जीवन नहीं, बिना पानी के जीवन नहीं है। और मीठे पानी का स्रोत नदियां हैं, जो हमारे न केवल पीने के पानी बल्कि सिंचाई योग्य पानी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जल का प्रदूषण रोकें और नदियों का संरक्षण करें।
2: बिल्कुल,
0: और हर नागरिक इसमें अपना योगदान दे सकता है।
2: बिल्कुल,
0: तो आज इस बात को ध्यान रखते हुए विश्व नदी दिवस मनाया जाता है ताकि हम इसके प्रति जागरूक रहें
2: जी।
0: और अब जागरूकता की बात हो गई है, भाइयों की जो फरमाइश है वो लेते हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास फरमाइश है वो सुनना चाह है रोहित सिंह वेदपाल को। और इसके लिए
2: पहला जो पत्र हमें मिला है वो गांव हांडीहेड़ा जिला हिसार से जी इंद्र शर्मा और सार्थक शर्मा, और दूसरा पत्र हम शामिल कर लेते हैं। ये इनकी फरमाइश है, गांव उजला जिला अम्बाला हरियाणा से ये पत्र में लिखते हैं, राम राम जी कर रहे हैं। और इन्होंने अपने कुछ नाम भेजे हैं, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और उनका पूरा परिवार। और
0: कनेरा पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, करण बत्ता और इनका परिवार, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और इनका परिवार, ये है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और इनका परिवार, और ये है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़, ये हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और इनका परिवार, पठान टोली कलेर से निखत परवीन और इनका परिवार,
2: अदुर्गा कॉलोनी हांसी से पत्र मिला है, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी डब्लू उनका पूरा परिवार। और ये पत्र ढानी गांव ढानी लाल खां नौर से जावेद खान और अरमान खान उनका पूरा परिवार। और ये है वांडीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती और उनका पूरा परिवार। और छत्तीसगढ़ ददरंगी से भगवत वर्मा, शांति देवी और लीलावती, बिनीता और रुद्र शर्मा उनका पूरा परिवार।
0: गांव लोहड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, भुवनेश्वरी और इनका परिवार, और ये हैं करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी और इनका परिवार, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दकी, नजमा बेगम सिद्दकी, रियाज रिफाकत और इनका परिवार, ये हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और जटवाड़ा गाजियाबाद से हैं शीशपाल अकेला
2: जी।
0: और सुनते हैं इन सबकी पसंद पर रोहित सिंह और वेदपाल।

0: अश्वनी भाई ये सुन रहे थे भाई उपदेश और रोहित सिंह और वेदपाल की आवाज में। और अब अगली फरमाइश आई है ऋषिपाल नागर को सुनने के लिए, और इसके लिए जो हमारे पास संदेश हैं वो हैं,
1: ये है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से ये पत्र मिला है, जिन्होंने सुनना चाहे ऋषिपाल नागर को, सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर, गौरव ग्रोवर और उनका पूरा परिवार। और ये है ये पत्र हरिद्वार से, उत्तराखंड से पत्र हमें मिला है,
0: आजाद नगर लक्सर से हैं ये, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और इनका परिवार, गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से, सुरेंद्र संधु, अनीता संधु और इनका परिवार।
1: और MLB रोड ग्वालियर से पत्र मिला है, सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, लवण्या, आरफ, मेघा, साक्षी और उनका पूरा परिवार।
0: दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और उनका परिवार, फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद डुड्डी और इनका परिवार। ये है बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग और इनका परिवार। ये हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर जिंदा, जसवीर जस्सी और इनका परिवार। अनारकली कली बाजार जगराऊं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक।

0: मल्होत्रा और इनका परिवार।
1: और भोपाल का राजस्थान से पत्र मिला है जिन्होंने नागर इनको सुनना चाहा है। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा और उनका पूरा परिवार। और ये है जनकपुरी सहारनपुर से, ये हमारे पुराना श्रोता है निरंकार जी, जो लगातार हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और प्रोग्राम की तारीफ करते हैं। इनका पत्र शामिल कर लेते हैं। जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पार्ल डिकोस्टा और विलियम डिकोस्टा।
0: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल और इनका परिवार। और
1: गांधीनगर
0: ये
1: गुजरात से
0: है
1: सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल राठौर और निशा राठौर, इनका उनका पूरा परिवार।
0: खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा। और ये हैं बड्डू चैना जिला भिवानी हरियाणा से महिपाल शोरान, नीरू, उत्कर्ष और दिव्यांश। और ग्राम पंचायत बठेड़ा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा और अंजनी ज्योति वर्मा। और यह है पटेल नगर मलोट कैंप से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और इनका परिवार। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी और इनका परिवार। यह है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी और इनका परिवार। डुग्गर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका गजबीये और इनका परिवार। बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया और इनका परिवार। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण, मुकेश, रामचंद्र और इनका परिवार। तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पर ये उपदेश ऋषिपाल नागर से।

0: तो अश्वनी भाई,
1: जी
0: ये भाई सुन रहे थे उपदेश ऋषिपाल नागर की आवाज़ में, और जितनी बातें बताई भाई बहुत बढ़िया बातें इन्होंने कही जिन पर हमें अमल करना चाहिए। और जो अगली फरमाइश आई है वो है राजकुमार लड़ाना की आवाज़ में एक उपदेश सुनने के लिए, और इसके लिए जो पत्र हमारे पास हैं वो इस प्रकार से हैं। गांव सूप जिला बागपत से कृष्ण कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, मदन मोहन, अश्वनी, आशीष, अभिषेक, क्षितिन, लक्ष्य, नेहा, निकिता और श्रेयांश, ये हैं। बधेव जिला शामली से डॉक्टर सहेंद्र पाल शर्मा, हरेंद्र शर्मा, बबीता शर्मा और आशुतोष शर्मा। गांव रठौड़ा जिला बागपत से पुष्पेंद्र शर्मा, रीता शर्मा, अनमोल और खुशी शर्मा। पपरावट दिल्ली से भाई नफे सिंह मुदगल, रूपति मुदगल और इनका परिवार।
1: और ये नागर कोला से, ये छत्तीसगढ़ से पत्र मिला है। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और उनका पूरा परिवार। और एक दिल्ली उत्तर नगर से पत्र मिला है, वो सुनना चाहते हैं राजकुमार लड़ाना को, रुक्मिणी देवी, कोमल भारती रायपुरिया, नानू और भव्या। और एक और पत्र मिला है, ये है गाँव खोकरवाली गंगानगर से विनोद बरसाना, रोशनी बरसाना, ये भी हमारे पुराने कलाकार
0: हैं। रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से किलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम सेजल साहू और इनका परिवार। और गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांत। और ये है

0: और ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुहलापुर उत्तर प्रदेश से है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, उनका पूरा परिवार। और ये
1: गांव
0: एक
1: पंजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंदोसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंदोसोलिया।
0: और मलोट पंजाब से है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, उनका पूरा परिवार। और ग्राम छत्तीसगढ़ हादसा नंबर 2 से कमलेश शाहू, जितेंद्र शाहू और उनका पूरा परिवार। और यह है कोटवारा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से पत्र लिखते हैं हमारे पुराने श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी, उनका पूरा परिवार। दुपहिया नेदावाला जिला गाजियाबाद गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और पंजलय, उनका पूरा परिवार।
1: धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूजा पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया देशानी और निमित आहुजा।
0: भिलाई छत्तीसगढ़ से पत्र मिला है ये मुकेश कुमार शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, उनका पूरा परिवार। और ये पत्र मिला है परेला टिकुंगढ़ मध्य प्रदेश से है विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और उनका पूरा परिवार। और मेहरगढ़ उमरेन खंड महाराष्ट्र से है अभिजीत कावे जी, श्रीमती सरिता और उनका पूरा परिवार।
1: तो सुनते हैं इन सब की पसंद पर राजकुमार लड़ाना को।

0: और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब तक भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था, इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं की अगली पीढ़ी को आगे

0: बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रम्मी कल्चर ऐप और अन्य गेमिंग ऐप से जुड़े मामलों में लगभग 442 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। निदेशालय ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में सावधि जमा, व्यावसायिक दुकानें, एक विला और कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वॉश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विनी शंकर ने डेकाथॉनल में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोता लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: अश्वनी भाई
1: जी, नगना भाई,
0: भाई देखिए कृषि से जुड़ी बहुत सारी चीजें हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं और जो कृषि से जुड़ी संस्थाएं हैं किस प्रकार से वो योगदान दे रही हैं उनका किसानों के लिए काफी महत्व है। और आज हम भाइयों को सबसे पहले सुनवा रहे हैं CWC यानी केंद्रीय भंडारण निगम सेंट्रल वेलफेयर कॉरपोरेशन की जो 64वीं वार्षिक बैठक हुई है उस पर एक रेडियो रिपोर्ट, तो आइए सुनते हैं।
2: वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन यानी केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक रत्न उपक्रम है जो उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निगम समय समय पर किसानों के हित के लिए कई तरह के प्रशिक्षण और महिलाओं को जागरूक करने के लिए काम करता रहता है, साथ ही साथ कृषि उत्पादों के रख रखाव में अहम भूमिका निभा रहा है। विगत दिनांक 25 सितंबर 2026 को NCUI के सभागार में केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा अपने अंशधारियों के साथ 64वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल, CWC के प्रबंध निदेशक श्री संतोष सिन्हा, निगम के निदेशक मंडल के सभी सदस्य श्री विपिन भाई एन पटेल के साथ साथ निगम के सभी अधिकारियों कर्मचारियों सहित देश भर से आए सहकार बंधुओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके की गई। सबसे पहले सभी का स्वागत करते हुए केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक श्री संतोष सिन्हा ने निगम की साल भर की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत किया।

0: आप सभी को नमस्कार। ये अवसर हमें न केवल वर्ष के दौरान अपने वित्तीय और परिचालन निष्पादन की समीक्षा करने, बल्कि हमने जो प्रगति की है उसका आकलन करने, अपनी सामूहिक उपलब्धियों को स्वीकार करने और आगे की राह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करने का अवसर प्रदान करती है। आगे की दिशा में बढ़ते हुए हमारा ध्यान अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने, परिचालन उत्कृष्टता बढ़ाने, नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा अपने सभी स्टेक होल्डर्स के लिए सतत मूल्य सृजित करना, इस पर केंद्रित है। निगम बुनियादी मानव शक्ति पर निर्भर गोदामों से विकसित होकर प्रौद्योगिकी सक्षम, समेकित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम में परिवर्तित हो रहा है। निगम ने अब तक का सर्वाधिक टर्नओवर और लाभ अर्जित किया है तथा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का उल्लेखनीय विस्तार करते हुए 164.15 लाख मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ 986 गोदामों का संचालन किया है। निगम ने बिहार, असम और महाराष्ट्र राज्यों में निजी पक्षों को प्रोक्योरमेंट सेवाएं प्रदान की हैं। इसके अंतर्गत निजी एजेंसियों की ओर से किसानों से मक्का, सोयाबीन जैसी वस्तुओं की ओर सीधे खरीद की जाती है, जिसके उपरांत वैज्ञानिक भंडारण तथा निजी एजेंसियों की आवश्यकता के अनुसार ग्राहक को डिलीवरी की जाती है। सुस्थिर एवं सामाजिक दायित्व पर बल देने वाले अपने मिशन स्टेटमेंट के अनुरूप निगम ईवी आधारित परिवहन समाधानों के माध्यम से सतत लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा दे रहा है। सुस्थिर विकास के लिए मजबूत आधार के साथ मुझे विश्वास है कि निगम तेजी से बदलते लॉजिस्टिक्स परिदृश्य का सफलतापूर्वक सामना करेगा और विश्वसनीयता तथा उत्कृष्टता के साथ निरंतर सेवाएं प्रदान करता रहेगा। आगामी वित्त वर्ष में प्रवेश करते हुए हम नए अवसरों का लाभ उठाने और एक विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पार्टनर के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए तैयार हैं। हम मिलकर अपने सभी स्टेक होल्डर्स के लिए निरंतर मूल्य सृजित करते रहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।
1: इस अवसर पर श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में केंद्रीय भंडारण निगम की उपलब्धियों और गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा।
2: भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम नाफेड, भारतीय कपास निगम और सबसे महत्वपूर्ण हमारे किसान समुदाय सहित हमारे प्रमुख डिपॉजिटर्स के प्रति भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त करता है। मैं अपने सम्मानित बोर्ड सदस्यों के रणनीतिक मार्गदर्शन के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बेहतरीन मैनेजमेंट टीम और कर्मचारियों का भी आभारी हूँ, जिनकी निष्ठा और समर्पण हमारी सफलता का आधार है। मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा भारत सरकार का भी अनेक निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और साझा उद्देश्य के माध्यम से हमने एक सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार उद्यम का निर्माण किया है, जो निरंतर विकास करने और स्थायी मूल्य सृजित करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इस उल्लेखनीय यात्रा में एक साथ आगे बढ़ते हुए आपके निरंतर सहयोग, विश्वास और प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।
1: इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्य श्री विपिन भाई एन पटेल ने सहकारिता और आत्मनिर्भर भारत के लिए सहकारिता के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा।
3: सभागार में उपस्थित सभी सहकारी बंधुओं, बघेल साहब की सारी बातों से मैं अपने को जोड़ता हूँ। एक बात उन्होंने अधिकार कह दी, ये अधिकार उनको नहीं था, ऊपर बढ़ाने वाली बात, ये तो हम लोगों के बीच में अभी ईश्वर की कृपा से आदरणीय राम भट्ट जी हैं, इनका आशीर्वाद हमको सबको मिलता है, ये काम उन्हीं के जुम्मे है और MD साहब इन्हीं की मानते भी है। बघेल साहब आप कितना भी कहो, जो राम भट्ट जी कहेंगे आदरणीय MD साहब वही करेंगे। मुझे आपके ज़्यादा कानून का आगे नहीं मालूम, लेकिन मैं सहकारिता के क्षेत्र से आता हूँ, ये बात बघेल साहब की बिल्कुल सही है, इसको आप लोग अन्यथा मान लें कि आपके शेयर धारक तो हजारों करोड़ के होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे अंशधारक ही आपकी AGM की शोभा बढ़ाते हैं, तभी आपकी AGM कामयाब होती है। बैंक क्षेत्र

0: केवल बड़ी स्थानीय जी हैं, ये सौभाग्य है हमारा कि हमारे सहकारिता क्षेत्र के ही हैं, वरना ये पद भी किसी दूसरे के पास होता, अफसर के पास, वो मंच में नहीं आता। इसी क्रम में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, नए मेंबरशिप भी समितियों को लेनी चाहिए आपको। बहुत तमाम हम जैसे कोऑपरेटर हैं जो आपके एजीएम आने के लिए शिरौनी करते दूरी सहकारी संस्थाओं से कि भैया आप हमारा प्रस्ताव भेज दो, न गिफ्ट के लिए आते हैं न उसके लिए आते आते सिर्फ इसलिए पूरे देश के सहकारी लोगों से मुलाकात हो जाती है, वो आपके दर्शन हो जाते हैं। तो हमारा आग्रह ये है कि अगर आपको ठीक लगे तो मेंबरशिप खोलनी चाहिए, नई समितियों की मेंबरशिप और लेनी चाहिए, और आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी।
1: इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्य श्री मनीष सहानी ने जानकारी देते हुए कहा,
2: सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की 64वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में मंच पर मंचासीन संस्था के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकगण, संचालक मंडल के सदस्यगण और जो भी इस संस्था के शेयर होल्डर हैं, इसमें से तमाम लोग मुझे इस कॉपरेटिव में सिखाने वाले और कॉपरेटिव में मुझे बढ़ाने वाले, कॉपरेटिव के अंदर मेरी कैसे उपस्थिति रहे उसमें मुझे सहभागी बनाने वाले ऐसे तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे यहाँ प्रतिनिधि भेजा और उसके कारण मैं यहाँ पर संचालक बन पाया। सबसे मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए केवल इतनी एक बात कहूँगा कि बड़े पैमाने पर माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा देश के अंदर एक बड़ा मूवमेंट सहकारिता का खड़ा किया जा रहा है और सहकारिता को हर क्षेत्र में प्रभावी तरीके से खड़ा करने का काम माननीय मंत्री अमित शाह जी ने किया है, और ये पक्ष हो या विपक्ष हो सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में काम ना हो रहा हो। नई सहकारी समितियों के बनाने से लेकर के नए गोदाम से बनाने से लेकर के मार्केट के अंदर सहकारिता का कैसे सामान बिके, कैसे उसकी खरीद हो, कैसे उसकी बिक्री हो और कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, इस सारे काम में माननीय अमित शाह जी ने एक अद्वितीय काम जिसे कहते हैं सहकारिता के क्षेत्र में किया, क्योंकि हम पहले सहकारिता के क्षेत्र में बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहे थे, अभी हम देश के एक बड़े बोर्ड में संघानी साहब डायरेक्टर बने हैं वहाँ। तो ये सब हमारे आप सबके जो जितना हम लोग ने देखा है कोऑपरेटिव को, पहले उदयशंकर अवस्थी जी हम लोग कोऑपरेटिव के अंदर उनको भी एक भीष्मितामह मानते थे, उन्होंने भी एक बड़ी संस्था खड़ी की इफ्को की, और हम सबका बड़ा सहयोग बड़ा प्यार उनका रहता था। ऐसे सभी बोर्डों में जहां लोग आज बैठे हैं जो आए हैं उन सबका भी बड़ा सहयोग प्यार है। मैं इतनी ही बात कहूंगा कि सभी के साथ हम CWC को भी एक कॉरपोरेशन के साथ में सहकारिता से जुड़ी संस्था मानते हैं, इसलिए कुछ सहकारी नई संस्थाएं जो बन रही हैं ऐसी प्रयास होना चाहिए कि उनको भी अपने साथ जोड़ें और उनकी कुछ सदस्यता का कुछ ऐसा उपक्रम करें। कुछ जो डेलीगेट्स के लिए जो जो समितियां हट गई हैं, जैसे बैंक्स को हमने हटा दिया है, तो उनके शेयर होल्डर्स भी बाकी दूसरी संस्थाएं हो सकें, अच्छे लोग आपके पास आएंगे, अच्छे सुझाव देंगे। निश्चित रूप से आप ईमान के लिए कि हम लोग तो कभी CWC का बहुत पहले का एक समय याद करते हैं तो आज में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कभी यहाँ CWC की जो स्थिति थी और उसमें आज जमीन आसमान का अंतर है, उसके लिए इस समय का प्रबंधक समिति जो है और इससे पहले वाली प्रबंध समिति, इन सारे लोगों का और संतोष जी ने बहुत प्रयास किया है, और मेरे को मेरा जितना अभी तक का इनका सानिध्य हुआ है, जितनी बातचीत हुई है एक बोर्ड बैठक के, लेकिन इनकी बहुत अप्रोच है ऐसी, और FCI के चेयरमैन साहब हमारे साथ जो वर्तमान में चेयरमैन है हमारे भी, उनका भी बड़ा सोच ऊंची है और बड़ा अच्छा सहयोग करने को तैयार हैं वो, और उनकी बातचीत भी ऐसी है कि ये संस्था और आगे बढ़े और इतने बड़े पैमाने पर ये जो हम लाभ में हैं, निश्चित रूप से प्रबंधन अच्छा है, तभी कोई संस्था लाभ में आती है। मैं सारे प्रबंधन को धन्यवाद भी करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितने समय आपके साथ रहूँगा कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करूँगा। मेरी तरफ से कहीं कोई त्रुटि हो तो आप सब मुझसे बड़े हैं, एक बार मुझे अगर आप सुझाव देंगे टोकेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे आपको कहीं ऐसा स्थिति आएगी। मैं आपके पूर्ण सहयोग से ही काम करूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा। जय हिंद, जय सहकारिता।
1: निगम की निदेशक मानव संसाधन सुश्री संगीता राम रखियानी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा,
3: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंध निदेशक महोदय, निदेशक मंडल के सभी सम्मानित सदस्य, विशिष्ट शेयरधारक, अधिकारीगण,

0: तथा देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का निगम की 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर आप सभी की उपस्थिति एवं सहयोग उत्साहजनक है। यहाँ प्रस्तुत किए गए आंकड़े तथा विवरण हमारे संस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाते हैं, जिसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा गतिशील दृष्टिकोण ने निगम की प्रगति के लिए एक सशक्त आधार दिया है। आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कुशल नेतृत्व तथा कार्यनीतिक दिशा निर्देशन ने निगम की प्रगति एवं विस्तार को एक नई मजबूती प्रदान की है, जो इस संगठन को सतत विकास की ओर ले जा रही है। मैं निदेशक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके विवेकपूर्ण मार्गदर्शन ने निगम को बदलते औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को ढालने एवं परिचालन उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम जिन उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, यह उनके निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोगजनक दृष्टिकोण के कारण ही संभव हो पाया है। मैं हमारे सभी हितधारकों, अंशधारकों, सहयोगी एजेंसियों तथा सहकारी समितियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आपका अटूट विश्वास, सहयोग एवं समर्थन हमारी निरंतर वृद्धि एवं सफलता का अभिन्न अंग है। प्रबंधन की ओर से मैं हितधारकों को आश्वस्त करती हूँ कि निगम परिवार आगे भी सफलता के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं इस अवसर पर निगम के समग्र कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने में हमारे सभी व्यावसायिक भागीदारों, सहयोगियों एवं सम्मानित ग्राहकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद करती हूँ। निगम परिवार के सभी कर्मचारियों एवं सदस्यों का अपार समर्पण एवं अथक प्रयास भी सराहनीय है। मैसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स के सामिधिक लेखा परीक्षक ऑडिटर श्री आशु गोयल जी का भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं गत वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर चुके अध्यक्ष महोदय श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी एवं निदेशक गणों श्री सिद्धार्थ शंभू जी, श्री रवि रंजन जी तथा श्री डीएस राठौड़ जी द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग ने हमारी यात्रा को नई दिशा प्रदान करते हुए उस पर स्थायी एवं सकारात्मक प्रभाव डाला है। अंततः मैं आज यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ तथा निगम की प्रगति के लिए अथक प्रयास जारी रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को दोहराती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: इसी के साथ केंद्रीय भंडारण निगम के अंशधारियों की 64वीं वार्षिक साधारण बैठक पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर शशि कपूर, सहयोग दिनेश कुमार, संयोजक शिव नंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
2: तो अश्वनी भाई
3: जी,
2: अभी हमारे भाई एक रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे 64वीं वार्षिक बैठक के ऊपर, जो केंद्रीय भंडारण निगम की अभी संपन्न हुई थी। तो ये रेडियो रिपोर्ट भाइयों ने सुनी, और हम जानते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, जब खेती किसानी का काम करते हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत समय समय पर पड़ती है, क्योंकि कृषि में समय निकल गया तो फिर हमारी खेती का काम खराब हो जाता है। उनको पैसे ना किसी से उधार लेना पड़े, इसके लिए भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई हुई है, जिससे कि भाई कार्ड बनवा करके बैंक से पैसे लेकर अपने संसाधन जुटा सकते हैं। जो उनको निवेश करना है खेती में, उसके लिए उनके पास पैसे उपलब्ध हो जाते हैं।
3: और बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं नेका भाई। जैसे गांव की अर्थव्यवस्था में खेत खलिहान जितने महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है हमारा पशुधन। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर या मुर्गी पालन से केवल पशु नहीं बल्कि ग्रामीण परिवार की आमदनी का भी मजबूत जरिया है। लेकिन पशुपालन में भी रोजाना का खर्चा होता है। पशुओं के लिए चारा चाहिए, दवा चाहिए, टीकाकरण चाहिए, बिजली पानी, बिजली का खर्च भी, और

0: कई बार पशुओं का बीमा भी कराना पड़ता है। ऐसे में अगर अचानक पैसों की जरूरत अगर निरंका भाई आपको पड़ जाए तो कहाँ से पूरी हो पाएगी?
1: हाँ बिल्कुल, और ये एक सुविधा हमारे किसान भाइयों को है कि वो क्रेडिट कार्ड अगर बनवा लेते हैं तो बैंक से उनको पैसे मिल जाते हैं और किसी से उनको उधार लेना नहीं पड़ता है। बस ध्यान ये रखना है कि समय सीमा के अंदर आपको पैसे वापस जमा कराने हैं, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहे और आपको इस तरह से बैंक की तरफ से सहायता मिलती रहे। और इसके लिए आपको अपने नज़दीकी जो बैंक हैं, बैंक की शाखाओं में जाकर के मिलना पड़ेगा। और वहाँ पर जो कागज़ लिए जाते हैं वो बहुत ऐसे कागज़ नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा जुटाना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड है, आपकी पहचान पत्र है, जो भी कागजात वहाँ पर आपसे लेंगे फिर आपको कार्ड बनाकर दे देंगे। तो ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, ताकि आपको जिस समय पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपको कहीं दूसरे के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, किसी से उधार मांगना ना पड़े। तो इनका आपको लाभ उठाना चाहिए। और अब क्या सुनवा रहे हो?
0: जी, अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक
1: उपदेश सुनते हैं राजेंद्र जाटव की आवाज में। तो सुनते हैं ये उपदेश।

0: अश्वनी भाई,
1: जी
0: ये भाई सुन रहे थे उपदेश राजेंद्र जाटव की आवाज में। और अब देखिए, हम भाइयों को बहुत जरूरी जो किसानी में एक बात है वो बताना चाहेंगे कि जब भी हम बिजाई करते हैं तो जरूरी है कि हमारा बीज गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। कई ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से हमारी फसलों में जाती है। आपने बिजाई कर दी और जब पौधा उग के आता है उसके अंदर रोग आ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: फफूंदी वाली कई ऐसी बीमारी हैं जो बीज से ही हमारी फसलों में पहुंचती है। तो इससे बचाव के लिए किसान भाई जब भी बिजाई करें बीज को उपचारित जरूर करें। जब आप बीज को उपचारित करेंगे उसके बाद उसमें बीमारी आने की संभावना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बीमारी जब होगी तो एक तो गुणवत्ता खराब होगी, आपका उत्पादन

0: भी खराब होगा। तो पहले ही आप उसमें जब उपचार कर देंगे तो संभावना वो खत्म हो जाती है। अब बात आती है कि उपचारित किस बीज को करना है। खास तौर पर जिस समय आप सरकारी एजेंसी से कोई बीज खरीदते हैं तो आम तौर पर देखने में आता है कि वो पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है कि उपचारित बीज है, वो उपचार करके भेजते हैं। लेकिन अगर आपने खुद का बीज तैयार किया है तो उसे भी आपको सीधे सीधे इस तरह खेत में नहीं बोना है, बल्कि उसका उपचार ज़रूर करना है। अब जो आने वाली फसलें, चाहे वो सब्जी की फसलें हैं, चाहे खाद्यान्न की फसलें हैं, चाहे दलहन की फसलें हैं, हर एक में आपको ज़रूरत होती है कि बीज को उपचारित करें। और इसके लिए जो दवाइयाँ आती हैं, फफूंदनाशी दवाइयाँ आती हैं, उनके माध्यम से आप फफूंद से आने वाली बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। क्योंकि ये बीमारियाँ कई बार तो जब पौध आप तैयार करते हैं नर्सरी में उसी वक्त भी दिखाई देती हैं
1: जी।
0: अगर बीज आपका स्वस्थ होगा तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी। तो इन बातों का ध्यान रखकर हमारे किसान भाई अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं। जब उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ेगी तो आपका फायदा ज़्यादा होगा। और अब घड़ी की सुइयों से मिल रहा है इशारा कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है हमारा, तो अपने भाइयों से हम आज्ञा चाहते हैं। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजा कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का गजल और कवाली का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: आरबीआई कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली में बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं की इस पहल को जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 2 दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू। और एशियाई खेलों में आज भारत ने 7 पदक जीते। भारत के 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली में बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन तथा स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं की इस पहल को जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।
5: हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। हर हफ्ते सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है।
8: प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया, जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देशभर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है।
5: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं।

0: नशा मुक्ति का संदेश। हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
1: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है।
0: प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बार लाल किले से खेलों के लिए प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की है। अपने संबोधन के समापन में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि आने वाले त्योहारों को लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ मनाएंगे। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट सहित कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों की लागत लगभग 214 करोड़ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से सड़क, सीवेज और ड्रेनेज से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा।
2: बादली विधानसभा में भी लगभग 160 करोड़ के काम चल रहे हैं। रिठाला में हमारे 328 करोड़ के काम संसदीय क्षेत्र में चल रहे हैं। 609 करोड़ के काम मात्र मुंडका में चल रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष के चुनाव आयोग और देश की चुनावी प्रक्रिया पर आरोपों का खंडन किया है। राजधानी में आज मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की मंशा जनता को गुमराह करना और देश में ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे लोगों का ध्यान देश और दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों और विपक्ष की अपनी नाकामियों से हटकर अनावश्यक विवादों की ओर चला जाए।
4: देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। आज वो लोग बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था?
1: मुख्यमंत्री ने फॉर्म 6 पर विपक्ष के सवालों के बारे में कहा कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मूल फॉर्म में बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया से संबंधित घोषणा को अलग से जोड़ा गया है। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट BLA को चुनाव आयोग के बूथ लेवल अधिकारियों BLO के साथ समन्वय कर पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में सहयोग करने के निर्देश दिए। श्री मल्होत्रा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर विपक्ष के सवालों के बारे में कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके फैसलों पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की जगह तथ्यों के आधार पर चर्चा चाहिए। दिल्ली नगर निगम ने आज 501 सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। महापौर प्रवेश वाही ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कर्मचारियों के वर्षों के परिश्रम और सेवा को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महापौर ने बताया कि इससे पहले निगम ने 296 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं के लिए जागरूक करता रहेगा।
5: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी सनातन संस्कृति के प्रखर संवाहक हिंदू समाज के संगठन और जागरण के लिए जीवन समर्पित करने वाले अशोक सिंघल की जयंती पर उन्हें नमन किया। दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे।
1: कृषि और

0: मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर विमर्श करेंगे। पहले दिन आत्मनिर्भरता, विविधीकरण और उत्पादन वृद्धि, स्थिरता और जलवायु अनुकूल कृषि तथा डिजिटल कृषि, अवसंरचना, वित्त पोषण और जोखिम प्रबंधन पर चर्चा होगी। दूसरे दिन क्षेत्रीय सम्मेलनों से प्राप्त प्रमुख सीखों और पहले दिन की चर्चाओं के परिणामों पर विमर्श होगा। सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्रियों को अपनी प्राथमिकताओं और रबी मौसम की तैयारियों के लिए सुझाव देने का अवसर मिलेगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
1: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा कि ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। इससे पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं के मामले में नीति जारी करने, दावों का निपटारा, निगरानी की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो सकेगी। पोर्टल पर जानकारी हिंदी और अंग्रेजी के साथ 11 और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। इससे पशुपालकों को उनकी अपनी भाषाओं में जानकारी और सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत 560 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए और उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाया। मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए पुलिस थानों में विशेष टीमें गठित की गई थी। इन टीमों ने द्वारका जिला मॉनिटरिंग सेल के साथ मिलकर लगातार काम किया। पुलिस ने मोबाइल फोन को ट्रेस करने के लिए तकनीकी जांच, फील्ड वेरिफिकेशन और अन्य राज्यों के पुलिस के साथ समन्वय किया। वहीं द्वारका जिला पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक 2000 से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। रोहिणी जिला पुलिस ने आज कम्युनिटी पुलिसिंग पहल के अंतर्गत जिला स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा उन्हें नशा और अपराध जैसी असामाजिक गतिविधियों से दूर रखना था। इस प्रतियोगिता में महिला कबड्डी टीम ने भी भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान मनजीत छिल्लर ने खिलाड़ियों को अपने अनुभव साझा कर प्रेरित किया। साथ ही प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वॉश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डिकैथलॉन में 7934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता बद्रा ने महिलाओं 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं पदक तालिका में चीन 118 स्वर्ण समेत 204 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि पर्यटन अलग अलग लोगों, संस्कृतियों और समाजों के बारे में जानकारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विविधता में एकता का प्रतीक भारत और पधारो हमारे देश की भावना से परिपूर्ण राजस्थान आज विश्व भर के पर्यटकों की पहली पसंद है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने कहा कि अब पर्यटन अलग अलग स्थानों की यात्रा करना मात्र नहीं है, बल्कि ये रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिल्ली में

0: बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं के इस पहल को जन भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 2 दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू। और एशियाई खेलों में आज भारत ने 7 पदक जीते। भारत के 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, 2 तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं युवा गजलकार श्री नयन नीरज।
6: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं नयन नीरज नायाब आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम गजल गोष्ठी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस गजल गोष्ठी में हम गजल की उस जादुई दुनिया में प्रवेश करेंगे जहाँ जज्बात लफ्जों का रूप लेकर संवेदनाओं की गहराई को छूते हैं और हर एक शेर दिल में उतर जाता है। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान हैं श्री विज्ञान वृद्धि, गजल विधा में आपका योगदान अतुल्य है। आपके शेर संवेदना और सोच की गहराई से निकलकर सीधा दिल में उतरते हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान वरिष्ठ गजलकार आदरणीय श्री अरुण सागर जी, आप गजल की परंपरा के प्रतिनिधि हैं। जहाँ शब्द और भाव का अद्भुत संगम होता है, आपकी गजलों में भाषा की सरलता, अर्थ की गहराई दोनों झलकते हैं। और मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ जान इसार अख्तर साहब के एक शेर से कि सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो इस रात की औकात बनेगी। और जितने उत्सुक आप हैं हमारे दोनों वरिष्ठ मेहमान वरिष्ठ गजलकार की नायाब गजलों को सुनने के लिए, उतना ही उत्सुक मैं हूँ। तो मैं आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और अपने पहले मेहमान साहब का स्वागत करता हूँ, हमारे वरिष्ठ गजलकार आदरणीय श्री विज्ञान वृद्धि। और उन्हें मैं आवाज देता हूँ अहमद फराज जी के एक शेर के साथ कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, क्या सादा लोग हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। तुम्हें स्वागत करता हूँ श्री विज्ञान व्रत जी का।
7: जी, तो 3 मतलब सुने पहले आप।
6: स्वागत है।
7: एक जरा सी दुनिया घर की, एक जरा सी दुनिया घर की, लेकिन चीजें दुनिया भर की, बस अपना ही गम देखा है। मतलब इस करता हूँ कि बस अपना ही गम देखा है, तूने कितना कम देखा है।
6: वाह क्या बात।
7: तुमसे जितनी बार मिला हूँ, तुमसे जितनी बार मिला हूँ, पहली पहली बार मिला हूँ। और 2-4 गजलें मैं अर्ज करता हूँ। मैं खिड़की वो पर्दा है, मतलब देखें कि मैं खिड़की वो पर्दा है, देखो तो क्या रिश्ता है। और अब के उसने खुद को भी और नजर से देखा है।
6: क्या बात है।
7: और नजर से देखा है और उसने अपना नाम पता, शेर देखें कि उसने अपना नाम पता अक्सर खुद से पूछता है।
6: वाह।
7: और शेर देखें कि अब की बार निशाने को वो दानिश्ता चुका है।
6: क्या बात है।
7: रोज बदल जाता है जो किस दुनिया का नक्शा है।
6: वाह।
7: मैं खिड़की वो पर्दा है, देखो तो क्या रिश्ता है।
6: बहुत खूबसूरत।
7: और साहब ये गजल का मतलब देखें कि चुप्पी से बतियाऊं कैसे,

0: से बतियाऊं कैसे ये लहजा अपनाऊं कैसे।
1: आहा।
0: रहना और कहीं नामुमकिन, रहना और कहीं नामुमकिन, खुद में भी रह पाऊं कैसे।
1: क्या बात है।
0: जिनका उत्तर केवल तुम हो, जिनका उत्तर केवल तुम हो, ऐसे प्रश्न उठाऊं कैसे।
1: वाह वाह सर, बहुत खूबसूरत।
0: और सब कुछ समझे बैठे हो तुम, सब कुछ समझे बैठे हो तुम, फिर तुमको समझाऊं कैसे।
1: क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत।
0: सब कुछ समझे बैठे हो तुम, फिर तुमको समझाऊं कैसे। और जिसने मुझको दुश्मन समझा, जिसने मुझको दुश्मन समझा, मैं उसका हो जाऊं कैसे।
1: वाह।
0: और किसने दर्द दिया है मुझको, किसने दर्द दिया है मुझको, सबको सच बतलाऊं कैसे। किसने दर्द दिया है मुझको, सबको सच बतलाऊं कैसे। और मुझको खुद पर शक होता है, मुझको खुद पर शक होता है, पर इल्जाम लगाऊं कैसे,
1: लगाऊं कैसे,
0: चुप्पी से बतियाऊं कैसे, ये लहजा अपनाऊं कैसे।
1: बहुत खूबसूरत गजल सर।
0: एक गजल और देख लें।
1: जी स्वागत है।
0: मतलब देखें कि मुझको जिस्म बना कर देख,
1: मुझको जिस्म बना कर देख,
0: मुझको जिस्म बना कर देख, एक दिन मुझ में आकर देख। मुझको जिस्म बना कर देख, एक दिन मुझ में आकर देख। और ये शेर देखें कि जिसका उत्तर तू खुद है, अब वो प्रश्न उठा कर देख। जिसका उत्तर तू खुद है, अब वो प्रश्न उठा कर देख। अच्छा अपने खुद को तू, अच्छा अपने खुद को तू, खुद में ही दफना कर देख। क्या समझा तू दुनिया को, क्या समझा तू दुनिया को, खुद में ही क्या समझा तू दुनिया को, दुनिया को समझा कर देख। और गजल का आखिरी शेर करता हूँ कि तू अपनी जद में है क्या, तू अपनी जद में है क्या, अपना हाथ बढ़ा कर देख।
1: वाह बहुत खूबसूरत गजल।
0: एक मतलब देखें कि लापता था लापता है,
1: लापता था लापता
0: था लापता है, ये पता तो आपका है।
1: वाह।
0: और एक मतलब और देखें कि मुझसे मिलकर फरजाने, मुझसे मिलकर फरजाने, लौटे होकर दीवाने,
1: दीवाने।
0: और ये मतलब अर्ज करता हूँ गजल का, आईना दिखलाना है क्या, आईना दिखलाना है क्या, उसको सब समझाना है क्या। वो जो इतना गुमसुम सा है, वो जो इतना गुमसुम सा है, कोई राज छुपाना है क्या।
1: वाह।
0: और तुम जो इतना खुश दिखते हो, तुम जो इतना खुश दिखते हो, उनका आना जाना है क्या।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: तुम जो इतना खुश दिखते हो, उनका आना जाना है क्या। और इतनी देर लगी आने में, इतनी देर लगी आने में, रास्ते में मैखाना है क्या।
1: क्या बात है।
0: इतनी देर लगी आने में, रास्ते में मैखाना है क्या। और पैकिंग इतना चमकीला है, पैकिंग इतना चमकीला है, भीतर माल पुराना है क्या।
1: बहुत बहुत अच्छा।
0: आईना दिखलाना है क्या, उसको सब समझाना है क्या।
1: बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे वरिष्ठ शायर श्री विज्ञान व्रत जी। और किसी ने कहा है कि यही नहीं कि जमाने का ढब दिखाई दे, यही नहीं कि जमाने का ढब दिखाई दे, और गज़ल वो है कि सब दिखाई दे। उसी तरह से विज्ञान जी ने इतनी खूबसूरत गज़ल हमें सुनाई, बहुत खूबसूरत सर। और इसी के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे आज के दूसरे मेहमान शायर आदरणीय श्री अरुण सागर जी का। अरुण सागर जी को मैं आवाज लगाता हूँ बशीर बद्र साहब के एक शेर से कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। बहुत बहुत स्वागत है अरुण सागर जी आपका।
2: नमस्कार, मैं एक मतला और एक शेर हाजिर कर रहा हूँ।
1: स्वागत।
2: हजारों ठाव काटे जा रहे हैं, हजारों ठाव काटे जा रहे हैं, हमारे गांव काटे जा रहे हैं। हजारों ठाव काटे जा रहे हैं, हमारे गांव काटे जा रहे हैं, और जिन्हें आता है चलने का सलीका, जिन्हें आता है चलने का सलीका, उन्हीं के पांव काटे जा रहे हैं। जिन्हें आता है चलने का सलीका, उन्हीं के पांव काटे जा रहे हैं, हजारों ठाव काटे जा रहे हैं, हमारे गांव काटे जा रहे हैं। इसी हवाले से एक मतला और चंदाशार सुने। तुम्हारे जुल्म को हम तख्त की सौगात कहते हैं,

0: तुम्हारे जुल्म को हम तख्त की सौगात कहते हैं, हमें तुम गौर से देखो हमें सुकरात कहते हैं।
1: वाह वाह।
0: तुम्हारे जुल्म को हम तख्त की सौगात कहते हैं, हमें तुम गौर से देखो हमें सुकरात कहते हैं। तो सजा जिस दौर में दी जा रही हो बेगुनाहों को, सजा जिस दौर में दी जा रही हो बेगुनाहों को, हम ऐसे दौर को ही गर्दिशे हालात कहते हैं। हम ऐसे दौर को ही गर्दिशे हालात कहते हैं। और इसी हवाले से एक शेर और सुने कि किसी के जख्म आंसू दर्द व गम तकलीफ की खातिर, किसी के जख्म आंसू दर्द व गम तकलीफ की खातिर, जो आंखों में छलक जाए उसे जज्बात कहते हैं। जो आंखों में छलक जाए उसे जज्बात कहते हैं। और इसका आखिरी शेर सुने कि जमी पर बादलों से जो बरसता है वो पानी है, जमी पर बादलों से जो बरसता है वो पानी है, जो आंखों से बरस जाए उसे बरसात कहते हैं।
1: वाह।
0: जमी पर बादलों से जो बरसता है वो पानी है, जो आंखों से बरस जाए उसे बरसात कहते हैं। तुम्हारे जुल्म को हम तख्त की सौगात कहते हैं, हमें तुम गौर से देखो हमें सुकरात कहते हैं।
1: वाह।
0: हमें तुम गौर से देखो हमें सुकरात कहते हैं।
1: बहुत खूबसूरत।
0: और आइए इसी हवाले से एक मतला और एक शेर और हाजिर करता हूं कि खामियां जो थी नहीं किरदार में, खामियां जो थी नहीं किरदार में, वो खबर छापी गई अखबार में।
1: वाह।
0: खामियां जो थी नहीं किरदार में, वो खबर छापी गई अखबार में। और जुल्म की सारी हदें लांघी गईं, जुल्म की सारी हदें लांघी गईं, सर झुका फिर भी नहीं दरबार में। जुल्म की सारी हदें लांघी गईं, सर झुका फिर भी नहीं दरबार में। और खामियां जो थी नहीं किरदार में, वो खबर छापी गई अखबार में। आइए और कुछ मोहब्बत के चंद मतले और शेर सुन लें, फिर एक गजल तरन्नुम से आपके सामने हाजिर करूंगा। कि देखें कि हदे एहसास बढ़ती जा रही है, हदे एहसास बढ़ती जा रही है, मिलन की आस बढ़ती जा रही है, और तुम्हारा इश्क दरिया हो रहा है, तुम्हारा इश्क दरिया हो रहा है, हमारी प्यास बढ़ती जा रही है। हदे एहसास बढ़ती जा रही है, मिलन की आस बढ़ती जा रही है, तुम्हारा इश्क दरिया हो रहा है, हमारी प्यास बढ़ती जा रही है, हमारी प्यास बढ़ती जा रही है।
1: बहुत खूबसूरत।
0: और इसी हवाले से एक मतला और एक और शेर गौर कीजिए कि गुलो गुलजार मंजर दे रहा हूं, गुलो गुलजार मंजर दे रहा हूं, फरिश्तों का मुकद्दर दे रहा हूं, बस एक कतरे की खातिर तू खफा है, बस एक कतरे की खातिर तू खफा है, तुझे पूरा समंदर दे रहा हूं, बस एक कतरे की खातिर तू खफा है, तुझे पूरा समंदर दे रहा हूं, तुझे पूरा समंदर दे रहा हूं। और हम सब लोग गांव से कुछ ना कुछ ताल्लुक रखते हैं, मैं वहां से एक मतला और एक शेर और कह के फिर एक गजल की ओर बढ़ते हैं मुकम्मल की। न चांदी याद आती है न सोना याद आता है,
1: वाह।
0: न चांदी याद आती है न सोना याद आता है, दिया मिट्टी का खिलौना याद आता है, और हम अपने मखमली बिस्तर पे जब करवट बदलते हैं, हम अपने मखमली बिस्तर पे जब करवट बदलते हैं, पुराने गांव के घर का बिछौना याद आता है। हम अपने मखमली बिस्तर पे जब करवट बदलते हैं, पुराने गांव के घर का बिछौना याद आता है। न चांदी याद आती है न सोना याद आता है, न दिया मिट्टी का खिलौना याद आता है।
1: बहुत खूबसूरत,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और दो तीन अशआर एक गजल के और सुन ले, फिर एक तरन्नुम से गजल हाजिर करता हूँ कि गले उसको लगाया जा रहा है, गले उसको लगाया जा रहा है, जिसे कातिल बताया जा रहा है, और सलीका सीख कर जीने का हमसे, सलीका सीख कर जीने का हमसे, हमें जीना सिखाया जा रहा है।
1: बहुत खूबसूरत।
0: सलीका सीख कर जीने का हमसे, हमें जीना सिखाया जा रहा है, और जरा देखो हमारे कत्ल में ही, जरा देखो हमारे कत्ल में ही, हमें मुलजिम बनाया जा रहा है, जरा देखो हमारे कत्ल में ही,

0: हमें मुलजिम बनाया जा रहा है और किसे अपना बनाने का था वादा, किसे अपना बनाने का था वादा, किसे अपना बनाया जा रहा है, किसे अपना बनाया जा रहा है, और हम ही से मांग कर माचिस की तीली, हम ही से मांग कर माचिस की तीली, हमारा घर जलाया जा रहा है, हम ही से मांग कर माचिस की तीली, हमारा घर जलाया जा रहा है, गले उसको लगाया जा रहा है जिसे कातिल बताया जा रहा है।
1: वाह।
0: और दोस्तों, मेरे प्यारे श्रोताओं, एक गजल तरन्नुम से उसके चंद असार सुन ले आप।
1: स्वागत है।
0: कि दर पे तेरे ठहर गई आंखें,

0: तुझको देखा तो तर गई
1: बहुत खूबसूरत।
0: आंखें, तुझको देखा तो तर गई आंखें, लौट कर फिर न घर गई आंखें। गौर कीजिए, बज्म में सब हसीन है फिर भी, बज्म में सब हसीन है फिर भी।

0: लौट कर फिर न घर गई आंखें।
1: क्या खूबसूरत।
0: दीन दुनिया से बेखबर होकर, दीन दुनिया से बेखबर होकर तू जी

पर फिर न घर गई आंखें, तू तो बस छोड़ कर गया मुझको, तू तो

0: फिर न घर गई आंखें।
1: वाह वाह।
0: और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, लौट कर फिर सिर्फ तेरी तलाश में सागर, सिर्फ तेरी तलाश में सागर, जाने किस किस के डर गई आंखें, जाने किस किस के डर गई आंखें, लौट कर फिर न

0: वाह
1: दर पे तेरे ठहर गई आंखें।
2: मेरे प्यारे श्रोताओं, आकाशवाणी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कवि गोष्ठी में अब तक जो हम सब का संचालन कर रहे थे सारे कवियों का, अब उनकी बारी है। मैं एक मतला और एक शेर से उनको आवाज देता हूं। हिंदुस्तान के जाने माने कवि और शायर हैं। तेरे जुल्मों सितम से ये निगाहें नम नहीं होंगी, हमारा पर कतरने से उड़ाने कम नहीं होंगी, वो बुलंदी पर हमारा हौसला है और हम भी हैं। बुलंदी पर हमारा हौसला है, बुलंदी पर हमारा हौसला है और हम भी हैं। हमारी धड़कने सांसें कभी बेदम नहीं होंगी, हमारी धड़कने सांसें कभी बेदम नहीं होंगी, तेरे जुल्मों सितम से ये निगाहें कम नहीं होंगी। मैं बहुत अदब से आवाज दे रहा हूं भाई नयन नीरज नायाब जी को, आप सुने, गौर से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक मतला और शेर देखें, और ये गज़ल जो मैं आपको सुनाऊंगा इसमें एक पिता का दर्द है, वो आप महसूस कर पाएंगे कि
2: बहुत खूब।
0: एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है। कि जुगनुओं से आफताब बनाता रहा हूँ मैं, जुगनुओं से आफताब बनाता रहा हूँ मैं, दबी सांस से हर रिश्ता निभाता रहा हूँ मैं।
2: वाह
0: जुगनुओं से आफताब बनाता रहा हूँ मैं, दबी सांस से हर रिश्ता निभाता रहा हूँ मैं। वो जो कर रहा है अब मेरी इज्जत को तार तार, वो जो अब कर रहा है मेरी इज्जत को तार तार,
2: वाह
0: उसकी हर बात पे पर्दा गिराता रहा हूँ मैं,
2: खूबसूरत,
0: उसकी हर बात पे पर्दा गिराता रहा हूँ मैं।
2: वाह।
0: और मेरे कांपते हाथों से अब परहेज है उसे, मेरे कांपते हाथों से अब परहेज है उसे, पकड़ के उंगली जिसे चलना सिखाता रहा हूं मैं,
2: वाह वाह
0: पकड़
2: खूबसूरत,
0: के उंगली
2: बहुत खूब।
0: जिसे चलना सिखाता रहा हूं मैं। और दर्द घुटने का अब नया खर्चा है उसके लिए, दर्द घुटने का अब नया खर्चा है उसके लिए, बिठा के कांधे पर जिसे मेले घुमाता रहा हूं मैं, बिठा के कांधे पर जिसे मेले घुमाता रहा हूं मैं।
2: बेहतरीन।
0: और बेटा अब माँ को पास रखने को तैयार नहीं, बेटा अब माँ को पास रखने को तैयार नहीं, जिस माँ बेटे के प्यार पर इतराता रहा हूं मैं, जिस माँ बेटे के प्यार पर
2: सच,
0: इतराता रहा हूं मैं।
2: वाह।
0: और आने वाली नस्लों को तुम यूं बर्बाद न करना, ये शेर देखें कि आने वाली नस्लों को तुम यूं बर्बाद न करना, पुरानी नस्लों को जिस तरह से खून पिलाता रहा हूं मैं, कि पुरानी नस्लों को जिस
2: वाह
0: तरह से खून पिलाता रहा हूं मैं। और रुला रहा है मुझे अब खून के आंसू, रुला रहा है मुझे अब खून के आंसू, उसकी हर बात पर मुस्कुराता रहा हूं मैं,
2: वाह
0: कि उसकी हर बात पर मुस्कुराता रहा हूं मैं। और वो जो कर रहा है मेरे ना लौटने का इंतजार, वो जो अब कर रहा है मेरे ना लौटने का इंतजार, उसको हर कदम पर आवाज लगाता रहा हूं मैं, उसको हर कदम पे आवाज लगाता रहा हूं मैं। और छोड़ रहा है चिता में अब जलता हुआ मुझे, छोड़ रहा है चिता में अब जलता हुआ मुझे, बनकर सजर जिसे धूप से बचाता रहा हूं
2: क्या
0: मैं,
2: बात है,
0: बन के सजर जिसे धूप से बचाता रहा हूं मैं। और इसी तौर का एक कुछ असार और देखें कि इस दर्द को दवा बना लूं क्या,
2: हाँ, क्या मिश्रा है।
0: इस दर्द को दवा बना लूं क्या, तुम कहो तो जरा मुस्कुरा लूं
2: मुस्कुरा
0: क्या,
2: लूं क्या,
0: तुम
2: बहुत खूब।
0: कहो तो जरा मुस्कुरा लूं क्या। और मुझे फिर से किस्मत आजमानी है,
2: हाँ,
0: मुझे फिर से किस्मत आजमानी है, एक बार फिर से दिल लगा लूं
2: लगा
0: क्या,
2: लूं क्या।
0: एक बार फिर से दिल लगा लूं क्या, और सांस लेता हूं तो दम सा घुटता है। ये देखें कि सांस लेता हूं तो दम सा घुटता है, दिल में एक खिड़की बना लूं क्या,
2: क्या बात है,
0: दिल
2: क्या
0: में
2: बात है,
0: एक खिड़की बना लूं क्या।
2: क्या
0: और
2: बात है।
0: कटी है हर रात फकत अंधेरे में, कटी है हर

0: फकत अंधेरे में बुझे दिए को खून से जला लूं
1: जला
0: क्या,
1: लूं क्या,
0: बुझे दिए को
1: बहुत
0: खून से जला
1: जला
0: लूं
1: लूं क्या।
0: क्या, और धूप अब मेरे चेहरे तक नहीं आती,
1: हम्म,
0: धूप अब मेरे चेहरे तक नहीं आती, जुगनुओं से नया आफ्ताब बना लूं
1: बना लूं
0: क्या,
1: क्या।
0: ये जुगनुओं से नया आफ्ताब बना लूं क्या, और रात के सन्नाटे अब चुभने लगे हैं, रात के सन्नाटे अब चुभने लगे हैं, पुराना कोई गीत गुनगुना लूं
1: गुनगुना लूं
0: क्या,
1: क्या।
0: पुराना कोई गीत गुनगुना लूं क्या, और हवा से बिखर गया आशियाना मेरा, हवा से बिखर गया आशियाना मेरा, तुम्हारे दिल में नया घर बना लूं
1: बना
0: क्या,
1: लूं क्या।
0: कि तुम्हारे दिल में नया घर बना लूं क्या, और वो अभी मुझसे ज्यादा दूर नहीं गया, वो अभी मुझसे ज्यादा दूर नहीं गया, जरा जोर से आवाज लगा लूं
1: लगा लूं
0: क्या,
1: क्या, मुस्कुरा
0: तुम कहो तो जरा मुस्कुरा लूं
1: लूं
0: क्या,
1: क्या।
0: तुम कहो तो जरा मुस्कुरा लूं क्या। और
1: जी बहुत बढ़िया,
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक एक कविता है सर, वो देखें,
1: जी
0: ये इस तरह से है, जैसे सर जहाँ हम आज इस मकाम पे पहुँचे हैं, कितनी मेहनत आप लोगों ने करी होगी वहाँ पहुँचने के लिए, तो उसी को है शब्दों के रूप में मैंने संजोया है,
1: जी
0: कि अब वो मेरे लफ्ज़ों को गुनगुनाने लगे,
1: अब वो मेरे
0: अब
1: लफ्जों
0: वो
1: को,
0: मेरे लफ्ज़ों को गुनगुनाने लगे, इस मकाम पे आने में मुझे ज़माने लगे,
1: जमाने लगे।
0: इस मकाम पे आने में मुझे ज़माने लगे, जला हूँ मैं किसी शबे चराग की तरह, जला हूँ मैं किसी शबे चराग की तरह, खुद को रोशनी बनाने में मुझे ज़माने
1: जमाने
0: लगे,
1: लगे।
0: खुद को रोशनी बनाने में मुझे ज़माने लगे, और आसान नहीं था दरिया का रुख मोड़ देना, आसान नहीं था दरिया का रुख मोड़ देना, रास्ते से पत्थर हटाने में मुझे
1: जमाने
0: ज़माने
1: लगे।
0: लगे, कि रास्ते से पत्थर हटाने में मुझे ज़माने लगे, और गिरे दरख्तों को भी दिया है सहारा मैंने, गिरे दरख्तों को भी दिया है सहारा मैंने, इस जंगल में घर बनाने में मुझे ज़माने लगे, कि इस जंगल में घर बनाने में मुझे ज़माने लगे, और एक को मनाया तो कभी दूजा रूठ गया, रिश्तों में आप देखते हैं कि एक को मनाया तो कभी दूजा रूठ गया, ये रिश्ते समझ आने में मुझे ज़माने लगे, और बस धूल की वजह से लाल है ये आँख मेरी, बस धूल की वजह से लाल है ये आँख मेरी, उसे ये बात समझाने में मुझे ज़माने लगे, उसे ये बात समझाने में मुझे ज़माने लगे, और वो एक पल में भूल गया मेरी यादें सारी, वो एक पल में भूल गया मेरी यादें सारी, जिन लम्हों को जुटाने में मुझे ज़माने लगे, और
1: वाह वाह।
0: ढल गया सूरज मगर एक शाम न गुजरी, ढल गया सूरज मगर एक शाम न गुजरी, कि उसके दिल में घर बनाने में मुझे ज़माने लगे, और एक कतरा भी उसके आंसू का फिर गिरने न दिया, एक कतरा भी उसके आंसू का फिर गिरने न दिया, भले ही अपनी आंख सुखाने में मुझे
1: जमाने
0: ज़माने
1: लगे।
0: लगे। और ये शेर देखें कि लहजे में ये नरमी बस आपके लिए है, लहजे में ये नरमी बस आपके लिए है, और ये लहजा बनाने में मुझे
1: जमाने
0: ज़माने
1: लगे।
0: लगे, मैं उसी पल उसका हो गया जो मेरा हो गया, मैं उसी पल उसका हो गया जो मेरा हो गया, मगर ये बात जताने में मुझे
1: जमाना।
0: ज़माने लगे, मगर ये बात जताने में मुझे ज़माने लगे, और गुजरा हूँ कई बार एक ही रास्ते से मैं, गुजरा हूँ कई बार एक ही रास्ते से मैं, इस मंजिल तक आने में मुझे
1: जमाने
0: ज़माने
1: लगे।
0: लगे, और किसी ने देखे ही नहीं पैरों के छाले मेरे, किसी ने देखे ही नहीं पैरों के छाले मेरे, जख्मों को मरहम बनाने में मुझे ज़माने लगे। और आखिरी शेर है देखें कि
1: जी
0: कई बार चुभा नस्तर मगर खून न निकला, कई बार चुभा नस्तर मगर खून न निकला, खुद को पत्थर बनाने में मुझे
1: जमाने
0: ज़माने
1: लगे।
0: लगे,
1: बहुत
0: खुद
1: बढ़िया।
0: को पत्थर बनाने में मुझे ज़माने लगे, और गूंगों की तरह रहा हर एक बज़्म में नीरज।

0: कि गूंगों की तरह रहा हर एक बज्म में नीरज, जुबां को आवाज बनाने में मुझे
1: जमाने
0: जमाने
1: लगे,
0: लगे,
1: जमाने लगे।
0: जुबां को आवाज बनाने में मुझे जमाने लगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गजल गोष्ठी, जिसमें हमारे मेहमान थे आदरणीय विज्ञान व्रत जी और आदरणीय अरुण सागर जी, और मैं आशा करता हूँ सभी श्रोताओं को गजल शायरी एक एक शेर पसंद आया होगा, और इसी आशा में कि आपसे फिर से मुलाकात होगी, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं आज तक के लिए। फिर किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: अभी आप ये कवि गोष्ठी सुन रहे थे। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे युवा गजलकार श्री नयन नीरज। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था वंदना का और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण लाल मीना।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: अभिजीत की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रुतों कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में लीजिए अब सुनिए यस बोस फिल्म से लिया गीत। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है जतिन ललित का।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

0: तो इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने विमेंस लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन, विमेंस स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: श्री मोदी ने लोगों से मेढ़ोरा की

0: गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
4: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग। 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व

0: अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी साध

0: कृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. Yeah, machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure, and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
2: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
3: ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
2: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
4: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के इतिहास।
2: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की

0: आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far. Also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway's shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200-meter events. And India retained Nona Gaprina Dashavili trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow.
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड द फर्स्ट फेज ऑफ द ऑन गोइंग एक्सरसाइज इज नियरिंग कंप्लीशन अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इट्स अ डेटा फ्रॉम मोर देन 32 करोड़ फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार। ही अर्ज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइव एंड यूज सेल्फ एनुमरेशन फैसिलिटी।
2: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of father of the nation Mahatma Gandhi on the 2nd of October. He cited examples of cleanliness initiatives from across the country.
2: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: Prime Minister Modi said millions

0: Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200-meter events. And India retained the Nona Gaparina Dashavili Trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ में अब्दुल वाहिद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट फजाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने 2027 की मर्दमशुमारी में की गई पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदाद व शुमार रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के योम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में और ज्यादा लोगों की शिरकत पर जोर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी दिफाई खुद मुख्तारी से समझौता किए बगैर आलमी इस्तेहकाम का खां है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर साबरमती से एलएनजी से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो माहौल के लिए साजगार तवानाई के मकसद से रेलवे में की गई एक बड़ी कामयाबी है। एशियन गेम्स में भारत ने खवातीन की लंबी छलांग और मर्दों की ऊंची छलांग नेज मर्दों और खवातीन के स्क्वैश सिंगल्स में चांदी के तमगे हासिल किए हैं और डेकेथलॉन खवातीन की स्टेपल चेज नेज 200 मीटर के मुकाबले में कांसे के तमगे जीते हैं। और भारत ने उज़्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंदाश्विली ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। उसने ओपन जुमरे में चांदी और खवातीन के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट फजाई हमला और 2025 में किया गया ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत कल सरहद पार सर्जिकल हमले के 10 साल पूरे होने की याद ताज़ा करेगा। भारत ने 2016 में 28 और 29 सितंबर की रात ये हमले किए थे, जिनमें उस महीने के आगाज में उड़ी में किए गए दहशतगर्दाना हमले के जवाब में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भारतीय सिपाहियों की बहादुरी को देखकर हैरान, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर लिया था। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को दहशतगर्दाना हमलों की वजह से पैदा देरीना दर्द का भारत का एक फैसला कुन जवाब करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि पिछली दहाई में 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट फजाई हमलों से 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार एक वाज़ह पैगाम दिया कि दहशतगर्दाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: जनाब मोदी ने उस वक्त को याद किया जब सिलसिलेवार बम धमाके मुल्क में अक्सर होते थे। उन्होंने 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में किए गए सिलसिलावार बम धमाकों का जिक्र किया, जिनमें बहुत से लोग हलाक हो गए थे, जिसके कुछ ही हफ्ते बाद मुंबई में 26/11 के दहशतगर्दाना हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत आज दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है और अपने इस तरीक़ेकार का समरा भी देख रहा है। 2027 की मर्दमशुमारी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि इस अमल का पहला मरहला तकरीबन सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने कहा कि 32 करोड़ से ज़्यादा कुनबों के आदाद व शुमार रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी का यह काम लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर

0: और उत्तराखंड के दूर दराज और बर्फ से ढके हुए इलाकों में भी जारी है, जहां बहुत से तहरीक देने वाले तजुर्बात हासिल हुए हैं।
1: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी एक कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खुदशुमारी की सहूलत से ये अमल आसान हो गया है। लोग अपने और अपने कुनबों के बारे में जानकारी अपने मोबाइल फोन के जरिए दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सहूलत हिंदी और दीगर 16 जबानों में मौजूद है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए लोगों को मुबारकबाद दी और आइंदा त्योहारों के दिनों में खुशी और खुशहाली की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी ने 2 अक्टूबर को बाबाए कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में लोगों की और ज्यादा शिरकत पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क भर में सफाई सुथराई के लिए किए गए इकदाम की मिसालें दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत किसी मुल्क के किसी इलाके पर कब्जा करना नहीं चाहता, अलबत्ता अगर उसे धमकी दी जाएगी तो वह अपनी सलामती और दिफाई खुद मुख्तारी की हिफाजत करेगा। नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस की तरफ से मुनक़िदा दिफा से मुतअल्लिक एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि भारत आलमी इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अपनी दिफाई खुद मुख्तारी की कीमत पर नहीं। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि किसी ऐसे मुल्क के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती जो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को बढ़ावा दे।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: कौमी इत्तेहाद को कौमी सलामती का एक अहम सतून करार देते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क की सलामती अकेले मुसल्लह फौजों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर शहरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो मजहब, जात पात, जबान, खित्ते और दीगर तरह की शनाख्त की बुनियाद पर की जाने वाली तफरीक से ऊपर उठें और कौमी मफाद को जाती और छोटे मफादात से ऊपर रखें। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने साबरमती में आज कई बड़े रेलवे तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा और आगाज किया। इन प्रोजेक्टों की लागत 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर मौसूफ ने गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में मुल्क की पहली LNG से चलने वाली ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन साबरमती स्टेशन से रवाना की गई। इस ट्रेन में डीजल और रकीक बनाई गई कुदरती गैस के दोहरे ईंधन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके इंजन में तकरीबन 40% रवायती ईंधन डीजल की जगह 1400 हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर एक बड़े अवामी इज्तम से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में पिछले 12 साल में भारतीय रेलवेज की काबिल जिक्र तब्दीली को उजागर किया।
3: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णा ने कहा है कि टेक्नोलॉजी किसी डॉक्टर के इंसानी हमदर्दी के जज्बे की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने मसनू जहानत, AI और डिजिटल सेहत के शोबे में तेजी से पेशरफ्त के दौर में डॉक्टरों के अंदर हमदर्दी के जज्बे की अहमियत को उजागर किया। जनाब राधा कृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जलसे तकसीम असनाद से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नौजवान डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो अपनी बात वाजह और जामे अंदाज में पेश करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत

0: हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खुसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि नमो भारत के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है।
1: नमो भारत मुल्क के पहले इलाकाई तेज रफ्तार सफर का निजाम है। ये 82.15 किलोमीटर की एक नीम तेज रफ्तार राहदारी है, जिसे 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर के लिए तामीर किया गया है। इस पर 30,274 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका आगाज इस साल फरवरी में किया गया था और इसकी वजह से दिल्ली से मेरठ तक का सफर महज 1 घंटे से कम वक्त में पूरा हो जाता है। हर एक ट्रेन में खवातीन के लिए एक कोच रिजर्व है। इस तेज रफ्तार रेलगाड़ी को रवाना करने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नमो भारत जदीद नौइयत की एक हैरत अंगेज तेज रफ्तार ट्रेन है।
2: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
1: नमो भारत के एक मुसाफिर ने इस ट्रेन के बारे में कहा कि इससे उन मुलाजिमीन और तलाबा को फायदा होगा जो सड़क के रास्ते गाड़ियों से सफर करते थे।
3: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है।
1: इस प्रोजेक्ट से शहरी नकलो हमल के वजीर आजम के विजन को अमली जामा पहनाने की रफ्तार में तेजी आएगी और शहरियों की जिंदगी में मजीद सहूलत पैदा होगी। न्यूज डेस्क से अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन मुस्तकबिल में इलाज को ज्यादा जदीद, मुअस्सर और हर मरीज की जरूरत के मुताबिक बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। नई दिल्ली में आज वर्ल्ड कांग्रेस ऑन नैनो मेडिसिन 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी का महकमा नैनो मेडिसिन के शोबे में 2010 तहकीकी और तरक्याती मनसूबों के लिए 174 करोड़ रुपये की माली मुआवनत फराहम कर रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि विश्व हिंदू परिषद के साबिक सदर अशोक सिंघल ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुत्व, मुल्क और समाजी खिदमात के लिए वक्फ कर दी। आज यानी अशोक सिंघल के यौम पैदाइश की 7 साला इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अशोक सिंघल की जिंदगी कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, मजहबी जज्बे, नज्म व ज़ब्त और अज़्म की अक्कास है। भारत ने अफगानिस्तान को जारी अपनी इंसानी इमदाद के तहत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जान बचाने वाली अद्वियात और तिब्बी इस्तेमाल की अशिया की एक खेप रवाना की है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत की इंसानी इमदाद मरकजी हैसियत रखती है। जापान में जारी एशियन गेम्स 2026 में आज आइची नागोया में खवातीन की लंबी छलांग के मुकाबले में एनसी सोजन एडिपेल्ली ने चांदी का तमगा जीता। एनसी 6 मीटर 53 सेंटीमीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ दूसरे मकाम पर रहीं। मर्दों की ऊंची छलांग में भारत के सर्वेश कुशारे ने 2 मीटर 25 सेंटीमीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ चांदी का तमगा जीता। भारतीय एथलीट हरिता भद्रा ने खवातीन की 200 मीटर दौड़ के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलान मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। खवातीन के 3000 मीटर स्टेपल चेज मुकाबले में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने कांसे का तमगा जीता। फिलहाल तमगों की फहरिस्त में भारत 12वें मकाम पर है और सोने के 4, चांदी के 16 और कांसे के 17 तमगों के साथ मजमुई तौर पर 37 तमगे जीत चुका है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। भारत ने आज उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 2026 के शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंड शेल्वी ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। भारत ने ओपन जुमरे में बेहतरीन मजमुई कारकर्दगी वाले मुल्क के तौर पर अपनी मुहिम मुकम्मल की और खवातीन के मुकाबले में उसने चांदी का तमगा हासिल किया। भारत की मर्दों की टीम ने हंगरी के साथ खेलते हुए अपना मुकाबला बराबरी पर पूरा किया। मर्दों की क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की तरफ से दिए गए 296 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 41 ओवर्स में 2 विकेट पर 282 रन बना लिए हैं। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट फदाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं।

मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2027 की मर्दमशुमारी में की गई पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में और ज्यादा लोगों की शिरकत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी दिफाई खुद मुख्तारी से समझौता किए बगैर आलमी इस्तेहकाम का खाहां है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: यह आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। एस सुप्रदीप एक प्रतिभाशाली एवं सिद्धहस्त बांसुरी वादक हैं और संगीत की एक प्रतिष्ठित परंपरा से जुड़े परिवार से आते हैं। आप सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक एस ए शशिधर के सुपुत्र एवं शिष्य हैं। आपने अपने पिता के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत की बारीकियों और समृद्ध संगीत परंपरा को आत्मसात किया है। सुप्रदीप ने छोटी उम्र से ही संगीत के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया है। आपने राज्य स्तरीय जूनियर और सीनियर संगीत परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं और दोनों में रैंक प्राप्त की है। आपकी संगीत प्रतिभा और संभावनाओं को सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियों के माध्यम से भी मान्यता मिली है। आप आकाशवाणी बेंगलुरु के ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी कला प्रस्तुति के माध्यम से आपने विविध श्रोताओं तक शास्त्रीय संगीत पहुंचाने तथा उसके प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। आपकी कला यात्रा भारत तक ही सीमित नहीं है, आपने अपने पिता के साथ विदेशों की संगीत यात्राओं में भाग लिया है जहां आपने बांसुरी की युगल प्रस्तुति दी। प्रसारण और डिजिटल माध्यमों में भी सुप्रदीप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। यस सुप्रदीप इज अ टैलेंटेड एंड एकम्प्लिश्ड फ्लूटिस्ट who belongs to a distinguished family of musicians. He is the son and disciple of renowned flautist S. A. Shashidhar and has imbibed the nuances of classical music through the rich tradition and guidance of his father. Supradeep has demonstrated his dedication and commitment to music from an early age. He successfully completed the state junior and senior music examinations, securing ranks in both. His musical talent and promise have been recognized through prestigious scholarships from the Center for Cultural Resources and Training and the Ministry of Human Resource Development. He is an A-grade artist of Akashwani Bengaluru. Through his musical performances, he has reached diverse audiences and contributed to the promotion and propagation of Indian classical music. His artistic journey extends beyond the Indian stage. Supradeep has accompanied his father on musical tours to the abroad where they presented flute duet concerts. Supradeep has also made his presence felt in the broadcast and digital space.
0: आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम पर के वी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित के एम।
1: इन टुनाइट्स परफॉर्मेंस ही इज एकम्पनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, ऑन मृदंगम बाय के वी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोरसिंग लिखित के एम।
0: एस सुप्रदीप अपने बांसुरी वादन का आरंभ वल्लभा नायकस्य से कर रहे हैं। यह मुत्तुस्वामी दीक्षितर की सुंदर रचना है जो राग बेगड़े और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: Yes, Supradeep begins his flute recital with Vallabha Nayakasya, a beautiful composition of Muthuswami Dikshitar, set in Raga Begade and Rupaka Tala.

0: अगली प्रस्तुति है मरीवेरे दिक्केवरु। यह पठनम सुब्रमण्य अय्यर की लोकप्रिय रचना है, जिसे राग लतांगी और खंड चापुताल में प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज मरीवेरे दिक्केवरु, अ पॉपुलर कॉम्पोजिशन ऑफ पठनम सुब्रमण्य अय्यर, सेट इन राग लतांगी एंड खंड चापुताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोरसिंह पर लिखित केएम। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए एस सुप्रदीप अब प्रस्तुत कर रहे हैं रा रा राजीव लोचना। यह मैसूर वासुदेवाचार्य की मधुर रचना है जो राग मोहनम और आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, ऑन मृदंगम केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोरसिंह लिखित केएम। कंटिन्यूइंग हिज परफॉर्मेंस यस सुप्रदीप नाउ प्रेजेंट्स रा रा राजीव लोचना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य, सेट इन राग मोहना एंड आदिताला।

अभी आपने तनी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मूर सिंह पर

0: चित्केयम्।
1: एस सुप्रदीप, अपने बांसुरी वादन का समापन कन्नड़ भक्ति रचना तंबूरी मीठी दवा से कर रहे हैं। यह महान संत कवि पुरंदर दास की रचना है और राग सिंधु भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
0: यस सुप्रदीप concludes his flute recital with the timeless Kannada devotional composition Tamburi Metidava, composed by the great saint poet Purandaradasa, set in Raga Sindhu Bhairavi and Adi Tala.

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे थे एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोरसिंह पर लिखित केएम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इंदिरा विवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही वाज एकॉम्पनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम बाय केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोरसिंह लिखित केएम। This program is a contribution of Akashvani Bengaluru, brought to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: Namaskar, Akashvani Samachar ke saath main Ashutosh Mishra. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से

0: मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने महिला लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर NC सोजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैपरिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 88 गेंद में 139 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड 2016 सर्जिकल स्ट्राइक 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक एंड ऑपरेशन सिंदूर इन 2025 आर बोल्ड एग्जांपल्स ऑफ इंडियाज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म। द प्राइम मिनिस्टर वॉज एड्रेसिंग द

और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आप हमारे साथ शामिल हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी फरमाइश यहाँ से प्ले की जाए और आप उसे सुन पाएँ, अपना नाम भी सुन पाएँ, अपनी जगह का नाम भी सुन पाएँ, कोशिश रहेगी कि पूरे पूरे मैसेज पढ़े जाएं, लेकिन आपकी गिनती बहुत बहुत बहुत सारी है, ऊपर वाले की कृपा है, तो पूरा मैसेज पढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ कोशिश रहती कि आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा किया जाए। तो आप अपनी फरमाइश हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के ज़रिए। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, हमारा ईमेल एड्रेस है ip.radio.delhi@gmail.com, ip.radio.delhi@gmail.com वो ईमेल एड्रेस है जिसके ज़रिए आप अपनी फरमाइश हम तक पहुँचा सकते हैं।

ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं ये जिंदगी के रास्ते। रूह तो उतरी थी जमी पर मंजिल का पता लेकर। बात बहुत सच्ची है और बहुत अच्छी है। ये बात लिखकर भेजी है हमें चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। वाकई जो ख्वाहिशें हैं वो ज़िंदगी को कभी कभी भटका देती हैं और कभी कभी ज़िंदगी में वो रस पैदा कर देती हैं कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाती है। और कभी कभी ख्वाहिशों की वो तेज़ी और वो उनको हासिल करने की जो ललक है ना, वो ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को ख़त्म भी कर देती है। तो ख्वाहिशों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी फरमाइश हम तक पहुँच रही है, आप सभी के मैसेजेस हम ज़रूर शामिल करते हैं। सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गीत। फिल्म है सहरा से और गाया है इसे लता जी ने। और जितना खूबसूरत इस फिल्म की इस गीत को फिल्माया गया है वो लाजवाब है। ये गीत सुनने के बाद आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप ये गीत देख भी लें।

और इस बीच हमारे पास मैसेज आए हैं बॉर्डर से, और बहुत अच्छा लगा आपने हमें मैसेज किया। आपका मैसेज हमारे कार्यक्रम में पहली बार आया है, और ये मैसेज लिखने वाले हैं भगवान बेनीवाल बाड़मेर राजस्थान से हमें मैसेज कर रहे हैं। और आपने कहा है कि ये शांत ढलती रात और रेडियो का साथ जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देता है। और जैसे ही मैंने आपका एड्रेस देखा और आपकी ये बात सुनी कि शांत ढलती रात, तो मुझे एक बहुत खूबसूरत सा गीत याद आया है, और वो गीत मैं आप सभी के लिए जरूर सुनवाऊंगी। और अगला मैसेज हमारे पास है दिग्दर्शन गौड़ जी का, आपके साथ है कविता गौड़। आप हमें मेरठ कैंट से मैसेज कर रहे हैं, और जनाब आपकी भी फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है। अनिल मोहन ने हमें मैसेज किया है मुल्तानी ढांडा से, आपके साथ हैं उषा टिल्लू मधुर नायक। और मैसेज अगला है हमारे पास मुकेश भट्टा जी का, आप हमें पटियाला से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ है नीलम निहारिका हार्दिक वंश। और आपने कहा कि एनी सॉन्ग। नारायण खर्चे जी ने हमें मैसेज किया है इंदौर से, आपके साथ है कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा और पूजा रेखा रघुवंशी, निशा बल्लन और ललिता लक्ष्मी खट से, सत्यनारायण खट से। और आपने कहा है कि हमें गीत में शामिल कर लीजिए। हाजी मजहर का हमारे पास मैसेज आया है मऊ से, आपके साथ हैं रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद साहिद सादिक अंसारी। गाजीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद।

आखिर मुलानी ने हमें मैसेज किया है पंढरपुर से। आपके साथ हैं सुमैया, सुभान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, चाचा चाची और पूरा मुलानी परिवार। ताज मोहम्मद का भी हमारे पास मैसेज आ गया है लक्सर हरिद्वार से, और आप कहते हैं कि किसी भी सदाबहार गीत में शामिल कर लीजिए। आपके साथ हैं गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। दीदार दास ने हमें अंबाला से मैसेज किया है और आपने कहा है कि किसी भी गीत में हमें शामिल कर लें। तो जी, उम्मीद है कि आपको गीत पसंद आ रहे होंगे। अगला मैसेज गुरनौर से आया है और लिखने वाले हैं आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली। आपने भी कहा है कि किसी भी गीत में शामिल कर लें, तो सुनते हैं। बहुत खूबसूरत सा गीत, फिल्म है रुद्दाली और इसे गाया है आशा जी ने।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब एक आवश्यक सूचना।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज

0: करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

0: और अब एक का आवश्यक सूचना,
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म

0: 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
0: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: और हम बढ़ते हैं अपने अगले मैसेज की तरफ। ये मैसेज हमारे पास आया चंडीगढ़ से, लिखने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और अमनदीप। आप हमें कालका से मैसेज कर रहे हैं। शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया किशन सपकल का, और आपकी फरमाइश, उम्मीद है कि आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे, आपने अपना गीत भी सुना होगा। आप हमें बीड़ शहर से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकल। इसके साथ ही मैसेज हमारे पास अक्रम हुसैन का आया है। आप हमें बिहार के सीतामढ़ी से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं मसरत जहां, दलत जहां, नाज फरज जहां, नाज रिफत नाज, नुजत जहां, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूर और कलेर से मैसेज करिए। निखत, प्रवीण, सदफ, आरजू, सादिया, तस्नीम और जी। मैसेज हमारे पास अगला है एसएम जावेद का। आप हमें मैसेज कर रहे हैं गुमला झारखंड से। आपके साथ हैं शगुफ्ता अंजुम। अनिल कोहाली जी ने हमें मैसेज किया है, और आप हमें महाराष्ट्र के नागपुर से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं छाया और प्रियांश। आपको गीत बहुत पसंद आया फिल्म सहरा का, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको गीत पसंद आया और आपने बताया भी है हमें। अगला मैसेज हमारे पास आया है मंगलूर पीर से, और ये है विदर्भ में। आप के साथ हैं योगिराज मस्के, श्री हरि, इंदुमती, कविता, मोहन, विशाल, कुशल, गोपाल, श्याम, गोविंद मस्के और साथी। अश्विनी चुग ने हमें मैसेज किया है पंचकुला सेक्टर 9 से। आपके साथ हैं अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे ढींगरा, और आपकी फरमाइश भी हमारे पास पहुंच चुकी है। सोमदत्त ने हमें मैसेज किया है नाभा पटियाला से। आपके साथ हैं कौरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। मैसेज हमारे पास अगला जो है वो है मोहम्मद फरीद अंसारी का, और आप हमें मैसेज करें मुरादाबाद से। आपके साथ हैं मोहम्मद रजा अंसारी, बिलाल, जुबैर और आलम अंसारी। रियासत हुसैन ने हमें उत्तराखंड से मैसेज किया। आपके साथ हैं नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर। आपने कहा कि किसी भी गीत में शामिल कर लें। अनिल मोहन ने मैसेज किया है हमें, और इसके साथ साथ नासिर शेख का हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से। आपके साथ हैं नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, और मैसेज अगला हमारे पास आया है अनिल ताम्रकर का, और आपका मैसेज हमारे पास कटनी से आया है। आपके साथ है अमर, दिलीप, राजू, रजन, विपिन, प्रकाश, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और सौम्या। मैसेज हमारे पास अगला है बाबू नागपुरे का, और आपका मैसेज हमारे पास पहुंचा है नर्मदा नगर से। आपके साथ हैं सूरज, ऋषभ, कनक, भावना। महेश्वर से मैसेज हमारे पास आया है प्रेम लाल वर्मा और ममता बाई वर्मा का। सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गीत, फिल्म है अनारकली।

जी जिंदगी के जो प्यार के लम्हात होते हैं ना, वो सिर्फ दो चार घड़ी के ही होते हैं, और वो उनका जो वक्फा होता है ना, वो बहुत मुख्तसर होता है, बहुत जल्दी बीत जाते हैं। इसलिए उन्हें बहुत संभाल के गुजारिए, उनका बहुत एहतराम कीजिए, उन्हें बहुत सुकून से गुजारिए। बहुत मुश्किल से वो लम्हात मिलते हैं। मैसेज अगला हमारे पास आया है झालावाड़ राजस्थान से। लिखने वाले हैं राजेश कुमार मेहरा, नंद किशोर, विनोद, अर्जुन, दुर्गा, शंकर, सिकंदर, राहुल, चंदू, देवराज, लक्ष्य और समस्त ग्रामवासी। और मैसेज हमारे पास जो पहुंचा है वो है कुसुम बाई का। और आप हमें मैसेज कहाँ से करें? नेपानगर मध्य प्रदेश से। आपके साथ हैं श्यामा बाई, और आपने की है एक गीत की फरमाइश। इसके अलावा हैं प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, बसंती बाई और गणेश शिवदे। आपने जिस रंग में ये मैसेज लिखा है, उस रंग में पढ़ना ज़रा अलग हो रहा है, मुश्किल हो रही है। इसलिए अगर आप बेसिक कलर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। दिलावर खान हमें मैसेज कर रहे हैं रघुवीर नगर दिल्ली से। आपके साथ हैं हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू। आपने कहा कि कर्ज की असली कीमत, कर्ज दो तरह का होता है, एक वो जो कमाई बढ़ाने के लिए लिया जाए, बीज की तरह जो आगे चलकर फल देता है, दूसरा वो जो महंगी गाड़ी, मोबाइल और दिखावे के लिए लिया जाए, दीमक की तरह धीरे धीरे पूरी कमाई खा जाता है। याद रखिए, किस्तों में की गाड़ी में बैठा इंसान हमेशा अमीर नहीं होता, और पैदल चलने वाला हमेशा गरीब नहीं होता। कर्ज लेने से पहले बस इतना सोचिए, ये पैसा मेरी कमाई बढ़ाएगा या मेरी आज़ादी घटाएगा। तो ये जो आपकी नसीहत है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है, इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम सब एक भीड़ में शामिल हो जाना चाहते हैं। हमें चाहिए एक लविशकार, एक बेहतरीन घर, बहुत ज़बरदस्त लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। सादी और आसान ज़िंदगी ज़रा मुश्किल हो रही है, और इस हर वैभव को कमाने के लिए पैसा चाहिए, उसे दिखाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम होता है, चीज़ें हासिल करना मुश्किल होता है, और उसके साथ साथ लग जाता है कर्ज का कीड़ा हमारे साथ। लेकिन बहुत अच्छी आपकी ये नसीहत है, इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए। दुल्लूपुर से हमारे पास नीरज कुमार का मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और जी अगला मैसेज किसका ले लूँ जनाब? ये तो असल में पता है बड़ा मसला क्या हो जाता है, मसला ज़्यादा ये हो जाता है कि एक ही शख्स के कई मैसेज आ जाते हैं, उसमें से छांटना पड़ता है किसका कौन सा रह गया है। सोनीपत से हमारे पास मैसेज आया है सिमरन मुखी, अनीता मुखी और सुदर्शन मुखी का। आपने बहुत अच्छा मैसेज किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हेल्थ की भी दुआ दी है। हेल्थ के लिए तो दुआ सभी को करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ आजकल हर एक किसी की ज़रा ऊपर नीचे चलती है। डॉक्टर आशीष का मैसेज हमारे पास आया है, और कहाँ से आया है ये मैसेज? हमारे पास आया है जगराऊं पंजाब से। आपके साथ है कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक। और आपको गीत पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फागुराम यादव का मैसेज हमारे पास आया है कांकेर से। आपके साथ हैं ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। मैसेज हमारे पास जो पहुंचा है वो है कहाँ से? राजस्थान से। आज बहुत मैसेज आए हैं, जबरदस्त। राजू

टूटे जा खुश दिल उर्मिला, टूटे जा गुड्डू जीनू मनु शिव सेठी करण और स्माइल, टूटे जा पवन गुज्जर। आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है। असिर अली ने हमें मुरादाबाद से मैसेज किया है। आपके साथ हैं इरशाद हुसैन अंसारी, मिराज अंसारी। आपने कहा किसी भी गीत में शामिल कीजिए। सुनते एक बहुत अच्छा सा गीत, फिल्म है ताजमहल।

और ये वायदा मुझे घड़ी याद दिला रही है कि तुमने वायदा किया था कि सिर्फ कितने मिनट, 40 मिनट तुम्हारे पास रहेंगे, इससे ज़्यादा तुम वक्त नहीं लोगी। तो बता रही है कि घड़ी की जो वादा किया था तलत, तुम्हें वो निभाना होगा। जल्दी जल्दी बाकी के मैसेजेस पढ़ लो। मैसेज खेड़ा, माफ़ कीजिएगा, खेड़ा से हमारे पास मैसेज आया है। लिखने वाले हैं मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती, अरोड़ा। और आपने कहा कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए इसके साथ। और इसके अलावा हमारे पास जो मैसेज है वो देखिए, मेरी तलाश जारी है कि कोई ऐसा नाम मुझे मिल जाए जिसने हमें मैसेज किया है एक ही बार। जाकिर ने हमें मैसेज किया है, कहाँ से आप हमें, मुंगीसापुर से मैसेज करें। आपके साथ हैं कमरुन्निशा, शबिस्ता, नसीब, पलक, लुबना, अलीजा, अयान, यश और नवासा, नुमैर, मंसूरी। और आपने कहा कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर साहब कि आपने कार्यक्रम को पसंद किया। राधे श्याम शर्मा जी का हमारे पास मैसेज आया हरियाणा से, आपके साथ है इंदिरा शर्मा और सार्थक। मैसेज अब किसका लिया जाए, ये तो खोज रहेगी। मेहर अरोड़ा ने हमें मैसेज किया है, गंगानगर, श्री गंगानगर।

राजस्थान से लिखने वाले हैं ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। अब यही मुझे अपनी वाणी को देना चाहिए विराम, क्योंकि समय कह रहा है कि कह दो अब तुम टाटा। तो खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, और इसके साथ साथ सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर अब 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं और अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान

0: ईरान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में कल एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात को बेहद उपयोगी बताया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका

सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे

कि आज के कार्यक्रम में हम किस खास कलाकार को आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, जो आज का शुरू का सफर है, उस सफर पर कौन से कलाकार हमारे हम सफर हैं? तो हम आपको बता दें कि मोहम्मद अजीज, जी हाँ, ये वो शख्स हैं, ये वो आवाज है, वो खास आवाज जो कि सीधा दिल से गाती है। मोहम्मद अजीज की आवाज एक ऐसी खासियत पहचान लिए हुए है कि उसके जो दिल के जज्बात होते हैं वो पूरी तरह से गहराई तक महसूस करते हैं और अपनी आवाज में हम तक बयां कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के शुरू का सफरनामा में हम बात करेंगे मोहम्मद अजीज की।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। और हमने जैसा कि आपको बताया कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे फनकारों को लेकर आते हैं अपने सफर में अपने साथ, जो कि अपने वक्त की आवाज की जो सीमाएं हैं उसको पार करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। और कहते हैं ना कि संगीत वो एहसास है जो कभी आंखों में आंसू बनकर उतरता है तो कभी चेहरे पर मुस्कान बनकर, कभी दिल में धड़कनों को एक खूबसूरत सी धुन बनकर बस जाता है, वहीं कभी शब्द भी बयां नहीं होते और इस तरह से हमारी रूह में बस जाते हैं वो गीत जो कि हमेशा हमें याद रहते हैं।

आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उस गायक की, मोहम्मद अजीज। एक ऐसी आवाज जिसमें मोहब्बत की मिठास थी और जुदाई का दर्द भी था। दोस्ती की गर्माहट थी तो कहीं जिंदगी को खुलकर जीने का जज्बा। एक ऐसी आवाज जिसने अमिताभ बच्चन पर को पर्दे पर गूंजते आवाज को सुर दिए, कभी अनिल कपूर की शरारतों को गीतों में डाला तो कभी गोविंदा की मस्ती को संगीत की माला में पिरो दिया। 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले इस खास गायक का नाम तो हमने आपको बता ही दिया है, कार्यक्रम का आगाज भी हो चुका है। हम आपको बता दें कि जो मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसक और अपनी बुलंद गायकी की पहचान से जाने वाले मोहम्मद अजीज साहब को जो उनके चाहने वाले थे वो प्यार से मुन्ना अजीज कहते थे। आइए इस सुरीले सफर पर एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं हम मोहम्मद अजीज की ही आवाज में।

दोस्तों सुरों का सफरनामा में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने संदेशों अपने ईमेल्स के जरिए। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। अगर अपने दिल की बात आप साझा करना चाहते हैं हमारे साथ तो जुड़ जाइए अपने ईमेल्स के जरिए अपने संदेशों के जरिए।

वाह, क्या आवाज़ थी मोहम्मद अजीज़ की। दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ साहब 1980 से 90 के दशक के एक ऐसे बेहतरीन भारतीय पार्श्व गायक थे जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी, बंगाली और उड़िया भाषा में अपनी सुरीली आवाज़ दी। अगर उनके पूरे नाम की बात की जाए तो सैयद मोहम्मद अजीज़ उन्नबी उनका नाम था और उनका जन्म 2 जुलाई 1954 को अशोकनगर पश्चिम बंगाल में हुआ था। लेकिन दोस्तों, जिस आवाज को आज हम इतने प्यार से सुनते हैं, उस आवाज के पीछे एक लंबा संघर्ष, संगीत के प्रति अटूट लगाव छिपा हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत से लगाव था। उनके लिए गाना सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि अपने दिल की बात कहने का जरिया था। कहा जाता है कि बचपन में वे मोहम्मद रफ़ी के गीतों को बड़े चाव से गाया करते थे। रफ़ी साहब की गायकी उन पर इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव डाल चुकी थी कि उनकी आवाज़, उनके सुरों की पकड़ और गीतों में भावनाओं को उतारने की कला, अजीज जी हाँ, उनको प्रेरणा मिली मोहम्मद रफ़ी के गीतों से। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, किसी बड़े गायक से प्रेरित होना और अपनी खुद की पहचान बनाना दो अलग अलग बातें हैं। मोहम्मद अजीज ने अपनी मेहनत और रियाज से धीरे धीरे अपनी गायकी को पॉलिश किया, पूरी तरह से निखार दिया। उन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत कोलकाता में रेस्टोरेंट से शुरू की। वहाँ आने वाले लोग उनकी आवाज़ सुनते, उनकी गायकी की तारीफ करते, उन्हें बार बार गाने के लिए कहते। उनकी आवाज़ में एक ऐसी ताकत थी जो ऊंचे सुरों तक पहुँचते हुए भी गीत की भावना को बनाए रखती थी। यही वजह थी कि वे धीरे धीरे संगीत की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए।

दोस्तों जरा सोच कर देखिए, एक तरफ बड़े बड़े संगीतकार, नामी गिरामी गायक, फिल्मी सितारों से सजी मुंबई की दुनिया चकाचौंध भरी, दूसरी तरफ कलकत्ता से अपने सपनों को सींचता एक नौजवान। मोहम्मद अजीज ने अपने सपनों को सच करने के लिए मुंबई का रुख कर लिया, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सफर आसान नहीं था। नई जगह, नए लोग, नई चुनौतियां, और फिर अपने हुनर को भी तो साबित करने की जिम्मेदारी थी उन पर। लेकिन उनके पास एक ऐसी पूंजी थी जिसे कोई न उनसे छीन सकता था, वो थी उनकी अनोखी अनूठी आवाज और साथ ही साथ संगीत के प्रति उनका जुनून। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने उड़िया संगीत का बहुत साथ लिया, बहुत सहारा दिया। उन्होंने उड़िया फिल्मों और भजनों में अपनी आवाज दी, बंगाली और हिंदी संगीत में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और फिर वो वक्त आ गया जब उनकी किस्मत एक नया मोड़ ले चुकी थी।

दोस्तों हम बातें करेंगे और भी मोहम्मद अजी से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले उनकी आवाज में एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वो गीत जरूर पसंद आएगा।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ के करियर में 1985 का साल एक अहम पड़ाव बनकर आया। संगीतकार अनु मलिक ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म मर्द में गाने का मौका दिया। फिल्म में अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया मर्द तांगे वाला, जी हाँ, ये गीत, उस गीत ने उनको बहुत पहचान दिला दी और मोहम्मद अजीज की पहचान का आधार बना ये गीत। फिल्म मर्द का ये गीत अपने जोशीले अंदाज, दमदार आवाज और उस दौर की फिल्मी ऊर्जा को, जी हाँ, अपने अंदर समेटे हुए था, बहुत लोकप्रिय हुआ और इसी के साथ साथ लोकप्रिय हुई मोहम्मद अजीज की आवाज। उनकी आवाज अब धीरे धीरे बुलंदियों को छूने लगी। और यकीन मानिए कि अमिताभ बच्चन के पर्दे पर नजर आने वाले उस किरदार के साथ मोहम्मद अजीज की आवाज बखूबी जम गई।

टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला वो मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर।

वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। तुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं।

0: 1980 के दशक में मोहम्मद अजीज की गायकी लगातार लोकप्रिय होती चली गई थी। इस दौर में हिंदी फिल्म संगीत के बड़े बड़े गायक सक्रिय थे, लेकिन उनके बीच अजीज ने अपनी आवाज और अपने अंदाज को एक अलग मुकाम दिया। मोहम्मद अजीज ने अमिताभ बच्चन के साथ साथ गोविंदा, ऋषि कपूर, सनी देओल और अनिल कपूर जैसे कई दिग्गज अभिनेताओं को अपनी आवाज़ दी। साथ ही साथ लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल जैसी बेहतरीन गायकों के साथ युगल गीत भी दिए। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अनु मलिक, राजेश रोशन, बप्पी लाहिरी और भी कई बड़े बड़े दिग्गज संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। उनकी गायकी का दायरा काफी व्यापक था। एक तरफ उन्होंने कर्मा जैसा है सनम तेरे लिए रोमांटिक गीत गाया, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है ऐसा भावुक गीत गाया। और कभी कभी उन्होंने आवाज दी गोरी का साजन, साजन की गोरी। जी हाँ, हर तरह के गीतों को उन्होंने अपनी आवाज से पंख दे दी। उनकी गायकी की एक और खासियत थी, वे गीत के मूड के हिसाब से अपनी आवाज का रंग बदल लेती थी। जब गीत में जोश की जरूरत होती थी तो उनकी आवाज बुलंद हो जाती थी, और जब गीत में दर्द चाहिए तो उनकी आवाज इतनी नर्म और भावुक हो जाती थी कि श्रोता अपने आप ही इमोशनल हो जाते थे उन गीतों को सुनकर। और दोस्तों, जब वो प्यार का इजहार करते थे तो उनकी आवाज एक अलग ही मिठास लिए हुए होती थी।
1: प्रश्न भैया आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने।
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूँ मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊँ आई लव यू।

दोस्तों, अब जब भी हम मोहम्मद अजीज साहब के गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम संगीत के एक अनोखे दौर में पहुंच गए हैं। तो आज का हमारा ये जो सुरीला सफ़र था, सुरों का सफ़रनामा का, अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। आज हमने जाना कि किस तरह से कलकत्ता से एक छोटा सा लड़का निकला संगीत के प्रति जुनून लेकर, वो नौजवान पहुँचा मुंबई और किस तरह से उसने अपने हुनर के दम पर फिल्मी दुनिया में अपनी अनूठी पहचान बना ली। दोस्तों,

वो हमें छोड़ गए, परलोक सिधार गए, लेकिन उनके गीतों के जरिए, उनके संगीत के जरिए, उनकी आवाज़ के जरिए आज भी वो हम जिंदा है हम तक।

दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये सफर आपको उन सुनहरी यादों में ले गया होगा जिन्हें आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे। फिलहाल अपनी होस्ट और दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। शुरू का सफरनामा का जो पिटारा है वो अब हम समेटते हैं, लेकिन जुड़े रहिए आप एयरलाइन न्यूज 24/7 चैनल के साथ। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच आज हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का

0: पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में कल एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
1: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपए से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना केंद्र पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के परिचालन चरण की शुरुआत कर दी है। मित्र देशों की साझेदारी में शक्ति विषय पर आधारित यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास में 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा कर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड डेटा फ्रॉम मोर देन 32 करोड़ फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार। ही अर्ज्ड पीपल टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइव and use self-enumeration facility. Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of Father of the Nation, Mahatma Gandhi, on the 2nd of October. He said, millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukti

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10:15 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे। दोस्तों, गीत सुनहरे वो कार्यक्रम है जिसमें आप सुनते हैं वो गीत जो हमेशा से हमारे दिलों पर राज करते हैं। और आज के गीत सुनहरे कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सरिता। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म महल के गीत के साथ। आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म नवरंग से। आवाज़ें दी हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। सी रामचंद्रन का संगीत है और गीतकार हैं भरत व्यास।

जी सुनते हैं अगला गीत फिल्म मिलन से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म साहेब बीबी और गुलाम से, आवाजें हैं आशा भोसले की।

0: माँ मुझे क्षमा करती जा, माँ की महानता मैंने बहुत देर में जानी, माँ आखिरी वक्त में बेटे को माँ से अलग करने का मुझसे माँ बाप हुआ, माँ मुझे माफ कर दो।
1: मैं इस बर्बादी की वजह हूँ, मेरी वजह से तुमने खुल खुल के जान दे दी। ऐशो आराम के लालच में मैं अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया। मैं बड़ा नालायक हूँ, मुझे तुम्हारे पांव छूने का भी अधिकार नहीं।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया ये गीत, फिल्म का नाम लाइट। लीजिए सुनते हैं अगला गीत।

गीत लिया गया है फिल्म अनामिका से, आवाजें लता मंगेशकर की, संगीत है आर डी बर्मन का।

अंतिम गीत, फिल्म का नाम है अखियों के झरोके से। आवाज है हेमलता की और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। इस आखिरी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत के आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल रविवार से मंगलवार

0: तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी तथा साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को दिए जाने वाले 2000 रुपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य सेवा की भावना, समुदाय की भागीदारी और देश के प्रति समर्पण को बढ़ावा देना है। विकसित भारत दौड़ 2026 के लिए कल भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकजुट हुए। यह दौड़ भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इंडियन पीपल्स फोरम IPF के साथ मिलकर मशहूर दुबई फ्रेम के पास आयोजित की थी। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। श्रेयस अय्यर के कप्तानी में भारतीय टीम अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेगी। अफगानिस्तान जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, लेकिन ग्रुप स्टेज में उसे नेपाल से हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान की टीम भारत को कड़ी टक्कर देने और सेमीफाइनल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगी। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.
2: 10 years ago, 28-29 September 2016, Bharatiya Sena ne Pakistan mein aatanki thikano par surgical strike ki thi. सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड डेटा फ्रॉम मोर देन 32 क्रोर फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार। ही अर्ज्ड पीपल टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइव एंड यूज सेल्फ इन्यूमिरेशन फैसिलिटी। मिस्टर मोदी ऑल्सो कॉल्ड फॉर ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्लेनलीनेस ड्राइव अहेड ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ऑन द 2nd of October. He said, millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth and announced health checkups and meditation camps as part of the 100-week campaign. The proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association, AIBEA. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, IBA. In a social media post, the AIBEA has stated that this decision was taken after a meeting held between IBA and the United Forum of Bank Unions, UFBU, on the issues related to the strike. Defense Minister Rajnath Singh has said, India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. Mr. Singh was addressing a defense conclave in New Delhi yesterday. He said, India does not seek to occupy the territory of any country, but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy if threatened. He said, as long as a neighboring country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will inaugurate a two-day national conference on agriculture for Rabi campaign 2026 in New Delhi today. The Agriculture Ministry said in a statement that the two-day conference will focus on strengthening center-state coordination and evolving a coordinated, outcome-oriented strategy for enhancing agricultural production, productivity, sustainability, and farmers' incomes. The Supreme Court will hear a plea today challenging the center's decision to impose a merchant discount rate, that is MDR, on specified UPI person-to-merchant transactions of over 2,000 rupees. Ending nearly 6 years of fully free UPI payments, the government has introduced a 0.4% fee on transfers of over 2,000 rupees made to merchants through the UPI platform from October the 15th, while explicitly ring-fencing everyday person-to-person transactions and small payments from any charge. The MDR will be capped at 300 rupees for payments of 75,000 rupees and above. The Department of Animal Husbandry and Dairying will launch the Livestock Insurance Portal in New Delhi today. The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying said that the portal will provide a single integrated digital platform for livestock insurance. It will enable streamlined policy issuance, claim processing, monitoring and reporting in case of animals insured under the Livestock Insurance Scheme. In men's cricket, India defeated West Indies by 8 wickets in the first ODI at Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram, taking a 1-0 lead in the 3-match series. Chasing 296, India scored 300 for 2 in 41.4 overs. Earlier, West Indies posted 295 for 7 in their allotted 50 overs. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआईआर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सरिता, लाई हूं आपके लिए बेहतरीन खूबसूरत गीत नॉनस्टॉप। तो एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत गीतों की झड़ी को।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी।

0: सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त यूपीआई भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2000 रुपए से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। नेपाल में 4 दिनों की मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हुए हैं, जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सबसे ज्यादा मौतें भूस्खलन के कारण हुई हैं। भूस्खलन से 14 लोगों की जान गई और 5 लोग लापता हो गए। बाढ़ से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोगों की मौत लगातार बारिश के कारण हुई। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.
2: 10 years ago, 28-29 September 2016, Bharatiya Sena ne Pakistan mein aatanki thikanon par surgical strike ki thi. सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड डेटा फ्रॉम मोर देन 32 करोड़ फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार। ही अर्ज्ड पीपल टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइव एंड यूज सेल्फ इन्यूमरेशन फैसिलिटी। मिस्टर मोदी ऑल्सो कॉल्ड फॉर ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्लेनलीनेस ड्राइव्स अहेड ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ऑन द 2nd of October. He said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth and announced health checkups and meditation camps as part of the 100-week campaign. The proposed 3-day nationwide bank strike, which was scheduled to begin today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association AIBEA. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, that is IBA. In a social media post, the AIBEA has stated that this decision was taken after a meeting held between IBA and the United Forum of Bank Unions, UFBU, on the issues related to the strike. The Supreme Court will hear a plea today challenging the Centre's decision to impose a merchant discount rate MDR on specified UPI person to merchant transactions of over 2000 rupees. Ending nearly 6 years of fully free UPI payments, the government has introduced a 0.4% fee on transfers of over 2000 rupees made to merchants through the UPI platform from October the 15th, while explicitly ring-fencing everyday person-to-person transactions and small payments from any charge. The MDR will

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

ऋषिव पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जानकी रमन का गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आपने सुना SR जानकी रमन का गायन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5 बजने को है, अब समाचार होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम जिन्हें आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय है भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन। 5:20 पर देशभक्ति संगीत होगा और 5:30 पर आपको सुनवाएंगे स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस खास कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग नट भैरव में डॉक्टर दिनकर शर्मा का हारमोनियम वादन। सुबह 6:10 पर कार्यक्रम होगा वंदना, भक्तिमय संगीत का एक खास कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आएंगे इंद्रप्रस्थ पर।

0: 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर कार्यक्रम होगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं, ये खास कार्यक्रम आज आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 5 बजने को है, अब समाचार होंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वे AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपए से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने व्यक्ति से व्यक्ति आम लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरी जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांति कारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।

दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखंद। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमर दर्द की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है। युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक कमर के दर्द की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके लिए आज हम एक आसन करेंगे। उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाए रखें और शरीर को शिथिल करें, यानी रिलैक्स कर दें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को खींचकर आगे की ओर लेकर जाएं और माथा यानी फोरहेड आपके आसन पर टिकाए रखें। अब हाथों को धीरे धीरे वक्षस्थल यानी चेस्ट रीजन के पास लेकर आएं और ध्यान रहे कि आपकी दोनों कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई, यानी आसमान की ओर उठी हुई हों। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाने का प्रयास करें। दोनों कोहनियों को समांतर रखें और इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। इस अभ्यास को भुजंग आसन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं और मकरासन की स्थिति में कुछ क्षण विश्राम करें। ध्यान रखें दोस्तों, जब आप यह आसन करें तब पैरों को उतना ही तान कर रखें कि कमर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव पैदा ना हो। भुजंग आसन का अभ्यास एक सेशन में कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। यदि आपको कोई हर्निया की प्रॉब्लम है और पेट की कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो यह आसन अवॉइड करें। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और कुछ हद तक तनाव को भी दूर भगाता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 5:30 और पूरे 15 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस खास कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर दिनकर शर्मा का हारमोनियम वादन राग नट भैरव में।